नमस्कार, सुप्रभात। एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है। शक संवत 1948 की भद्रपद मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 सितंबर 2026 हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 और 15 सेकंड्स हुए। प्रारंभ होती हमारी आज की प्रातःकाल।

FM 103 MHz पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं। श्री

0: ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग में हर स्तर पर व्यापक प्रयास की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत, केंद्र सरकार और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चला है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा, 100 हफ्ते नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवाओं को बड़े पैमाने पर एकजुट किया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 1067 जगहों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह आयोजित किया जा रहा है। समारोह में नशा मुक्ति की शपथ, हस्ताक्षर अभियान, खास विषयों पर आधारित नुक्कड़ नाटक, रचनात्मक लेखन और युवाओं की अगुवाई में चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। जापान में 20वें एशियाई खेल 2026 में आज कई भारतीय खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा आज सुबह 6:30 बजे कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोटो से मुकाबला करेंगी। इसके बाद भारतीय निशानेबाज एलाविनिल वेलारिविन, सोनम वक्सकर और विदर्शा विनोद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। ये तीनों खिलाड़ी व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में पदक के लिए मुकाबला करेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम भी अपने अभियान की शुरुआत करेगी और ग्रुप स्टेज के पहले मैच में उज्बेकिस्तान का सामना करेगी। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इससे पहले अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवा चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय है फसल उत्पादन में पोटाश का महत्व, आलेख एवं वाचन प्रतिमा वर्मा का।
2: तमाम किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, फसल उत्पादन में पोटाश का अत्यधिक महत्व होता है। पौधा अपना भोजन पोषक तत्व के रूप में ग्रहण करते हैं। फसल द्वारा उपभोग किए गए पोषक तत्वों की क्षतिपूर्ति उर्वरक और खाद द्वारा न करने पर भूमि में तत्व की विशेष कमी हो जाती है और पौधा मरने लगता है। इसलिए फसलों को इन तत्वों को देने की आवश्यकता होती है। सभी पौधों की वृद्धि के लिए कम से कम 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। इसमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी तथा हवा से प्राप्त होते हैं। अन्य जो 13 तत्व हैं वो भूमि, उर्वरक और खादों से मिलते हैं। विभिन्न फसलें एक निश्चित परंतु भिन्न भिन्न मात्रा में पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं। मिट्टी में किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाने से पौधों का सही विकास नहीं हो पाता। इसलिए खाद और उर्वरक का उपयोग इस प्रकार से संतुलित होना चाहिए ताकि फसल को पर्याप्त मात्रा में सभी आवश्यक पोषक तत्व मिल सकें। इस प्रकार का सुनियोजित उर्वरक प्रयोग संतुलित उर्वरक प्रयोग कहलाता है। किसान भाइयों, पोटाश एक आवश्यक पोषक तत्व है। पौधों की वृद्धि और विकास के लिए पोटाश आवश्यक है। पोटाश फसलों को मौसम की प्रतिकूलता जैसे सूखा, ओला, पाला तथा कीड़े व्याधि से बचाने में मदद करता है। पोटाश जड़ों की समुचित वृद्धि करके फसलों को उखड़ने से बचाता है। पोटाश के प्रयोग से पौधों की कोशिका दीवारें मोटी होती हैं और तने को कोष्ठ की परतों में वृद्धि होती रहती है, जिसके फलस्वरूप फसल के गिरने में रक्षा होती है। जिन फसलों को

0: पोटेशियम की पूरी मात्रा मिलती है, उन्हें वांछित उपज देने के लिए अपेक्षाकृत कम पानी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार पोटेशियम के प्रयोग से फसल की जल उपयोग क्षमता बेहतर होती है। पोटाश फसल उत्पादन की वृद्धि करता है और भंडारण अवधि में भी वृद्धि लाता है। फसलों के आकार, उसके रंग और चमक में वृद्धि लाता है, जिससे बाजार में अधिक मूल्य प्राप्त होता है और उपभोक्ता उन्हें अधिक पसंद करते हैं। इस प्रकार पोटाश फसलों की गुणवत्ता बढ़ाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। किसान भाइयों, अब हम पौधों में पोटेशियम की कमी के लक्षण की बातें आपसे कर ले। पोटाश की कमी से पौधों की वृद्धि और विकास में कमी होती है। पत्तियों का रंग गहरा हो जाता है। पुरानी पत्तियों का नोकों या किनारे से पीला पड़ना, बाद में उत्तकों का मरना और पत्तियों का सूखना पोटाश की कमी के लक्षण है। यदि फसल में एक बार तत्व विशेष के अभाव के लक्षण दिखाई दे जाए तो आप समझ लीजिए कि फसल की क्षति हो चुकी है, जिसका पूरी तरह उपचार संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में पोटाश के प्रयोग से पूरा लाभ नहीं मिलेगा। पौधों में पोटाश की छिपी हुई कमी की दशा में हम देखते हैं कि पोटाश के प्रयोग से स्वस्थ पौधे अपेक्षाकृत बहुत अधिक उपज देते हैं। इसलिए यदि फसल में पोटाश की कमी के लक्षण प्रकट होने तक प्रतीक्षा करेंगे, तब तक काफी विलंब हो चुका होगा और फसल की रक्षा आप नहीं कर सकेंगे। पोटाश का प्रयोग नाइट्रोजन और फास्फोरस धारी उर्वरकों के साथ किया जाना चाहिए। पोटाश पौधों के पोषण में नाइट्रोजन और फास्फोरस के प्रभाव को बढ़ा देता है। इस प्रकार पोटाश के प्रयोग से अधिकतम पैदावार, उच्चतम गुणवत्ता और अधिकतम मुनाफा मिलता है। आमतौर पर पोटाश पोटेशियम क्लोराइड के रूप में मिलता है। इसे खान से निकालकर साफ किया जाता है और परिशुद्ध लवण उर्वरक के रूप में म्यूरेट ऑफ पोटाश के नाम से बाजार में मिलता है। आमतौर पर पोटाश खाद का प्रयोग बुआई या रोपाई के समय करना चाहिए, परंतु हल्की अर्थात बलुई मिट्टी में पोटाश का विभाजित प्रयोग किया जा सकता है। जी हाँ किसान भाइयों, पौधों में किन पोषक तत्वों की कमी है इसकी जानकारी भी आपको रखनी चाहिए। इसलिए आवश्यक है कि आप समय समय पर मृदा का परीक्षण जरूर करवाते रहें। कृषि विशेषज्ञों की सलाह भी आप लेते रहें। किसान भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें में बातें आज बस यहीं तक दीजिए। अब हमें कार्यक्रम से अनुमति न...
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय था फसल उत्पादन में पोटाश का महत्व। आलेख एवं वाचन प्रतिमा वर्मा का था। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस गान।

स्त्री तथा राज्य पाकर सुग्रीव विषय भोग में ऐसा रत हुआ कि उसे अपने उद्धारकर्ता के अनुरोध की भी सुधि न रही। राम का क्षोभ देख लक्ष्मण कुपित होकर पूरी किष्किंधा नगरी को जलाकर राख कर देने को उद्यत होते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री राम चरित मानस गान। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आज का विषय है सफलता की कुंजी कठोर परिश्रम, आलेख एवं वाचन निर्माण।

सफलता की कुंजी है कड़ी मेहनत। कोई भी महान काम एक ही दिन में पूरा नहीं किया जा सकता है, इसे करने के लिए बार बार प्रयास करना पड़ता है और जब तक सफलता ना मिले तब तक थमना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। हम छोटे छोटे प्रयास करके बड़े काम को कर सकते हैं। अपने आप में विश्वास रखना, दृढ़ इच्छा शक्ति का होना, सकारात्मक सोच का होना, यह सफलता की ओर हमें ले जाता है। कई बार हम असफलता से निराश हो जाते हैं और प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। असफलता मिलने के बाद हमें उससे सीखना चाहिए कि गलती कहाँ हो रही है और पुनः नए सिरे से प्रयास करना चाहिए। प्रयास करते रहने से एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। हमारे सामने अनेक ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपार सफलताएं पाईं, लेकिन जब हम उनके अंदर झांकते हैं, उनके जीवन की ओर झांकते हैं, तो पाते हैं कि उन्होंने कठिन संघर्ष किया, तब जाकर उन्हें सफलता मिली। कहने का तात्पर्य है कि सफलता बड़ी आसानी से प्राप्त नहीं हो जाती है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। जबकि आज के दौर में लोग बहुत ही छोटा रास्ता अपनाना चाहते हैं, वो प्रयास करने से डरते हैं और छोटा रास्ता अपनाकर ऊंचाइयों तक पहुंच जाना चाहते हैं, जो कि चिंता का विषय है, क्योंकि इससे थोड़ी पल के लिए आप किसी कार्य में सफल हो जाएं, लेकिन आपके जीवन में ठहराव नहीं आ पाएगा, वो ऊंचाई आपको नहीं मिल पाएगी जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। उसके लिए आपको तपना तो पड़ेगा, क्योंकि सोना जब तपता है तभी वह कुंदन बनता है। इसलिए जब तक आपके जीवन में संघर्ष नहीं होगा, कठिनाइयां नहीं होंगी, आप उसका स्वाद नहीं चख पाएंगे। सफलता का स्वाद तभी मिलेगा जब आप तपेंगे, संघर्ष के दौर से गुजरेंगे, तब जाकर आपको महसूस होगा कि सफलता कितनी अच्छी चीज है। इसलिए हमेशा प्रयासरत रहें, कभी भी निराश ना हो, आशा का दामन ना छोड़ें, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। सफलता की कुंजी है कठिन मेहनत, संघर्ष, और यदि हमारे जीवन में ऐसा है तो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसे हम पूरा नहीं कर सकते हैं। यदि हम ठान लें कि हमें यह काम करना है तो हम उस काम को अवश्य ही कर लेंगे, क्योंकि हम देखते हैं, पाते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एवरेस्ट को फतह कर लिया। क्यों किया? क्योंकि उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति थी, वो चाहते थे वहां तक पहुंच जाना, इसलिए वो पहुंचे। और ऐसा नहीं कि आसानी से पहुंच गए, बार बार गिरे, लेकिन प्रयास किया और प्रयास करते हुए वो वहां पहुंच गए। एक छोटी सी चींटी के बारे में ही देख लीजिए कि वह बार बार प्रयास करती है, असफल होती है, गिरती है, लेकिन उसके बाद भी वह संघर्ष करना नहीं छोड़ती और अंततः वह उस ऊंचाई को, उस मंजिल को प्राप्त कर लेती है जो वह पाना चाहती है। इसलिए हमें यदि जीवन में सफलता चाहिए तो फिर मेहनत से, संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। इसलिए निरंतर प्रयास करिए, जो काम आप करना चाहते हैं उसमें सफलता अवश्य मिलेगी।

कार्यक्रम चिंतन आज का विषय था सफलता की कुंजी कठोर परिश्रम। आलेख एवं वाचन निर्मला तिवारी का था। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुमन कल्याणपुर।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना में सुमन कल्याण बोर को। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज का विषय है परिवार में बढ़ती संवादहीनता, कारण एवं निदान। इस विषय में आपको बताएंगे डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद बर्णवाल।
1: मित्रों, आज हम एक बहुत ही ज्वलंत समस्या आपके साथ लेकर आ रहे हैं, वह है परिवार में बढ़ती संवादहीनता। आखिर इसका कारण क्या है और इसका निदान हम कैसे करें? परिवार में संवादहीनता कायम हो गई है, लोग आपस में बातचीत नहीं करते हैं और अपना ज़्यादा समय मोबाइल, लैपटॉप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में निकालते हैं। इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जा रही है, परिवार में बिखराव हो जा रहा है, बच्चों के साथ अब अच्छा समय व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं और कभी कभी तो हिंसा का रूप भी धारण कर ले रहा है। आखिर ये हो क्यों रहा है और कैसे इसका निदान किया जाए, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आमंत्रित हैं डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद बर्णवाल। आप वर्तमान में कंसल्टेंट हैं SDA मिशन और RK मिशन और आई बैंक रांची में, और आप एक्स फूड कंसल्टेंट झारखंड भी रह चुके हैं और एक्स चेयरमैन फार्मेसी काउंसिल ऑफ झारखंड को भी आप सुशोभित कर चुके हैं। बर्णवाल सर, आपका स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: परिवार में संवादहीनता आजकल क्यों हो गई है सर?

0: अगर सही मायने में कहा जाए तो एक सिंगल कारण है लोगों का आर्थिक लगाव या अधिक पैसे कमाने की धुन, एक सिंगल कारण है जिसके कारण परिवार में बिखराव या टूटना हो रहा है। हम एग्जांपल लेते हैं पहले बचपन से। पहले बच्चे को देखभाल माँ बाप करता था, बाप कमाता था तो माँ अपना केयर करता था, लेकिन अब क्या होता है दोनों कमा रहे हैं कि उनके एम्बिशन इतने बढ़ गए हैं, उनकी आवश्यकता इतनी बढ़ गई है कि वो एक ही कमाई से फुलफिल नहीं हो सकता है। इसका होता क्या है, बच्चे को मेड या दाई के साथ दे देता है जिसका पालन पोषण करता है। अगर वो परिवार लकी हुआ तो उनके पेरेंट्स, माँ के या बाप के पेरेंट्स आकर संभाल देते हैं, लेकिन ऐसा मुश्किल से कुछ ही परिवार हो पाता है, अधिकांश परिवार में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद हम आते हैं लेट एज। लेट एज मतलब अर्निंग एज, लेटेज जाके 15 से 40-45 साल के बीच में। तो उस समय सुबह निकलता है आर्मी, काम करके आता है, थका रहता है तो बात करने का समय नहीं मिलता है, और थोड़ा समय भी मिलता है तो चाहता है कि सोशल मीडिया में, मोबाइल पे, लैपटॉप में व्यस्त रहें, और इसके कारण परिवार टूट रहा है, पति पत्नियों में आपस में संबंध बिगड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें अगर आप बात करोगे तो सॉल्यूशन निकल जाएगा, लेकिन बात नहीं करोगे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर आप संवाद रेगुलर रूप से करते रहो तो ये संभावना बनती है वो जो दुराव हो रहा है वो दुराव नहीं होगा। उसके बाद आते हैं ओल्ड एज में। माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे जो भी आए थोड़ा सा हमें समय दें। एक मुझे रिसेंटली याद पड़ रहा है एक कहानी क्या, सच्ची घटना ही है। बहू और बेटे जा रहे थे मार्केटिंग करने, तो माँ से पूछा कि माँ कुछ मंगाना है, तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, तब कहा कि ठीक है बेटा हम लिख के दे रहे हैं। तो एक कागज़ पर लिखा उन्होंने, और बहू और बेटे दोनों मार्केट चले गए। मार्केटिंग जब कर लिए तब बोले कि साहब माँ का कुछ डिमांड है, उसको हम देख लेते हैं, खरीद लें। तो कागज़ जब खोला गया तो उसमें एक लिखा हुआ था कि बेटा माँ को कुछ क्षण दे दो जिसमें हम बेटे को गोद ले सकें, उसको खाना खिला सकें, दो बात कर सकें। उसके बाद दोनों बहू बेटे वहाँ रोने लगे, भरचोली आंसू निकल गया, और उन्होंने देखा कि माँ बाप को सामान नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, उनको सम्मान चाहिए, उनको उनके साथ बात करने के लिए संवाद करने की आवश्यकता है जिससे वो अपने समय को आसानी से पार कर सकें। एक और कहानी है, भी सच्ची घटना है। एक बुजुर्ग पिता थे, उनके रूम में एसी टीवी सब लगा हुआ था, चलना फिरना मन था, तो बहुत रिक्वेस्ट करके बेटा और बहू को कहा कि मुझे नीचे बरांडा में मेरा चारपाई लगा दो। उन्हें तैयार नहीं हुआ, लेकिन अंत में बहुत रिक्वेस्ट किया तो कहा चलो लगा देते हैं। तो चारपाई उनका बरांडा में लग दिया गया। उनके पोते थे करीब 5-6 साल 7 साल का, पोता साथ बात करने लगे, गेंद खेलने लगे। 2-4 दिन के बाद उनका बेटा आता है तो पोता कह रहा है कि दादाजी गेंद फेंकिए। बेटा कहता है कि क्या कह रहे हो, तो चल नहीं सकते हैं। नहीं नहीं दादाजी चल सकते हैं, देखिए देखिए फेंकते हैं वो। तब उनको महसूस हुआ कि इनको फैसिलिटी देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इनको चाहिए कि बच्चे के साथ संवाद वो करें, उनके साथ खेले कूदें जिससे वो फिट रह सके। तो संवादहीनता बहुत अधिक हो रहा है परिवार में, और अगर संवादहीनता से हम बच पाएं तो परिवार बहुत हद तक हमारा बच सकता है।
1: डॉक्टर साहब, संवादहीनता के कारण लोग अवसादित भी होते जा रहे हैं, कुछ कुछ लोग हिंसा का सहारा भी लेने लग जा रहे हैं, जो एक बड़ा ही विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो कैसे इन सब चीज़ों से बाहर निकला जाए, एक अच्छा सुखद खुशनुमा माहौल, एक खुशनुमा पल अपने बच्चे अपने परिवार के साथ बिताया जाए।
0: हमारा एक दोस्त था जो उसने कुछ डिमांड किया जब मेडिकल में था, तो उसके भाई और पिताजी ने सारा इनकम दिखा दिया, अब तुम खर्च इसमें करो घर का और अपना पैसा निकाल लो। तो अगर आप अपने बच्चे के साथ गार्जियन के साथ अब शेयर करते हो तो बहुत हद तक ये अवसाद संवादहीनता जो है बच सकते हैं आप, क्योंकि बच्चे को ये नहीं पता है कि आप कमा रहे हो, कैसे कमा रहे हो, कहाँ से कमा रहे हो। तो अगर आप इस पर बच्चे को ध्यान देते हैं कि हम जो कमा रहे हैं उसमें ऐसे ऐसे खर्च होता है, तो बहुत हद तक आप बच्चे को हिंसक होने से बच सकते हैं। मेरी मान्यता है कि आप बच्चे को हर एक्टिविटीज उनका सहयोग करें, और साथ में वैसे माँ बाप से जिनको एक्स्ट्रा इनकम है, जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकते हैं बच्चों के लिए, वो कृपया इस पर अंकुश रखें, ताकि बच्चे अपने फाइनेंशियल पोजिशन को, कि पैसा कैसे कमाता है, कैसे खर्च करता है, वो अपना कंट्रोल कर सके, और उनके फ्यूचर भी अच्छा है। तो मेरा सभी गार्जियन से अनुरोध रहेगा कि बच्चे को उतना ही पैसा दें जितनी उसकी आवश्यकता है, उससे अधिक खर्च करें। दो बात होती है, एक होता है उनके दोस्तों में ईर्ष्या की भावना होती है, और अगर उनका बच्चा किसी से कुछ मिसबिहेव किया तो रिएक्शन में

0: वो बच्चा भी रिएक्शन में मारपीट कर लेता है। बच्चे के साथ या इवन माँ बाप के साथ अगर शेयर किया जाए तो बहुत हद तक इससे हम बच सकते।
1: आजकल लोग किसी से संवाद स्थापित भी करते हैं तो वो व्हाट्सएप के सहारे, एक कमरे से दूसरे कमरे से जाने से वो बचते हैं और मोबाइल का वो उपयोग करने लग जाते हैं। साथ बैठकर भोजन नहीं करते हैं तो बातचीत तो दूर की बात है। तो कैसे तारतम्य स्थापित किया जाए घर परिवार में?
0: इसका फिर एक ही उपाय है कि आप थोड़ा सा सोशल मीडिया या सो कॉल्ड मोबाइल, क्योंकि अभी भी बहुत लोग लैपटॉप वगैरह का उपयोग कम करता है, तो मोबाइल का उपयोग फिक्स टाइम में किया जाए और जिस समय सभी लोग रहें उस समय एक नियम बना लिया जाए कि मोबाइल का उपयोग हम नहीं करेंगे, और ये मिलजुल कर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
1: और साथ बैठकर भोजन करें और आपस की समस्याएं सुनने की कोशिश करें कि क्या समस्याएं हैं और उसका निदान भी किया जाए।
0: हाँ, क्योंकि और समय नहीं मिल पाता है, लेकिन अगर निश्चित रखा जाए तो एक समय अगर एक ही कुर्सी टेबल पर बैठ के लोग खाना खाएं तो उसमें बहुत सारी बातें हो सकती है और समस्या का समाधान हो सकता है।
1: यदि संवादहीनता लगातार लंबे समय तक बनी रहे तो क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती है डॉक्टर साहब?
0: अभी के समय में सबसे बड़ा है डिप्रेशन या अवसाद। डिप्रेशन में बहुत सारी बातें होती है, अगर डिप्रेशन पेशेंट तो हेडेक होगा, बॉडी एक होगा, जॉइंट पेन होगा, मतलब सारे फिजिकल डिजीजेज जो आप कल्पना कर सकते हो अगर डिप्रेशन में गए हो तो सब कुछ हो सकता है। जैसे कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, आपको डिप्रेशन से निकलने के लिए एक ही उपाय है कि परिवार में संवादहीनता किसी नहीं रहे, सब लोग मिलजुल कर रहें और एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे समस्या समझाएं,
1: आपस में मिलें बैठें बातचीत करें, तभी समस्या का समाधान हो सकता है। यदि लगातार हम बात नहीं करते हैं, किसी से मिलते नहीं हैं, सिर्फ हाय हेलो करके ही रह जाते हैं और अपने कामों में हम व्यस्त रह जाते हैं तो फिर इसे हम कहते हैं संवादहीनता। फिर आपस में प्यार मोहब्बत कैसे बढ़ेगा और कैसे हम मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे और एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे? तो क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? मिलिए जुलिए हंसिए शेयर कीजिए,
0: मिलिए जुलिए हंसिए शेयर करिए, ये चाहेंगे। और साथ में एक अनुरोध और करेंगे कि आपका प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्क्रीन टाइम एंड प्रॉपर स्लीप, अगर तीनों चीज़ आप मेंटेन करते हैं तो आप बहुत हद तक सभी बीमारियों से इन अवसाद से बच सकते हैं, डिप्रेशन बच सकते हैं।
1: जी, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि एक पर्याप्त नींद भी बहुत ज़रूरी है और एक निश्चित समय हम अपने मोबाइल के लिए रखें और परिवार को वरीयता दें, तब आप खुशहाल रहेंगे और जब आप खुशहाल रहेंगे तो सारा परिवार खुशहाल रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद बर्णवाल।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में परिवार में बढ़ती संवादहीनता कारण एवं निदान, इस विषय में आपको बता रहे थे डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद बर्णवाल। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: इति विषयस्यान्तर्गतं त्रिदिवसीयेऽस्मिन् सम्मेलने षट् शततोऽप्यधिकाः प्रदर्शकाः भागं भजितवन्तः। एतेषु प्रायः 300 अन्ताराष्ट्रियप्रतिभागिनः, 25 देशानां प्रतिनिधयः, 150+ वक्तारः च आसन्। त्रिषु दिनेषु सेमीकंडक्टर विन्यासः, निर्माणम्, उपकरणानि तथा सामग्र्यः, विद्युत कृत्रिम बुद्धिमत्तादि 650 यावत् सन्धिपत्राणि, घोषणाः, सामरिक उपक्रमाः च दृष्टाः। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः सेमीकंडक्टर उद्योगे साइबर आक्रमणानां कृते सावधानम् अकरोत्। केचन देशाः भारतस्य सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखलायां उन्नतिं नैच्छन्ति, अतः ते कस्यापि प्रकरणस्य व्यवधानस्य च कृते सज्जाः भवेयुः। ह्यः नवदिल्ल्याम् एकस्मिन् वार्तावाहिन्या सह वार्तालापं कुर्वन् श्रीवैष्णवः अवदत् यत् भारतं सम्भाव्यभूराजनैतिकसङ्कटानां विषये निरन्तरम् अवधानं कर्तव्यम्, यतः अधुना भारतं चिप्सविन्यासं कर्तुं च समर्थः देशत्वेन उद्भूतः अस्ति।
1: Industry requires lots and lots of efforts on every front. Both the industry and the government and the state governments, they have to work in tandem. We have to continuously be watchful of the potential geopolitical risks which will arise because India is now emerging as a country which can design and manufacture chips. Obviously, that will be seen as a threat by many other established players.
0: विकसित भारतस्य कृते शत सप्ताहानां नशा मुक्त युवाभियानम् अद्य प्रमुखं राष्ट्रव्यापि यूनां संघटनं द्रष्टुं शक्नोति। युवप्रकरणानां क्रीडामन्त्रालयः अवदत् यत् देशस्य 67,000 स्थानेषु राष्ट्रियसङ्कल्पसमारोहस्य आयोजनं क्रियते। मन्त्रालयेन उक्तं यत् कार्यक्रमोऽयं 171,400 मण्डलानां माय भारत कार्यालयेषु 96,500 स्थानैः सह सहभागिसंस्थासु आयोजयिष्यन्ते। मन्त्रालयः अधोरेखितवान् यत् अयं प्रमुखः उपक्रमः प्रशासकीय युवाशाखानाम्, आध्यात्मिकसमूहानां, शीर्षव्यापारप्रकोष्ठानां, महाविद्यालयानां, स्थानीयसङ्घटनानां च संयोगेन शतशः स्थानेषु कार्यक्रमाणां सञ्चालनाय विशालराष्ट्रियजालस्य शक्त्या प्रवर्तते। निर्वाचनायोगः अद्य राष्ट्रियराजधान्यां सर्वेषु मतदानकेन्द्रेषु विशेषशिबिराणि आयोजयिष्यति। प्रतिदिनस्य अभियानस्य उद्देश्यं नागरिकनूतनसमावेशने निर्वाचकसूच्यां प्रस्तावितसमावेशनस्य अथवा नामविलोपनस्य आक्षेपैः निर्वाचकसूच्यां विवरणानां संशोधने च साहाय्यं कर्तुं भविष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा ये करने की जरूरत नहीं है। बायोमेट्रिक आधार प्रमाणन का काम सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के

0: विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा है कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मामलों में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा।
1: अगर किसी के नाम में मिसमैच है या किसी को DOB में मिसमैच है तो उसके सामने भी ग्राउंड लिखा हुआ है कि उसको नोटिस क्यों आएगा और नोटिस लिस्ट में है। अब ये भी ना सोचे कि मुझे मेरा नाम तो लिस्ट में लेकिन अभी तक मुझे नोटिस नहीं आया, तो नोटिस स्टैगर्ड मैनर में जाएगी क्योंकि वो हियरिंग होनी है तो हियरिंग ERO के यहाँ पे होनी है। उसमें प्लेस लिखा होता है, एक दिन में एक लिमिट होती है कि कितने विजिटर्स को वो हैंडल कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से वो स्टैगर्ड मैनर में नोटिस दे रहे हैं और जैसे जैसे नोटिस जो ऑलरेडी जनरेटेड है वो डिस्पोज होते जाएंगे उसी हिसाब से सक्सेसिव नोटिसेस इश्यू होते जाएंगे।
0: दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए एक विशेष अभियान चलाया। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना है और उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियम अनुसार कार्रवाई करना है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के तहत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुँचाया जाएगा। इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल हैं। ये आयोजन एक महत्वपूर्ण क्षण होगा जो विकल्पों और नशा मुक्त भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए युवाओं को एकजुट करेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABBP ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। यश डवास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव निर्वाचित हुए हैं। उपाध्यक्ष पद निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शोकीन ने जीता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में ABBP की सफलता पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा है कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उधर श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के प्रति ABBP की प्रतिबद्धता को लेकर युवाओं में दृढ़ विश्वास बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि ये जीत विकसित भारत के लिए योगदान के प्रति विद्यार्थियों के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। जापान में 20वें एशियाई खेल में भारतीय निशानेबाज एलेवेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में चुनौती पेश करेंगी। ये तीनों खिलाड़ी व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा दोनों श्रेणी में मुकाबले में उतरेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया के साथ खेलेगी। प्रतियोगिता का महिला क्रिकेट सेमीफाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कार्यक्रम की प्रस्तुति स्वर होगी प्रीति कुमारी के संयोजन श्री प्रशांत गौरव की। 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। 10:00 हिंदी में समाचार, 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। 10:10 पर विविध भारती के कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी मुंबई।

दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 1:05 पर होगा अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से, 1:20 पर विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से।

दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार, 2:15 पर होगा हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविधा। 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 3 बजे विविध भारती के कार्यक्रम मन चाहे गीत और 3:30 पर विविधा नाट्य तरंग आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से। 4 बजे प्रादेशिक समाचार 4:02 पर विविध भारती के कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से। 5 बजे प्रादेशिक समाचार 5:02 पर छाया गीत विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से।

आप सुन रहे थे आज दिन में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब हम अपनी कार्यक्रम यानी बाल सभा में आप सबों का, खासकर बच्चों का, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बच्चों, आज सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो लगभग हर बच्चे के बचपन का खूबसूरत हिस्सा होती है, और वो है खिलौना। खिलौना सिर्फ बच्चों के खेलने और मनोरंजन का साधन नहीं है। सही खिलौने बच्चे को सोचने, समझने, सीखने, कल्पना करने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर देते हैं। इसलिए खिलौने को बच्चों का सबसे पहला खेल खेल में सीखने वाला साथी कहा जाता है। और खिलौनों के बहुत सारे प्रकार भी होते हैं दोस्तों। पहला है गुड़िया और गुड्डे का खिलौना। गुड़िया, गुड्डे और उनके छोटे छोटे घर या सामान बच्चों के कल्पनात्मक खेल को बढ़ावा देते हैं। बच्चे इनके साथ परिवार, स्कूल, डॉक्टर या दुकान जैसे खेल खेलते हैं। इससे वे सामाजिक व्यवहार और रोज़मर्रा की गतिविधियों को समझना सीखते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक और निर्माण वाले खिलौने। ब्लॉक्स, ईंट जैसे जोड़ने वाले खिलौने बच्चों को कुछ बनाने, फिर उसे बदलकर नया रूप देने का मौका देता है। इससे रचनात्मकता, समस्या सुलझाने की क्षमता और हाथ आँख के तालमेल का अभ्यास होता है। पहेलियाँ या पजल वाले खिलौने। पजल बच्चों को ध्यान से देखने, मिलान करने और सही समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। इससे एकाग्रता, तार्किक सोच और धैर्य विकसित करने में मदद मिलती है। गेंद, बैट और आउटडोर वाले खिलौने। गेंद, रस्सी, बैडमिंटन जैसे खेल बच्चों को सक्रिय रखते हैं। इसे शरीर की गतिविधि, संतुलन और समन्वय का अभ्यास होता है। बच्चों के लिए खेलना केवल मनोरंजन नहीं बल्कि स्वस्थ विकास का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। संगीत वाले खिलौने। छोटी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे खिलौने बच्चों को

ताल और लय की पहचान का अवसर देते हैं। बच्चे इनके माध्यम से संगीत की ध्वनि की दुनिया से परिचित होते हैं। कला और क्राफ्ट से जुड़े हुए खिलौने, रंग, ड्राइंग, सामग्री, मिट्टी और क्राफ्ट किट जैसी चीज़ें बच्चे को उसकी कल्पना को चित्र या वस्तु का रूप देने में मदद करती है, जिससे उनकी रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा मिलता है। शैक्षणिक खिलौने, अक्षर, संख्या, आकार, रंग और मिलान सीखने वाले खिलौने बच्चों के लिए सीखने को मज़ेदार बना देते हैं। जब बच्चा खेलते खेलते सीखता है तो सीखने की प्रक्रिया उसे बोझ नहीं लगती है। जानते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बच्चे को खिलौना होना ही चाहिए जीवन में। इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। एक अच्छा खिलौना बच्चे को केवल व्यस्त नहीं रखता, बल्कि उसे कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है। कई नई चीज़ों के बारे में सोचते हैं, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हैं, हाथ और आँख के बीच बेहतर तालमेल विकसित करते हैं, चीज़ों को जोड़ना, अलग करना, व्यवस्थित करना सीखते हैं, दूसरों के साथ खेलते हुए सहयोग और अपनी बारी का इंतजार करना सीखते हैं, जीत और हार जैसी परिस्थितियों का समझना और उन्हें जानना सीखते हैं, अपनी भावनाओं और विचारों को खेल के माध्यम से व्यक्त करना सीखते हैं। माता पिता के लिए भी जरूरी बात है। बच्चों के लिए खिलौने चुनते समय केवल यह नहीं देखना चाहिए कि खिलौना कितना महंगा या आकर्षक है, यह भी देखना चाहिए कि बच्चे की उम्र के अनुकूल, सुरक्षित और उसकी रुचि के अनुसार है कि नहीं। हर खिलौना इलेक्ट्रॉनिक होना जरूरी नहीं है। कई बार साधारण गेंद, ब्लॉक्स, किताब, पजल या रंग भरने की सामग्री बच्चे को लंबे समय तक रचनात्मक रूप से व्यस्त रख सकती है। और सबसे जरूरी बात है, खिलौना बच्चे के साथ समय बिताने का विकल्प नहीं है। माता पिता अगर कभी बच्चे के साथ बैठकर वही खिलौना लेकर खेलें तो खेल और भी मज़ेदार होगा और बच्चे को सीखने का अवसर भी मिलेगा। अब आइए सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

तो बच्चों, बाल सभा कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। अपनी रेडियो दोस्त प्रीति को इजाजत दें। नमस्कार। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे गायन शोभा गुट्टू से, और आज राग है कजरी, ठुमरी मिश्र भैरवी।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग में। गायन कलाकार थी शोभा गोटो। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से, साथ ही प्रादेशिक समाचार होगा हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। अब समाचार विस्तार से। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। बायोमेट्रिक आधार प्रमाण सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

0: मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल है। ये आयोजन एक महत्वपूर्ण क्षण होगा जो स्वस्थ विकल्पों और नशा मुक्त भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए युवाओं को एकजुट करेगा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने इसकी शुरुआत 18 सितंबर को पठानकोट से की थी। ये अभियान 4 चरणों का है। एक रिपोर्ट।
1: यह 13 दिन की नशा मुक्त पंजाब यात्रा पंजाब के सामने मौजूदा 3 बड़ी चुनौतियों पर केंद्रित है। ये चुनौतियां हैं नशों का बढ़ता खतरा, बिगड़ती कानून व्यवस्था और प्रशासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार। यह यात्रा राज्य में 4000 किलोमीटर का सफर तय करके सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को नशों के खिलाफ लड़ाई के लिए एकजुट करेगी। तीसरी यात्रा आज केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल फाजिलका के सादिकी बॉर्डर से शुरू करेंगे और कल चौथे फेज को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बठिंडा के तलवंडी साबो से हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे किस तरह वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को लागू कर इस सोच को अमल मिलाया गया।
2: वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को 2017 में कई केंद्रीय और राज्य करों और सीमा जांच चौकियों के कारण बटे हुए घरेलू बाजार को एकीकृत करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। 17 करों और 13 उपकरों को एक साझा व्यवस्था के तहत लाया गया जिससे एक देश एक कर एक बाजार की अवधारणा व्यवहारिक रूप से साकार हुई। GST दरों में हाल के सुधारों का उद्योग और आम लोगों दोनों ने स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में MVIRDC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कलंत्री ने कहा,
3: जो हाल ही में GST का जो रिडक्शन किया है गवर्नमेंट ने, वो जो कमी की है उससे रेशनलाइज किया है टैक्स स्ट्रक्चर। कई चीजों पे बहुत ज्यादा था, कई चीजों पे पर नहीं था, तो रेशनलाइज करने से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और ऐसे जहाँ जहाँ गवर्नमेंट को उचित है कि यहाँ ज्यादा है या जरूरी है कम करना, और यहाँ उम्मीद है कि यहाँ बढ़ाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लग्जरी और फूड्स में या लग्जरी आइटम्स में, तो वो बहुत अच्छी सुविधा रहेगी कॉमन मैन के लिए और एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए।
2: मुंबई की नेहा कुलकर्णी ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर GST कम होने से उनके परिवार का मासिक खर्च घटा है और बचत भी काफी बढ़ी है।
4: हमारे घर का महीने का बजट जो है वो बनाते समय रोजमर्रा की चीजों पर काफी खर्च हो जाता था, जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट और दूसरी हाउस होल्ड आइटम्स। इन चीजों पर GST घटाकर 5% कर दिया गया है। दूध और कई डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी GST कम हुआ है, तो डेफिनेटली थोड़ी राहत मिल रही है।
2: पिछले 9 वर्षों में GST सुधारों के कर व्यवस्था को सरल बनाया है, अनुपालन का बोझ कम किया है और उपभोक्ताओं तथा कारोबारियों को अधिक राहत दी है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABBP ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में ABBP की सफलता पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उधर श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए ABBP की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस

0: मतदाता सूची में नए नाम जोड़े या जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मामलों में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा।
1: अगर किसी के नाम में मिसमैच है या किसी को DOB में मिसमैच है, उसके सामने भी ग्राउंड लिखा हुआ है कि उसको नोटिस क्यों आएगा, और नोटिस लिस्ट में है। अब ये भी ना सोचे कि मुझे मेरा नाम तो लिस्ट में, लेकिन अभी तक मुझे नोटिस नहीं आया, तो नोटिस स्टेगर्ड मैनर में जाएगी, क्योंकि वो हियरिंग होनी है, तो हियरिंग ERO के ERO में यहाँ पे होनी है। उसमें प्लेस लिखा होता है, एक दिन में एक लिमिट होती है कि कितने विजिटर्स को वो हैंडल कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से वो स्टेगर्ड मैनर में नोटिस दे रहे हैं, और जैसे जैसे नोटिस जो ऑलरेडी जनरेटेड है वो डिस्पोज होते जाएंगे, उसी हिसाब से सक्सेसिव नोटिसेस इश्यू होते जाएंगे।
0: दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियम अनुसार कार्रवाई करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं।
2: We have to continuously be watchful of the
3: भारत चिप्स डिजाइन और निर्माण करने वाले देश के तौर पर उभर रहा है, इसलिए हमें संभावित भौगोलिक राजनीतिक जोखिमों पर लगातार नजर रखनी होगी। कई दूसरे स्थापित प्रतिभागी इसे एक चुनौती के तौर पर देखेंगे, हमें दूसरे प्रतिभागियों को लेकर भी सावधान रहना होगा। इसलिए मैंने उद्योग जगत से साफ साफ कहा है, साइबर हमलों और किसी भी तरह के व्यवधान के लिए तैयार रहे।
0: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों कर्नाटक, केरला, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक गरज चमक और तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं मछुआरों को कल तक अंडमान सागर तथा अगले दो दिन तक पूर्वी मध्य और उससे लगे उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। तापमान 23 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाइयां, फोरेंसिक सामग्री, टेंट, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामान सहित 11 टन सामग्री शामिल है। राहत सामग्री लेकर पहुंचने वाला भारतीय वायुसेना का ये 9वां विमान था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के पुनर्वास और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
3: चेस ओलंपियाड में कल भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से हरा दिया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुए मुकाबले में विश्व चैंपियन डिगोकेश ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर एलेक्सी शिरोव को हराकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं आर प्रणानंद का डेविड एंटोन गुइजारो के साथ और निहाल सरीन का जेमे सेंटोस लाटासा के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। महिला वर्ग में भारत ने मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 46वें फिडे चेस ओलंपियाड का 5वां राउंड खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। 20वें एशियाई खेलों में आज भारत की टैकबॉल खिलाड़ी किउमसी डिसूजा कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोतो से खेलेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया से भिड़ेगी। प्रतियोगिता का महिला क्रिकेट सेमीफाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से होगा। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: अमेरिका ने अपने नागरिकों को आगाह किया है कि वे पश्चिम एशिया की यात्रा बहुत सोच समझ कर ही करें। अमेरिकी प्रशासन ने ये चेतावनी क्षेत्र में बढ़ते तनाव, तेजी से स्थिति बिगड़ने की संभावना, उड़ानों में रुकावट और अमेरिकी ठिकानों पर हमले की आशंका को देखते हुए जारी किया है। यमन के हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब की तरफ मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की चेतावनी में पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि उड़ानें रद्द हो सकती हैं, हवाई मार्ग बंद हो सकते हैं और यात्रा संबंधी अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे। एक्सपर्ट

0: at AIR News Hindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
2: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

0: पहले पूरे किए। हिंदुस्तान लिखता है, दुनिया को जलवायु चुनौतियों का समाधान दे रहा भारत। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव में 17 साल बाद किसी निर्दलीय उम्मीदवार के जीतने का समाचार सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। जनसत्ता लिखता है, करीब डेढ़ दशक से डूसू के चारों पदों पर एबीवीपी और एनएसयूआई का रहा है कब्जा। अमर उजाला की सुर्खी है, डूसू में फिर भगवा, एबीवीपी ने 3 सीटें जीती। जापान के नागोया शहर में 20वें एशियन गेम्स के भव्य उद्घाटन समारोह की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी है। पंजाब केसरी लिखता है, नागोया में एशियाड का आगाज, मनुभाकर और पवन सहरावत ने फहराया तिरंगा। मयूर विहार से सरायका लिखा, 5 मिनट में 3.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार, 29 सितंबर को होगा शुरू। दैनिक भास्कर की खबर है, राजस्थान पत्रिका ने ईरान में हिजाब कानून को लेकर सख्ती के बीच राजधानी तेहरान में महिलाओं के रनिंग इवेंट पे ध्यान खींचने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, बिना हिजाब के तेहरान की सड़कों पर 10 किलोमीटर दौड़ी सैकड़ों महिलाएं। ग्रीनलैंड पर कब्जे के बजाय अमेरिका करेगा इसकी चौकीदारी, ग्रीनलैंड और अमेरिका में हुआ करार, आर्कटिक में थमा तनाव, दैनिक जागरण की सुर्खी है। पत्र लिखता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हस्ताक्षर की संभावना।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Government makes Aadhaar biometric authentication mandatory for subsidized refills of LPG cylinders from 1st of next month. Rashtriya Sankalp Samaroh being organized at 1067 locations across the country today as part of 100 weeks Nasha Mukt Yuva Abhiyan. Election Commission to hold special camps in all polling stations in Delhi today to assist citizens regarding inclusion and deletion of names in electoral rolls. IMD forecasts heavy rainfall in coastal Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Keralam, Karnataka and Andaman and Nicobar Islands today. And Indian men score resounding 3-1 victory over Spain at Chess Olympiad in Samarkand. Women's team beat Mongolia 3-1. And now the news in detail. Government has said that biometric Aadhaar authentication is mandatory for subsidized domestic LPG refills from 1st October this year. Domestic LPG consumers will need to have completed biometric Aadhaar authentication to book refills at the regulated retail selling price with applicable subsidy. More from our correspondent.
3: Biometric Aadhaar authentication ensures that subsidized LPG reaches only genuine and deserving households. Linking each connection to the Aadhaar authenticated consumer will help prevent diversion of subsidized domestic cylinders for commercial and industrial use. It will remove duplicate and ineligible connections and make subsidy delivery transparent and targeted. The Petroleum and Natural Gas Ministry said that the process is not meant to deny LPG to any genuine household, and every eligible consumer has several easy ways to complete it. It said 27.43 crore consumers have already completed authentication and do not need to do anything further. Authentication can be completed at the time of delivery, at the distributor's showroom, or an oil marketing company mobile app. The Petroleum and Natural Gas Ministry has urged consumers who have not yet completed biometric Aadhaar authentication to do that before 1st October 2026. With Suparna Saikia, Saklan Akhtar for Akashvani News, Delhi.
2: The Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat 100

0: Mongolia. B. Savitashree continued her impressive run with a fourth consecutive win, defeating seasoned player Bakuyag. The 20th Asian Games 2026 will see several Indian athletes begin their medal hunt across multiple disciplines today. In today's cricket event, Indian women team will face Bangladesh in the semi-final. The knockout match will start at 10:30 a.m. Indian time. And now for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
1: Thank you, Saira. ABVP sweeps 3 of 4 Dusu seats. NSUI rebel wins VP post, writes in the Sun Times. While the Sunday Tribune headlines, ABVP sweeps Dusu poll again. Independence VP post win stuns rivals. FTA skilling incentives opening new employment avenues for youth, says Prime Minister, writes Sunday Pioneer. The Hindu also quotes the Prime Minister in its headline, developing nations wrongly blamed for emissions. The Sunday Statesman reports, Bengal bipole drama, Mamta's Rajinagar candidate does U-turn after pull-out decision. The Asian Age headlines, India rejects new US tariffs pressure. And finally, Sunday Pioneer writes, end of an era, 1965 war hero Cook passes away. The legendary Indian Air Force fighter pilot, Flight Lieutenant Alfred Cook, played a crucial role in defending Kalaikunda in the 1965 Indo-Pak War and was awarded the Veer Chakra for the classic dogfight. And with that, it's back to you, Saira.
0: Thanks, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Government makes Aadhaar biometric authentication mandatory for subsidized refills of LPG cylinders from 1st of next month. Rashtriya Sankalp Samaroh being organized at 1,067 locations across the country today as part of 100-week Nasha Mukt Yuva Abhiyan. Election Commission to hold special camps in all polling stations in Delhi today to assist citizens regarding inclusion and deletion of names in electoral rolls. IMD forecasts heavy rainfall in coastal Andhra, Telangana, Tamil Nadu, Keralam, Karnataka and Andaman Nicobar. And Indian men score resounding 3-1 victory over Spain at Chess Olympiad in Samarkand. Women's team beat Mongolia 3-1. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे। वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
3: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
2: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: मौसी, सुबह सुबह आप यहाँ बहु पेट से है ना, तो भगवान से सब कुछ अच्छा करने की कामना करने आई थी।
5: ये तो खुशी की बात है, गर्भ में पल रहा बच्चा और माँ स्वस्थ रहे, इसके लिए समय समय पर बहु की डॉक्टरी जांच बराबर करवाती रहना।
4: मैंने बहु का नाम आंगनबाड़ी केंद्र में लिखवा दिया है, उसे समय समय पर जांच के लिए सरकारी अस्पताल भी ले जाती हूँ।
6: गर्भ के दौरान 4 बार अवश्य जांच कराएं।
4: गर्भावस्था के दौरान 100 आयरन की गोली और टीटी के इंजेक्शन अवश्य लें।
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
8: माँ बनना कोई बीमारी है क्या जो 100 दिन तक रोज ही दवा लूं?
9: बहू, आयरन की गोली माँ के शरीर को मजबूत बनाती है।
10: अरे माँ छोड़ो भी, खाना खा तो रही है ठीक से रोज।
9: लो अब जनरेटर को क्या हुआ?
10: अरे माँ तेल खत्म हो गया है और क्या।
9: अच्छा, 2 कमरे की बत्ती जली तो तेल खत्म, और बहू का क्या, वो भी तो 2 जान संभाल रही है। बहू ये गोली खून की कमी नहीं होने देती, और बच्चे को पोषण माँ से ही तो मिलेगा। चांस क्यों लेना।
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
11: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। विकसित भारत को लेकर 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के तहत आज झारखंड समेत देश भर में 1067 स्थानों पर होगा राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने SIR के दौरान पहले से उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर मतदाताओं की पात्रता जांच करने का दिया निर्देश। दुर्गा पूजा के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर रांची जिला प्रशासन की टीम ने की बैठक। उपायुक्त ने विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार करने का दिया निर्देश।

0: राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में शामिल होने के लिए झारखंड पुलिस के विशेष एंटी नक्सल बल झारखंड जगुआर की टीम आज गुजरात के लिए होगी रवाना। और राज्य की पूर्व मंत्री बिमला प्रधान का आज सिमडेगा के पैतृक गांव बगडाण में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के तहत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। इधर राजधानी रांची समेत राज्य भर में नशा मुक्त युवा अभियान के तहत शैक्षणिक संस्थानों और एनएसएस इकाइयों के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जन सेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि किस तरह वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को लागू कर इस सोच को अमल में लाया गया।
1: वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को 2017 में कई केंद्रीय और राज्य करों और सीमा जांच चौकियों के कारण बटे हुए घरेलू बाजार को एकीकृत करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। 17 करों और 13 उपकरों को एक साझा व्यवस्था के तहत लाया गया, जिससे एक देश एक कर एक बाजार की अवधारणा व्यवहारिक रूप से साकार हुई। GST दरों में हाल के सुधारों का उद्योग और आम लोगों दोनों ने स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में MVIRDC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कलंत्री ने कहा,
2: जो हाल ही में GST का जो रिडक्शन किया है गवर्नमेंट ने, वो जो कमी की है उससे रेशनलाइज किया है टैक्स स्ट्रक्चर। कई चीजों पे बहुत ज्यादा था, कई चीजों पे पर नहीं था, तो रेशनलाइज करने से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और ऐसे जहाँ जहाँ गवर्नमेंट को उचित है कि यहाँ ज्यादा है या जरूरी है कम करना, और यहाँ उम्मीद है कि यहाँ बढ़ाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा लग्जरी और फूड्स में या लग्जरी आइटम्स में, तो वो बहुत अच्छी सुविधा रहेगी कॉमन मैन के लिए और एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए।
1: मुंबई की नेहा कुलकर्णी ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर GST कम होने से उनके परिवार का मासिक खर्च घटा है और बचत भी काफी बढ़ी है।
3: हमारे घर का महीने का बजट जो है वो बनाते समय रोजमर्रा की चीजों पर काफी खर्च हो जाता था, जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट और दूसरी हाउस होल्ड आइटम्स। इन चीजों पर GST घटाकर 5% कर दिया गया है। दूध और कई डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी GST कम हुआ है, तो डेफिनेटली थोड़ी राहत मिल रही है।
1: पिछले 9 वर्षों में GST सुधारों के कर व्यवस्था को सरल बनाया है, अनुपालन का बोझ कम किया है और उपभोक्ताओं तथा कारोबारियों को अधिक राहत दी है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि 19 और 20 नवंबर को इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब ELC 2 का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए सभी जिलों में ELC को पुनर्गठित और सक्रिय करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि SIR के दौरान सुनवाई में किसी विशेष अतिरिक्त दस्तावेज की मांग न की जाए, पहले से उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर पात्रता जांच कर स्पीकिंग ऑर्डर पारित किया जाए और फॉर्म 6 का समयबद्ध डिजिटाइजेशन हो। दुर्गा पूजा को लेकर रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में समाहरणालय में विकास, अतिक्रमण, यातायात और विधि व्यवस्था की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें सिटी SP पारस राणा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त ने भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान, मुख्य मार्गों से अनावश्यक कट्स हटाने, अतिक्रमण हटने के बाद दोबारा कब्जा रोकने के लिए निगरानी और सभी वार्डों में वेंडर मार्केट के लिए स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए। रांची नगर निगम ने वार्ड 16 में पथलकुदवा रोड गुदरी चौक के पास निगम की लगभग 19 डिसमिल जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की, जहां पूर्व में अवैध बूचड़खाना चल रहा था। निगम ने बताया कि इस जमीन पर सामुदायिक भवन और अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेल्थ सेंटर का निर्माण प्रस्तावित है। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों द्वारा विरोध के प्रयास के कारण विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभियान को अगले आदेश तक स्थगित किया गया है।

0: समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार xhandle@eirnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के xhandle@eirnews_ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। यूपीआई लेन देन में परिवर्तन पर गिरिडीह में सरकारी फैसले का स्वागत किया गया है। महिला व्यवसायी जसवीर सलूजा ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विरुद्ध कोई फैसला नहीं ले सकते हैं।
1: जो यूपीआई में चेंजेस किया गया, जो शुल्क लिया जा रहा है, वो हमारे जैसे कारोबारी छोटे स्केल में काम करने वालों के लिए या कस्टमर्स के लिए कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंफ्यूजन में ना रहे, टेंशन ना ले, इसके लिए हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बड़े स्केल में जिनका काम होता है उनके लिए है बहुत हल्का शुल्क।
0: वही व्यवसायी संदीप डांगेच ने कहा कि इस निर्णय से आम आदमी को कोई नुकसान नहीं होगा।
2: सरकार जो ये जो शुल्क लगाने वाली है उससे छोटे व्यापारी किसी तरह कोई नुकसान नहीं यूपीआई का। ये सारा बड़े व्यापारी का मर्चेंट जो काम करते हैं उनके लिए ही है, और सरकार जब भी सोचते हैं वो जनता के हित के लिए ही सोचते हैं।
0: गुजरात के केवड़िया में 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 151वीं जयंती पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में झारखंड पुलिस के विशेष एंटी नक्सल बल झारखंड जगुआर का मार्चिंग दल भाग लेगा। बल के 200 पदाधिकारी और जवान राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे और इसकी तैयारी के लिए पूरा दस्ता आज अहमदाबाद रवाना हो रहा है। धनबाद समाहरणालय में अनुसंधान में साइंटिफिक और आईटी विषयों पर 4 सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। एसएसपी प्रभात कुमार ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस प्रशिक्षण में डिजिटल और फॉरेंसिक साक्ष्यों के संग्रह, डिजिटल फुटप्रिंट की पहचान और सुरक्षित तरीके से उसे संरक्षित करने की जानकारी दी जाएगी।
3: जो आईटी एक्ट से संबंधित कांडों का अनुसंधान करने के लिए अधिकृत उन सभी पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, और इसका मकसद सिंपल है कि जो आईटी एक्ट में जो अनुसंधान करता है वो उसका क्वालिटी के साथ अनुसंधान करे, जो अपराधियों को सजा दिलाने में मददगार साबित।
0: राज्य की पूर्व मंत्री विमला प्रधान का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। आज सुबह 10 बजे सिमडेगा जिले के पाकरटांड प्रखंड स्थित उनके पैतृक गांव बगडांड में पालामाड़ा नदी तट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। राज्य के कई जिलों में आज से मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। वहीं 23 सितंबर को रांची, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम समेत 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने झारखंड उच्च न्यायालय में 3 नए जजों की नियुक्ति की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है झारखंड हाईकोर्ट को मिले 3 नए जज, फिर भी 9 पद खाली। दैनिक जागरण और हिंदुस्तान ने संविदा कर्मियों को नियमित करने के झारखंड उच्च न्यायालय की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और प्रभात खबर ने माध्यमिक आचार्य परीक्षा में सफल 102 अभ्यर्थियों के डिग्रियों की जांच की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विकसित भारत को लेकर 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के तहत आज झारखंड समेत देश भर में 1067 स्थानों पर होगा राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने SIR के दौरान पहले से उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर मतदाताओं की पात्रता जांच करने का दिया निर्देश। दुर्गा पूजा के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर रांची जिला प्रशासन की टीम ने की बैठक, उपायुक्त ने विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार करने का दिया निर्देश। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में शामिल होने के लिए झारखंड पुलिस के विशेष एंटी नक्सल बल झारखंड जगुआर की टीम आज गुजरात के लिए होगी रवाना। और राज्य की पूर्व मंत्री विमला प्रधान का आज सिमडेगा के पैतृक गांव बगडांड में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: अरे रंथु बेटा, अपनी गाड़ी हमेशा तैयार रखना। अब

0: हमारी भाभी के बच्चा होने का समय निकट आ गया है, इस बार उसे स्वास्थ्य केंद्र ही ले जाऊंगी।
1: घर में प्रसव होने से कई परेशानियां हो सकती हैं।
2: उचित देखरेख और स्वास्थ्य के लिए महिला का प्रसव
1: स्वास्थ्य केंद्र में ही कराएं।
2: गर्भ के दौरान बराबर जांच कराते रहें।
1: हमेशा सही और ANM से संपर्क में रहें।
2: सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर सरकार BPL परिवार को
1: माँ बच्चे के उचित पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए प्रोत्साहन राशि भी देती है।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: देखिए सरपंच साहिबा, हमारा मकान का नया नक्शा ऐसा बनेगा कि पूरा गांव में नहीं होगा।
5: नक्शा तो ठीक है, पर इसमें शौचालय कहाँ है?
4: अरे उसकी क्या जरूरत, हम तो हमेशा खेत खलियान में जाते हैं।
5: क्या कहा? खुले में मल से खतरनाक कीटाणु फैलते हैं, फिर हमारे हाथ के माध्यम से खाने में आ जाते हैं और हमें बीमार करते हैं। हमेशा साफ और पक्के शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय के साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। शौच के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से, साथ ही प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन।

श्रोताओ नमस्ते, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त प्रीति। श्रोताओ, हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के बाद उनकी कहानी, उनके किरदार और उनका संगीत लंबे समय तक याद रहता है। ऐसी ही फिल्मों में एक नाम है 1980 में रिलीज हुई फिल्म कर्ज। ऋषि कपूर के शानदार अभिनय, सुभाष घई के निर्देशन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की यादगार संगीत से सजी यह फिल्म उस दौर की सबसे चर्चित फिल्मों में रही है। आज इसी कहानी को हम इस सफर में बात करेंगे, ऋषि कपूर के अभिनय और कर्ज की कहानी की, उसके कलाकारों की, संगीत की और कुछ खास बातें, उस फिल्म की यादगार कैसे बनाया। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत इसी फिल्म का।

श्रोताओं, कर्ज की कहानी रहस्य बदले प्रेम और पुनर्जन्म के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में ऋषि कपूर ने मोंटी नाम के किरदार को निभाया। मोंटी एक युवा और लोकप्रिय गायक है जिसकी जिंदगी अचानक एक ऐसे रहस्य से जुड़ जाती है जिसका संबंध उसके पिछले जन्म से है। कहानी धीरे धीरे दर्शकों को उसके पिछले जन्म की ओर लेकर जाती है और उसे जहाँ रवि वर्मा नाम के एक व्यक्ति अपनी पत्नी कामनी के साथ दिखाई देता है। कामनी का किरदार निभाया था सिमी गेरेवाल ने। रवि और कामनी के रिश्ते में आगे चलकर विश्वासघात और लालच का ऐसा मोड़ आता है जो पूरी कहानी को बदल देता है। रवि की मृत्यु के बाद कहानी वर्तमान समय में पहुंचती है और मोंटी के रूप में उसका पुनर्जन्म होता है। मोंटी को धीरे धीरे पिछले जन्म की से जुड़ी कुछ यादें, कुछ संकेत मिलने लगते हैं। यहीं से फिल्म में रहस्य और रोमांच बढ़ने लगता है। मोंटी यह समझने की कोशिश करता है कि उसके साथ अतीत में क्या हुआ था और उस पुराने जीवन का उसके वर्तमान से क्या संबंध है। यानी फिल्म का मूल सवाल सिर्फ यही नहीं कि कर्ज क्या है, बल्कि यह भी कि क्या इंसान के पिछले कर्म और अधूरे रिश्ते अगले जीवन तक पीछा कैसे करते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम जोहार पलामू।
1: जोहार पलामू।

श्रोताओं जोहार, स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम जोहार पलामू में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रीति। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। बच्चों, शिक्षा हमारे जीवन को नई दिशा देती है। शिक्षा हमें केवल नौकरी के योग्य नहीं बनाती, बल्कि सही और गलत के बीच अंतर समझाने और अधिकारों को जानने और जिम्मेदार नागरिक बनने में भी मदद करती है। इसलिए मन लगाकर पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही पूरे समाज को अच्छी और सही राह पे ला सकते हैं।

आप सुन रहे कार्यक्रम जोहार पलामू। अब आइए आपको मौसम का हाल बता दें। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कल के टेम्परेचर को अगर देखा जाए तो कल का भी अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आज ह्यूमिडिटी रहेगी 87% तक। आज सूर्यास्त का समय होगा 5:52 पर और कल सूर्योदय का समय होगा 5:41 पर। अब आइए सुनते हैं।

आप सुन रहे कार्यक्रम जोहार पलामू। अब आइए आज ज्ञान विज्ञान में बात करते हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हम सब सुबह उठते ही सबसे पहले, आप ये सोचिए कि आप क्या करते हैं। कमरे की लाइट जलाते हैं, पंखा जलाते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, पानी गर्म करते हैं, या फिर चाय बनाने के लिए बिजली से चलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। आज बिजली हमारे जीवन का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है कि बिजली के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बिजली से हमारे घर का पंखा घूमता है, बल्ब जलता है, टीवी चलता है, वह बनती कहाँ है? बिजली का उत्पादन कैसे होता है? बिजली घर से हमारे घर तक बिजली किस तरह पहुँचती है? और घर में लगे स्विच को दबाते ही पंखा या बल्ब कैसे चलने लगते हैं? अब पहले तो ये जान लीजिए कि ये बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। बिजली ऊर्जा का एक रूप है। जब विद्युत आवेश विशेष रूप से इलेक्ट्रॉन किसी चालक में व्यवस्थित रूप से गति करते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। आसान भाषा में कहें तो बिजली एक ऐसी ऊर्जा है जिसका उपयोग हम रोशनी, गर्मी, ठंडक, मशीनों को चलाने और अनेक दूसरे कामों में करते हैं। हमारे घरों में बिजली तारों के माध्यम से पहुंचती है और इन तारों में विद्युत धारा बहती है, और जब हम किसी उपकरण को विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं तो उपकरण काम करने लगता है। जैसे समझ लीजिए कि बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा में बदलती है, पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है, फ्रिज विद्युत ऊर्जा को ठंडक पैदा करने की प्रक्रिया में बदल देता है। अब बिजली पैदा करने के लिए क्या जरूरी होता है इसके बारे में आपको बता देते हैं। बिजली बनाने में हमें ऊर्जा के किसी स्रोत की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक स्रोत भी होते हैं जैसे कि सूरज की रोशनी, बहता हुआ पानी, हवा, कोयला, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा इत्यादि। इन स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को अलग अलग तकनीकों की सहायता से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जैसे कि किसी बिजली घर में कोयला जलाकर गर्मी पैदा की जाती है। जब गर्म पानी को भाप में बदलती है और भाप टरबाइन को घुमाती है, टरबाइन से जुड़ा जनरेटर बिजली बनाता है। और बिजली घर में बिजली कैसे बनती है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि बिजली घर में उत्पादन कैसे होता है। आखिर भारत में बिजली बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के बिजली घरों का उपयोग किया जाता है, जिसमें ताप विद्युत, जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा से जुड़े संयंत्र शामिल हैं। ताप विद्युत संयंत्र में होता है कि ताप विद्युत में कोयला, प्राकृतिक गैस या किसी अन्य ईंधन से गर्मी प्राप्त की जाती है। पहला चरण होता है ईंधन से गर्मी को पैदा करना। कई ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले को जलाया जाता है। कोयले के जलने से बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी पानी को गर्म करने के काम आती है। और दूसरे चरण में क्या होता है कि पानी से भाप बनता है। बिजली घर में पानी को विशेष बॉयलर में गर्म किया जाता है। गर्मी के

कारण पानी भाप में बदल जाती है। इस भाप का तापमान और दबाव बहुत अधिक होता है। अब तीसरे चरण की बात आती है, तो यह भाप से टरबाइन को घुमाना होता है। अब तेज दबाव वाली भाप को टरबाइन की ओर भेजा जाता है। टरबाइन में बड़े बड़े पंखे जैसे ब्लेड लगे होते हैं। भाप इन ब्लेडों पर बल डालती है और टरबाइन घूमने लगती है। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि तेज हवा किसी पवन चक्की के पंखे को घुमा देती है। चौथा चरण में क्या होता है, जनरेटर बिजली बनाता है। टरबाइन एक जनरेटर से जुड़ी होती है। जब टरबाइन घूमती है तो जनरेटर का घूमने वाला भाग भी घूमता है। जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चालक के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यह वह महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसकी सहायता से बड़े पैमाने पर बिजली बनाई जाती है। पांचवा चरण, बिजली का योग, यानी कि इसको आगे कैसे भेजा जाता है। जनरेटर से निकलने वाली बिजली को ट्रांसफार्मर की सहायता से उच्च वोल्टेज में बदला जाता है। इसके बाद इसे लंबी दूरी तक बिजली के तारों के माध्यम से भेजा जाता है। तो यहाँ तक तो बात हुई कि बिजली कैसे बनाई जाती है। अब आपसे बात करेंगे कि हमारे घरों तक कैसे पहुंचती है, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: रिलैक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

आप सुन रहे कार्यक्रम जोहार पलामू। श्रोताओं, बिजली को तो बनाकर हमने अपने घरों तक पहुंचा दिया, अब ये काम कैसे करती है इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। अब बिजली हमारे घर के मीटर तक पहुंच चुकी है, लेकिन घर में लगे अलग अलग उपकरणों तक बिजली कैसे पहुंचती है, इसके लिए घर में एक विद्युत वितरण व्यवस्था होती है। मीटर के बाद बिजली घर के मुख्य वितरण बोर्ड तक पहुंचती है और वहां से अलग अलग कमरों और उपकरणों के लिए विद्युत परिपथ बनाए जाते हैं। इन परिपथ में सुरक्षा के लिए MCV, फ्यूज और अन्य उपकरण लगाए जाते हैं। जब हम किसी कमरे की लाइट का स्विच दबाते हैं तो उस विद्युत परिपथ में धारा बहने का मार्ग पूरा हो जाता है। इसके बाद विद्युत ऊर्जा बल्ब तक पहुंचती है और बल्ब प्रकाश देने लगती है। इसी प्रकार पंखे के स्विच को दबाने पर विद्युत ऊर्जा पंखे की मोटर तक पहुंचती है और मोटर घूमने लगता है। तो आपको तो थोड़ी सी समझ में आ ही गई होगी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि ये कैसे बनती है और कैसे हमारे घरों तक पहुंचकर हमें रोशन करती है और ठंडक पहुंचाती है और बहुत सारे काम करती है जिसकी हमें और आपको सबको ज़रूरत पड़ती है। तो श्रोताओं, अब हमारे स्टूडियो की घड़ी की सुई भी इशारा कर रही है कि समय हो चला है आपसे विदा लेने का। तो चलते चलते बारी है आज के टिप्स की। अगर आप डोसा बना रहे हैं तो डोसा क्या होता है, कभी कभी ना वो तवे पे चिपक जाता है, तो ये आपके तवे पे ना चिपके इसके लिए आपको क्या करना है, करना यही है कि आप तवे को चढ़ाएं गैस पे और फ्लेम ऑन करें, गैस मतलब तवे को गर्म करना है। थोड़ा गर्म हो जाए तो उस पर एक चुटकी नमक छिड़क दें, उसके बाद बैटर डालें और फिर जब वो गर्म तवे से उसे जब निकालेंगे तब वो चिपकेगा नहीं। इसके बाद जितने भी डोसे आप बनाएंगे वो एक भी नहीं चिपकेंगे। तो ये टिप्स आप आज़मा कर देखिए और फिर देखिए कितनी कारगर है। तो कार्यक्रम जोहार पलामू में आज के लिए इतना ही। अपनी रेडियो दोस्त प्रीति को इजाज़त दे, नमस्कार और सुनते रहें ये प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार पलामू। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं नमस्ते, आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रीति। चलिए कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं एक इस गीत के साथ। फिल्म है अंजाम, आवाज अभिजीत की है।

अभी आप सुन रहे थे अभिजीत की आवाज़ में फिल्म ये दिल लगी का गाना। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है हमेशा, आवाज़ अभिजीत और अनुराधा पौडवाल की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रति

0: सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ लैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुँचाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मामलों में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में ABVP की सफलता पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उधर श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के प्रति ABVP की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वो चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाइयां, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामान सहित 11 टन सामग्री शामिल है। राहत सामग्री लेकर पहुंचने वाला भारतीय वायुसेना का ये 9वां विमान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पत्रकार पायल मेहता के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे जमीनी मुद्दों से गहराई से जुड़ी हुई थी और राष्ट्रीय मुद्दों की व्यापक समझ के साथ रिपोर्टिंग करती थी। श्री मोदी ने कहा कि पत्रकारिता के अलावा पायल मेहता लोगों के प्रति अपने स्नेह और आत्मीयता के लिए भी याद की जाएंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना कर समाज के सांस्कृतिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। जापान में 20वें एशियाई खेल में आज भारत की टैगबॉल खिलाड़ी कुइम्सी डिसूजा कांस्य पदक के लिए जापान की वीना साकामोतो से खेलेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया के साथ खेलेगी। प्रतियोगिता का महिला क्रिकेट सेमीफाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 से होगा। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज तेज बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय

0: तो आपका जो गायन का सफर है वो कैसे शुरू हुआ? आप हिंदी फिल्मों की पहली सफल बाल गायिका रही हैं। महज 9 साल की उम्र में आपने अपनी गायकी शुरू कर दी थी।
1: जी
0: ये सफर कैसे शुरू हुआ?
1: असल में मैंने शुरुआत तो की बहुत बचपन में।
0: अच्छा, इससे भी पहले?
1: जी, क्योंकि देखिए संगीत में एक मुझे वातावरण घर में मिला,
0: जी
1: विरासत में ही संगीत मिल गया। तो और मेरे मायके की तरफ की, मतलब मेरी माँ, मेरी मौसियाँ बहुत सुंदर गाती हैं। माँ तो खैर अभी जिंदा नहीं है,
0: जी
1: आई कहती थी मैं माँ को,
0: जी
1: आई जिंदा नहीं, मेरी एक दो मौसियों की भी का भी इंतकाल हो गया, लेकिन जब वो थी और जो भी अभी मौसी जिंदा है, बहुत सुंदर गला। तो हो सकता है आवाज मुझे शायद विरासत में उस तरफ से मिली हो। और क्या मैं थोड़ा सा अगर अपना बैकग्राउंड बताऊं?
0: जी बिल्कुल।
1: तो उस वक्त क्या, क्योंकि डैडी असिस्ट करते थे खेमचंद प्रकाश जी को, बुलो सिरानी जी को, तो घर में काफी प्रख्यात लोगों का आना जाना, एक जैसे ना रोजाना ही वो चलता रहता,
0: बड़े बड़े संगीतकार,
1: है ना, बंगीतकारों का और सिंगर्स भी, गायक गायिकाएं, उनमें से बहुत करीब जो थी डैडी के और आई के, वो थी आशा जी।
0: अच्छा।
1: मैं आज भी उन्हें आशा काकी ही कहती हूँ, है ना। तो आशा काकी का आना जाना, तो आई मेरी जो थी वो आशा काकी की

0: और वो आशा जैसी
1: जैसी हो। अरे क्या बात है,
0: ये बिल्कुल फैक्ट है। और हो सकता है शायद इसीलिए मेरे गानों में उनकी छवि आपको थोड़ी बहुत
1: थोड़ी बहुत और आप उनसे प्रभावित भी रही हैं।
0: बिल्कुल एक बाल बराबर उनकी छवि शायद नजर आती होगी।
1: नहीं, होता है कलाकार के साथ, जब हम अपना किसी को आइडल मानते हैं तो कहीं ना कहीं वो छवि हमारे अंदर होती है।
0: और आइडल तो आई मानती थी, उसके बाद मैं तो वो डबल हो गया।
1: आप ही का गाया हुआ सुनते हैं
0: जी, बिल्कुल
1: पसंद का गीत सुनते हैं।

0: बैया, ठीक से याद नहीं मुझे।
1: बहुत सुंदर।
0: तो आई, मैं बैठने लगी थी और ये आशा काकी जब घर में आती थी तो ये गाना वो गुनगुनाती थी कि वो सिर्फ मुझे ठुमके लगाते हुए देखना चाहती थी।
1: अच्छा।
0: तो मैं बैठे बैठे ठुमके लगाती थी और इतना हंसती थी वो, इतना एंजॉय करती थी। उन्होंने, वो हमेशा कहती थी, भैया इसे ना आप डांस डांस सिखाइए, ये बहुत अच्छी डांसर बनेगी। और मंदाकिनी जी, मैं बचपन में डांस बहुत अच्छा करती थी,
1: जी
0: ये अलग बात है कि आज मैं लोगों को नचाती हूँ लेकिन तब मैं नाचती बहुत अच्छा थी।
1: जी
0: तो मतलब ऐसा था कि अब थोड़ा और, मैं जब बड़ी हो गई तो जो गाने आते थे, अब घर में जब कोई फंक्शन है, कुछ भी, दशहरा दिवाली सब मिलते थे, क्योंकि आई सबसे बड़ी थी, डैडी सबसे बड़े थे, तो हमारे घर में ही वो हुजूम लगा लगता था। तो बस, तो एंटरटेनर एक ही थी, मुझे घर में सब गुड्डी कहते हैं, तो एक ही थी एंटरटेनर,
1: जी
0: गुड्डी।
1: जी
0: तो पहले तो ये कि डांस डांस, तो डांस भी ऐसे नहीं, मैं बाकायदा एंट्री लेती थी।
1: अच्छा।
0: हाँ, दूसरे कमरे से वो दो कमरों के बीच का जो पर्दा है वो बंद करके,
1: हाँ
0: फिर वो पर्दा हटा के, मतलब मैं क्या 5-6 साल की थी
1: जी
0: और सारा म्यूजिक अपने मैं जुबानी मुझे याद रहता था। तो वो जो गाना चला था ना, उड़ के पवन के संग चलूंगी,
1: संगलूंगी।
0: तो उसका बिगनिंग म्यूजिक टररप पररप पररप पररप पररप पररप पप, वो
1: जी
0: सब मुंह से बजा के फिर मैं एंट्री लेती थी।
1: अच्छा।
0: तो बहुत मजे लेते थे सब लोग और यही लगा था सबको कि ये डांसर बनेगी। लेकिन अभी हुआ यूं कि करते करते जब 7 साल की हो गई, गाती भी थी, तो एक मेरे मामा जी कृष्ण कुमार राणा जी उनका नाम था, वो भी अभी इस दुनिया में नहीं रहे,
1: जी
0: तो वो और मेरी सबसे छोटी मौसी रेखा राणा उनका नाम है, वो अभी जिंदा है, भोपाल में है,
1: जी
0: तो वो दोनों इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ थे कि मैं गाती भी हूँ। थोड़ा बहुत घर में मतलब ऐसे गवा देते थे, लेकिन उनको बहुत बहुत पता नहीं, मुझ पे बहुत एतबार था कि ये डांस से ज्यादा गाना अच्छा गाती है। मामा जी मेरे मुंबई में लायंस क्लब के मेंबर हुआ करते थे
1: जी
0: और एक शो था मुंबई के तेजपाल ऑडिटोरियम में। हाँ, मैं तारीख भी आपको बता सकती हूँ, 17 जनवरी 1967।
1: जी
0: तो ये शो अब मामा जी को ही ऑर्गेनाइज करना था, तो ये तय हुआ कि भाई तुम एक जो तुम्हारे एक दो डांसेस है वो करोगे। लेकिन बाद में जैसे जैसे शो की तारीख करीब आती गई, तो मामा जी और मौसी ने मुझे बोला कि देखो डांस तो फिर भी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन गाना, उस वक्त की बात मैं कर 1967, हाँ,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन इतनी छोटी उम्र में गाना गाना बहुत बड़ी बात होगी, तो तुम ना गाना गाओ, बाद में डांस भी रखेंगे
1: जी
0: पर तुम गाना गाओ,
1: अरे वाह।
0: तो ये बहुत नयापन होगा ऑडियंस के लिए। और मैं भी मान गई, उस वक्त ना बच्चे मान लिया
1: हाँ
0: करते
1: हाँ
0: थे,
1: बिल्कुल
0: ना ज्यादा हुज्जड़बाजी नहीं करते थे।
1: जी। और आपको बनना था एक महान गायिका,
0: हो
1: तो
0: सकता है, तो
1: देखिए
0: कुदरत ने शायद, हो सकता है
1: बिल्कुल
0: कि दिमाग की बत्ती भी उसी तरह खोल दी।
1: बिल्कुल।
0: अब वो दिन आया तो एक छोटा सा ऑर्केस्ट्रा था, मुझे ना उस ऑर्केस्ट्रा का नाम याद नहीं, बाद में जहां गाने लगी उसका नाम था रॉयल म्यूजिक सर्कल, तो वहां उनके साथ रिहर्सल्स हुई और मैं गई गाने। पहला गाना मैंने जब गाया वो, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, तो वो पहला आलाप जो लिया ना मैंने, ओ
1: वाह।
0: माँ, वहीं पे लोग उठकर खड़े हो गए
1: अरे वाह, अरे
0: और
1: वाह।
0: इतनी तालियां कि उसके बाद गाना उठाने के लिए मुझे 5-7 मिनट रुकना पड़ा।
1: अच्छा।
0: अब ऐसा हुआ कि दो ही गाने रिहर्स हुए थे, अब मामा जी को भी क्या ही पता कि भाई ऐसा रिस्पांस मिलेगा,
1: जी।
0: अब लोग ना छोड़े।

0: कि नहीं एक और पता है मंदाकिनी जी, वो एक कहावत है ना कि होनहार बिरहा के होत चिकने पात, तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना मंदाकिनी जी, वो पहले से, ये मेरा मानना
1: जी बिल्कुल सही कह रही हैं
0: है ना, वो
1: बिल्कुल
0: उस बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में
1: ढाल देती है,
0: ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी देता
1: बिल्कुल सही
0: है ना।
1: कहा जी।
0: तो मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई जैसे घर में गाती थी, जिस गाने की जो लाइन मुझे याद है, दो लाइंस तो दो लाइंस, चार लाइंस तो चार लाइंस, छोड़े ही ना पब्लिक। फिर हुआ कि भाई और भी लोग हैं कलाकार, और भी परफॉर्मेंसेस हैं, तो फिर बस उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं मंदाकिनी जी, बस वहां से मैं 7 साल की थी तब, और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया
1: जी जी
0: कि डांस तो रहने ही दो तुम,
1: बिल्कुल
0: तुम गाना ही गाओ
1: आप
0: बस।
1: लोगों को नचाएंगी, ये था खुद नहीं नाचेंगी लेकिन दुनिया को नचाएंगी, और आपने नचाया भी। बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले सुनते हैं ये गीत।

0: आपका पहला गीत जो है फिल्म अंदाज के लिए आपने गाया था, शंकर जयकिशन का संगीत था
1: बिल्कुल,
0: और रफी साहब और सुमन कल्याणपुर के साथ आपने गाया, इतने बड़े बड़े लोग और आप एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची, ये अनुभव कैसा रहा और ये गीत कैसे मिला आपको?
1: ये शो मैंने जो किया ना मंदाकिनी जी, तो मेरे परिवार के तो सारे सदस्य आए थे, तो हमारे एक बहुत करीब के फैमिली फ्रेंड हुआ करते थे चंद्रकांत भोसले जी,
0: जी,
1: और वो मेरे नैनीहाल के, मतलब जहाँ मेरी नानी रहती थी, समझिए कि उनके बिल्कुल चाली में रहती थी नानी, नाना चौक, हरिनिवास चाल, बड़ी बड़ी बड़ी चौल, वहां समझिए नेक्स्ट रूम उनका, तो वो भी जानते थे, बचपन से उन्होंने देखा है, वो आए थे शो देखने, और उस वक्त देखिए, अब ये तो मैं जो कहती हूँ ना, किस्मत सही वक्त,
0: जी,
1: उसी टाइम में ये फिल्म बनने जा रही थी अंदाज, और शंकर जी, जयकिशन जी नहीं,
0: अच्छा,
1: शंकर जी ने ये गाना कंपोज किया था, तब तक शायद वो अलग हो चुके थे,
0: अच्छा,
1: छोटा मुंह बड़ी बात, पर वो अलग हो चुके थे, तो शंकर जी ने अपने सारे, उस वक्त क्या होता था मंदाकिनी जी, अभी होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर जब तक मैंने पंचम दा के साथ भी काम किया, कुछ एक हद तक आनंद मिलिंद जी के साथ भी, हम सिटिंग्स करते थे, सिटिंग मतलब रिहर्सल, गाने पहले हमें सिखाए जाते थे, तो उस वक्त जो मैं कहूंगी म्यूजिशियंस हमारे साथ बजाते थे सिटिंग में, रिहर्सल्स में, उन्हें सिटिंग मेंबर्स कहा जाता था, तो जब शंकर जी ने अपने सारे सिटिंग मेंबर्स को ये बोला कि ये गाने का एक सिचुएशन आया है, अब उस वक्त तो सीनियर सिंगर्स गाया करते थे, है ना, बच्चों के गाने भी, सिर्फ एक बच्ची ने तब तक गाया था, रानू दीदी ने, हेमंत काका की जो सुपुत्री हैं रानू मुखर्जी, उन्होंने वो गाना गाया था, नानी तेरी मोरनी,
0: है ना, जी जी,
1: पर पता नहीं क्यों उसके बाद उनके कुछ गाने नहीं आए, तो उसके बाद बस मैं ही आई, तो उन्होंने कहा कि कोई बच्चा अगर नजर में है तो मुझे बताना जरूर, उन्होंने ना ये चैलेंज दिया था सबको कि ये गाना जो है मैं बच्चों से ही गवाऊंगा, अब सब लोग तो डरे हुए थे कि ऐसा बच्चा तुम्हें मिलेगा कहाँ, सिप्पी साहब, जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस, रमेश सिप्पी जी की पहली फिल्म बतौर डायरेक्टर, कितने लोगों की वो पहली फिल्म रही मंदाकिनी जी, सलीम जावेद जी पहली फिल्म,
0: अच्छा,
1: बतौर स्क्रिप्ट राइटर,
0: जी बिल्कुल,
1: गुलजार अंकल के तो डायलॉग्स,
0: हाँ,
1: और रमेश सिप्पी जी बतौर एक डायरेक्टर, तो वो रिस्क कैसे लेंगे ना,
0: और सुपर डुपर हिट,
1: सुपर डुपर हिट, वो रिस्क कैसे लेंगे, तो वो तो बिल्कुल नाराज थे इस उनके इस फैसले से, पर शंकर जी बहुत जिद्दी थे, वो माने ही नहीं, बोले मुझ पर छोड़ दो, मैं गवाऊंगा बच्चों को,
0: जी,
1: तो ये भोसले जी ने, भोसले अंकल ने शंकर जी को बोला कि एक बच्ची है भोला जी की बेटी, बहुत अच्छा गाती, अब जाहिर बात है मंदाकिनी जी, वो बड़े पेड़ के नीचे तो छाया ही मिलती है ना,
0: पारिवारिक जो संगीत की पृष्ठभूमि थी वो आपके गायन कौशल को निखारने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई उसने,
1: तो डैडी का नाम सुनते ही बोले भोला जी की बेटी है, तो लेके आओ, पूछते क्या हो, अब मुझे लेके गए मौसी और मामा उनके सिटिंग रूम पे, सिटिंग रूम हुआ करता था फेमस महालक्ष्मी
0: जी
1: टॉप फ्लोर पे, तो जब मैं वहां गई, देखा इतना बड़ा हॉल उनका, और सारे म्यूजिशियंस बैठे थे, शंकर जी ऐसे एक स्टेज जैसा बना था, शंकर जी वहां थे, हसरत जयपुरी जी थे, और सबास्टियन अंकल उनके अरेंजर थे, जिन्होंने मेरे डैडी के भी कुछ गाने अरेंज किए
0: जी,
1: तो वहां गई मैं, शंकर जी ने बिठाया और पूछा गाती हो तुम, सीखती हो, तब तक डैडी से सीखने लगी थी थोड़ा बहुत, तो बोली हाँ मैं

0: अच्छा तो क्या क्या गाती हो? मैंने सारे गम, अच्छा, किस सुर से गाती हो? मैंने कहा काली एक। अच्छा तो जरा सुनो, सारे गम सुनाओ। तो उन्होंने सारे गामा पा पंचम तक लेके गए। बोले बस। बोले भोसले किसको लेके आए तुम? अरे ये तो चलेगी नहीं, दौड़ेगी।
1: अरे
0: और बोले मौसी और मामा को, बोले इसको ना कल आप फिल्म सेंटर लेकर आइए,
1: जी
0: साहब के साथ और सुमन जी के साथ गाना है। तो मौसी ने पूछा रिहर्सल? अरे कोई रिहर्सल नहीं, वहीं सिखा देंगे गाना।
1: अरे वाह।
0: तो दूसरे दिन, वो तारीख थी 7 नवंबर 1969,
1: जी,
0: फिल्म सेंटर में हमारी बारात गई। मेरे साथ एक और बच्ची भी, उसने भी गाया है, प्रतिभा बोर्डेकर। वो भी भोसले काका की ही कोई जान पहचान की थी।
1: पर आगे उन्होंने फिर ज्यादा नहीं गाया।
0: उनको ना इंटरेस्ट, प्रतिभा को ना ज्यादा एक्टिंग में इंटरेस्ट था, जहां तक मैं मुझे याद है। ज्यादा गाने में उसको रुचि नहीं थी। वो एक ही गाना उसने गाया। बस वहां पहुंचे मंदाकिनी जी, उन्होंने गाना सिखाया
1: जी
0: और मुझे बोला तुम हंसती हो? मैंने बोला हाँ,
1: बहुत
0: गाने में हंसोगी, मुझे तुम्हारी हंसी डालनी है।
1: सुंदर हंसी थी आपकी
0: तो
1: वो।
0: मैंने बोला हाँ, तो मुझे बताओ कैसे हंसोगी? तो मैंने कहा पापा मम्मी मिलते हैं, चुपके चुपके हंसते हैं।
1: हाँ
0: बोले बस इसको पकड़ के रखना।
1: बहुत सुंदर।
0: बस उसके बाद फिर थोड़ी देर में रफी साहब आए, बहुत बाद में, मैं उनको साहब अंकल कहती थी। हाँ। और सुमन जी आई,
1: जी
0: सब आए थे,
1: जी
0: रमेश सिप्पी जी सब आए। मुझे, हमको ना बाहर खड़ा किया था, वह सिंगर्स कैबिन नया नया बना था फिल्म सेंटर में। तो शंकर जी ने कहा कि अगर बच्चों को अंदर खड़ा करेंगे तो हो सकता है हेडफोन लगाकर थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, डर जाएंगे, इनको बाहर खड़ा करो। तो हमको बाहर हॉल में सारा जो वायलिन सेक्शन, म्यूजिशियंस, सारे म्यूजिशियंस के साथ ही हमको खड़ा किया था। और रफी साहब और सुमन जी सिंगर्स कैबिन, फर्स्ट टेक ओके,
1: जी,
0: उन्होंने रिपीट ही नहीं करवाया।
1: वाह बहुत सुंदर।
0: बाद में फिर साहब अंकल से मुलाकात हुई, मौसी ने बताया। उस वक्त ना मंदाकिनी जी एक गाना चला था ना रफी साहब का, अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया,
1: जी
0: ये मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर, जिसने दस्तूर बनाया।
1: बिल्कुल।
0: ये गा के मैं डांस करती थी और इसके पीछे किशोर काका पागल, क्योंकि किशोर काका और डैडी की बिल्कुल ऐसी दोस्ती जैसे आप समझिए एक माल के मणि।
1: जी
0: तो घर में आते थे और जब आते थे अमिता के साथ यही गाने में मुझे डांस करवाते थे।
1: जी
0: तो मौसी ने बोला तुम वो गाना गाती हो ना, ये वही है, जाओ पैर छुए। तो
1: अच्छा।
0: उस वक्त वो ना धनतेरस का दिन था मंदाकिनी जी, तो साहब अंकल ने, वो बड़े बड़े 100 रुपए के नोट चलते थे उस
1: हाँ
0: वक्त,
1: हाँ
0: तो मुझे और प्रतिभा को 100 रुपए बख्शीश दिए,
1: क्या बात,
0: नजराना।
1: वाह वाह।
0: ये एक हमारे
1: जी
0: गाने बजाने में एक, ये एक तहजीब होती
1: जी
0: है,
1: जी
0: हम जब अपने छोटों को सुनते हैं
1: तो उसको
0: तो उन,
1: नजराना
0: हाँ,
1: कहते
0: एक
1: हैं,
0: नजराना
1: ये
0: देते
1: प्यार का
0: हैं,
1: प्रतीक
0: बिल्कुल,
1: है, स्नेह का
0: और
1: प्रतीक
0: उनको एक प्रोत्साहन
1: है।
0: देने के
1: जी
0: लिए।
1: जी
0: तो उन्होंने वो दिया और बोला जाओ मिठाई खाओ।
1: अरे वाह।
0: फिर मौसी से पूछा कि भोला जी की बेटी है ना? तो मौसी ने कहा इसको ना बहुत प्यार दीजिएगा, बहुत अच्छे से सिखाइएगा, ये बहुत नाम करेगी।
1: क्या बात है, यानी
0: तो
1: आप भाग्यशाली थी कि आपकी शुरुआत रफी
0: बिल्कुल
1: साहब और सुमन
0: सच में
1: कल्याणपुर के साथ
0: ये
1: और
0: आज महसूस होता है,
1: शंकर जी के साथ हुई, और इतनी बड़ी फिल्म में
0: बिल्कुल
1: आपने गाया।
0: बिल्कुल
1: तो वो गीत की दो लाइनें हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे, और उसके बाद शायद यही हम सुने आपकी पसंद का, तो
0: बिल्कुल
1: कैसा रहेगा।
0: बिल्कुल। और पता है,
1: हाँ
0: मैं एक छोटी सी बात बताऊं मंदाकिनी जी, अभी एक 10 है ना बुलबुलो, तारा है ना बुलबुलो।

0: को मम्मी से, मम्मी को पापा से प्यार है, प्यार है ना।
1: क्या बात है।

0: अभी तो हम आपको सुषमा जी भी कह लेंगे तो कोई अति नहीं होगी, क्योंकि अभी हम सुषमा श्रेष्ठ को ही सामने बैठा देख रहे हैं। तो आपने राहुल देव बर्मन के साथ भी कई गीत गाए, यादों की बारात और तेरी है जमीन, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई,
1: क्या हुआ तेरा वादा
0: है ना, क्या हुआ तेरा वादा, ये सब गाते गाते सिर्फ 11 साल की उम्र में आपको फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के रूप में नामांकित किया गया।
1: काश मिलता वो अवार्ड
0: लेकिन नामांकन भी बहुत बड़ी चीज थी।
1: बड़ी चीज़।
0: तो ये अनुभव कैसा रहा और पंचमदा के साथ काम करने का जो संगीत की आपकी समझ पर क्या प्रभाव पड़ा होगा?
1: मैं जो कुछ भी गाती हूँ आज

0: जो कुछ भी थोड़ी बहुत अगर मैं समझती हूँ कि डायनामिक्स हम जिसे गाने में कहते
1: जी
0: हैं, उतार चढ़ाव और बहुत कुछ मैंने पंचम दादा से सीखा, क्योंकि उनके साथ बहुत उठना बैठना होता था। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ।
1: जी
0: एक तो क्या हुआ ना कि बर्मन चाचा, मतलब एस डी बर्मन जी और डैडी, मैंने जो बताया आपको कि डैडी का जन्म कोलकाता में हुआ, तो वो पूरी तरह से अपने आप को वो बंगाली बाबू ही समझते थे अपने आखिरी सांस तक,
1: जी
0: और उनका सर्कल भी पूरा
1: वैसे
0: बंगाली,
1: ही था।
0: बिल्कुल। उस कारण भी मुझे ये सब बहुत प्यार करते थे, जैसे बर्मन चाचा, शक्ति सामंत जी, प्रमोद चक्रवर्ती जी, इतना प्यार करते थे कि डैडी के जाने के बाद भी कोशिश यही उनकी रहती थी कि उनके फिल्मों में कहीं ना कहीं मुझे एक लाइन ही मिल जाए। तो पंचम दास से फिर वही एक वही था कि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही मैं,
1: बिल्कुल
0: तो वो एक रिश्ता आप समझिए ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे चलता आ रहा हो, एक अनोखा। वो मंदा के नहीं जी, क्या होता है ना, बड़ी देर के बाद जैसे जैसे बड़ी हुई, ये एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते जो होते हैं ना, अपने होने का ना एहसास नहीं दिलाते। वैसा रिश्ता मेरा पंचमदा के साथ रहा
1: जी
0: है और मेरे मरते दम तक रहेगा।
1: जी बहुत सुंदर।
0: मैं हमेशा उनसे कहती थी, मंदाकिनी जी, मैं इतना प्यार करती थी उनसे, करती हूं, करती रहूंगी, कि मैं हमेशा पंचमदा से कहती थी, मैं अगर बड़ी होती मैं आपसे शादी करती। और
1: क्या
0: इतने
1: बात
0: इतने
1: है।
0: क्यूटली वो
1: जी
0: हंसते थे।
1: जी
0: तो मुझे लगता है मेरे गाने में बहुत सारी छवि उनकी आती है, और बाल बराबर आशा का कि उन वो तो आई नहीं सकती, कोशिश बहुत की दादा ने, पर हाँ मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूं और हुई उनसे, बहुत सीखा। वो बुलाते थे सिटिंग्स में, रिकॉर्डिंग्स में, सिर्फ सुनने के लिए कि सुनो कैसी गाती हैं वो, मतलब खास तौर पर आशा काकी की रिकॉर्डिंग्स, कि सिर्फ सुनो सुनो और देखो। मैंने पहला गाना जो दादा के लिए गाया वो परिचय फिल्म, फिर गुलजार अंकल, देखिए
1: अरे वाह।
0: ये मैं कह रही हूं, वक्त कैसे एक खेल रचता है।
1: रचता है
0: मंदाकिनी जी, यहाँ एक छोटी सी बात मैं जरूर आपको
1: जी
0: और मेरे श्रोताओं को बताना चाहूंगी,
1: जी
0: कि ये वक्त और कुदरत का जो खेला होता है ना, मैंने अंदाज में गाया, जीपीसीपी प्रोडक्शंस,
1: जी
0: शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी जी,
1: जी
0: सुमन कल्याणपुर जी, रफी साहब, शमी कपूर जी, सही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: मैंने जब स्टेज पर गाना शुरू किया था 7 साल की उम्र से, तो मेरा सबसे पहला जो डुएट गाना था स्टेज पर, जो मैंने डुएट गाना गाया,
1: जी
0: वो फिल्म ब्रह्मचारी का गाना था,
1: हाँ,
0: आजकल तेरे मेरे प्यार
1: प्यार
0: के
1: के चर्चे
0: चर्चे,
1: हर
0: और
1: जबान पर।
0: यही पूरा था ना, जीपी
1: हाँ
0: सिप्पी प्रोडक्शंस,
1: हाँ
0: शमी कपूर जी, शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी जी, रफी साहब, सुमन कल्याणपुर जी,
1: जी बिल्कुल
0: वही पूरा देखिए खेला। मुझे नहीं पता था तब
1: हाँ
0: कि कुछ साल बाद मैं इसी इसी सर्कल, इसी ग्रुप का एक हिस्सा बनूंगी
1: अभिन्न हिस्सा बनेंगे।
0: और अपनी जिंदगी का सबसे कामयाब, पहला और सबसे कामयाब गाना मैं इन्हीं लोगों के साथ जुड़कर शुरू करूंगी।
1: जी जी
0: देखिए
1: जी
0: ये वक्त का खेला है,
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने
0: तो
1: कि
0: वो
1: वक्त
0: एक,
1: ही है
0: बिल्कुल
1: जो
0: बिल्कुल,
1: हमारी पहचान बनाता है
0: उसके
1: या
0: आगे
1: हमारी
0: कुछ नहीं,
1: पहचान मिटा देता है।
0: एकदम
1: बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले सुनते हैं ये गीत।

ए संजू, ए बिट्टू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं गाओ।

0: सुषमा जी ही कहूंगी मैं फिर आपको अभी, क्योंकि मैं सुषमा जी को जी रही हूँ इस वक्त
1: बिल्कुल
0: थोड़ी देर बाद मैं पूर्णिमा जी को जीना शुरू करूंगी। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी तब कि जब सुषमा जी पूर्णिमा जी आपस में बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, लेकिन ये सवाल थोड़ी देर में होगा। अभी मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप सुषमा श्रेष्ठ के नाम से गा रही थी तो आपने उस समय के सभी दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया था, मसलन शंकर जयकिशन में आप बताई रही हैं, मदन मोहन साहब के साथ, सलील चौधरी, एसडी बर्मन काका जो आप कह रही है, नौशाद साहब के साथ, बप्पी लाहिड़ी, रविन्द्र जैन, राजेश रोशन, कल्याण जी आनंद जी और चित्रगुप्त साहब के साथ भी आप।
1: बिल्कुल बिल्कुल, चित्रगुप्त अंकल के साथ मैंने काफी भोजपुरी गाने गाए।
0: अच्छा।
1: और उस वक्त आनंद मिलिंद उनको असिस्ट करते
0: जी, और बाद में आपने उन्हीं के सुपुत्र आनंद मिलिंद साहब के साथ बहुत गाने गाए।
1: अच्छा मंदाकिनी जी, देखो मुझे आज कैसी कैसी बातें याद आ रही हैं
0: जी।
1: जो मैंने पहला शो अपना किया ना, पता आपको, एक फिल्म आई थी औलाद,
0: जी।
1: उससे पहले एक फिल्म आई थी शायद वो फिल्म का नाम भी लाडला था,
0: लाडला।
1: उसमें निरुपा रॉय जी थी शायद। एक गाना था उसका,

0: अरे ये मैं इतना गाती थी सालों बाद। ये चित्रगुप्त अंकल का म्यूजिक है
1: जी
0: अगर मैं गलत नहीं
1: जी
0: हूं,
1: बिल्कुल
0: करेक्ट।
1: बिल्कुल
0: सालों बाद मैंने आनंद मिलिंद के लिए लाडला फिल्म में ही गाना
1: गाना
0: गाया।
1: गाया
0: देखिए आप देख रही हैं मैं,
1: समय खुद को
0: हाँ
1: दोहराता है किस
0: देखिए
1: रूप में।
0: एक गाना आया था कब तक हुजूर रूठे रहोगे औलाद फिल्म का, वो मैं इतना गाती थी। ये नहीं पता था कि ये जो मैं इतना गाती हूँ गाना, जिन जिन म्यूजिक डायरेक्टर का ये गाना मैं गा रही हूँ, उन्हीं के बेटों के साथ सालों बाद मैं एक टीम बनाऊंगी, एक
1: बिल्कुल
0: बहुत ही सफल टीम।
1: बहुत बहुत
0: ये वक्त का खेला
1: बिल्कुल
0: ये
1: सही
0: होता
1: कहा।
0: है
1: और ये आपसे
0: जी।
1: बात करके हम भी महसूस कर रहे हैं कि देखिए वक्त
0: बिल्कुल,
1: आपको किस तरह से कहाँ
0: कैसे
1: कहाँ
0: देखिए
1: जोड़ता
0: है
1: है।
0: ना।
1: बिल्कुल
2: बॉम्बे टॉकीज इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। ये बातचीत यहीं खत्म नहीं हुई, अगले हफ्ते इस बातचीत का दूसरा भाग लेकर हाजिर होंगे। तब तक इंतजार कीजिएगा अगले हफ्ते का। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
3: बॉम्बे टॉकीज,
4: साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली

अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का नमस्कार। आज एक और नए संस्करण के साथ हम उपस्थित हैं और लेकर आए हैं अपने खजाने से कुछ खास रिकॉर्डिंग्स।
0: जी बिल्कुल, और ये पहली रिकॉर्डिंग हमारे सामने जो है मनीषा जी,
1: उसको शाया कर रहे हैं आप या उसके पहले कुछ और सुनाएंगे?
0: बिल्कुल बिल्कुल, उसके पहले बात तो उसी के बारे में करनी है। हम इस रिकॉर्डिंग के जरिए पुराने जमाने में, इतिहास में जाने वाले हैं।
1: हाँ, ये तो विविधा जो है ना कार्यक्रम, उसके बारे में अब हमारे श्रोता भी बहुत स्नेह से ये कहते हैं कि ये कार्यक्रम ऐसा लगता है जैसे अतीत में खींच के ले जाता है।
0: जी, बिल्कुल।
1: और ऐसे कलाकारों को हम याद करते हैं जो हमारे लिए माइलस्टोन साबित हुए, जिन्होंने शुरुआती दौर में बहुत संघर्ष किया और बाद में बहुत सफल हुए।
0: ऐसे कलाकारों में एक बहुत ही सम्माननीय नाम है दुर्गा खोटे जी का।
1: क्या बात है, एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही गौरवमयी अभिनेत्री, व्यक्तित्व ही उनका इतना गौरवशाली था।
0: बहुत ही ग्रेसफुल एक्ट्रेस ये थी। और दुर्गा खोटे जी के बारे में बता दूं कि उनका मूल नाम था वीता लाड़।
1: अच्छा
0: जी,
1: महाराष्ट्र से थी?
0: जी हाँ, आपका जन्म 15 जनवरी 1905 में हुआ था और मुंबई के गिरगांव इलाके में, जो कांदेवाड़ी नाम की बस्ती है, वहाँ उनके पिता रहा करते थे।
1: और बहुत ही संघर्ष भरा जीवन दुर्गा खोटे जी का रहा। ऐसा है जयंत जी, कि दुर्गा खोटे जी के लिए बहुत सारी बातें हैं हमारे पास करने को, लेकिन उसके पहले हम एक गीत सुनवाएंगे जो एक जमाने की बहुत ही अजीमुशान शाहकार, जिसे कहते हैं ना पृथ्वी वल्लभ, उस फिल्म में दुर्गा खोटे जी ने अभिनय किया था। वैसे तो दुर्गा खोटे जी हमें याद आती हैं सलीम की माँ के रूप में।
0: जी हाँ, जो धवाई का अभिनय उन्होंने फिल्म मुगले आजम में किया था।
1: जी हाँ, लेकिन पृथ्वी वल्लभ इस फिल्म में उन पर फिल्माया गया एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जिसमें वो साज सिंगार कर रही है। तो इस गीत को सुनाते हैं, उसके बाद हम दुर्गा खोटे जी के बारे में कुछ और बातें करेंगे।

0: क्या बात है, पृथ्वी वल्लभ फिल्म की सुंदर से रचना से वो जमाना आंखों के सामने तैर गया। मनीषा जी, वास्तव में दुर्गा खुटी जी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि 26 वर्ष की उम्र में ही उनके पति गुजर गए। तब से उनका जो संघर्ष शुरू हुआ और उन्होंने धीरे धीरे अभिनय करना शुरू किया। 1931 में पहली फिल्म उन्हें मिली
1: फरेबी जाल
0: जी, और उसके बाद सिलसिला चल पड़ा। 1932 में उनकी फिल्म आई माया मच्छिंद्र, और ये वो जमाना था जब पुरुष जो है स्त्री भूमिकाएं करते थे,
1: यानी उस समय बहुत संघर्ष था एक अभिनेत्री के लिए अपनी जगह बनाना।
0: बिल्कुल, और ये संघर्ष उनके लिए कई मामलों में आगे जारी रहा। उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन कंपनी भी बनाई आगे जाकर के।
1: क्या बात,
0: फिल्म का निर्देशन भी किया
1: जी।
0: मगर उससे पहले बता दें श्रोताओं को कि 1932 में एक फिल्म आई थी जो हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में बनी थी, अयोध्या राजा, यानी अयोध्या का राजा। और इस फिल्म में वो हमें सीता के रूप में दिखाई दी।
1: एक बात हम अपने श्रोताओं को जरूर बताएंगे कि प्रभात कंपनी से जुड़ी रही बहुत दिनों तक दुर्गा खोटे जी, लेकिन जैसा कि नाम है ना, उसी में ही शक्ति छुपी हुई है।
0: जी, जी,
1: और हम लोग लगातार बात कर रहे हैं संघर्ष की, तो जो संघर्ष करने वाली स्त्री होती है ना, वो मूलतः कई मामलों में बहुत एंटरप्रेन्योरशिप भी होती है, यानी उनके अंदर बहुत नया कुछ करने का जज्बा था, इसलिए उन्होंने प्रभात कंपनी को बाद में छोड़ दिया और फ्रीलांसिंग करने लगी। और तो और उन्होंने बाद में अपनी प्रोडक्शन कंपनी भी स्थापित की थी।
0: जी बिल्कुल, ये जो व्यक्तित्व उनका था एक बिजली की तरह था।
1: हाँ।
0: मेरा इशारा है उनकी एक फिल्म की तरफ जिसका नाम था सौदा मिली।
1: जी हाँ।
0: आगे उन्होंने जो पहली फिल्म बनाई और उसका निर्देशन भी किया, उस फिल्म का नाम है साथी, जो बनी 1937 में।
1: उसके बाद आती है चरणों की दासी और भरत मिलाप 1947 में। इसके अलावा हम अपने श्रोताओं को और बताना चाहेंगे कि आप इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर्स एसोसिएशन से जुड़ी रही
0: जी, साथ ही आप मुंबई मराठी साहित्य संघ की भी एक क्रियाशील एक्टिव मेंबर थी।
1: देखिए, ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी दुर्गा खोटे जी को हम बहुत श्रद्धा से स्मरण कर रहे हैं। 22 सितंबर उनका स्मृति दिवस है
0: जी,
1: तो एक विशेष रिकॉर्डिंग अब हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं जो हमारे संग्रहालय से हम चुनकर लाए हैं।
0: अवश्य, और इस साक्षात्कार में दुर्गा जी से बातचीत की है मधुप शर्मा जी ने।
2: दुर्गा जी, आपकी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी?
3: फिल्म के हिसाब से देखा जाए तो प्रभात की हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, ये मेरी पहली फिल्म थी, लेकिन उससे पहले मैंने श्री भवनानी के एक पिक्चर में छोटा सा एक काम किया था।
2: जी, तो ये टॉकी पिक्चर थी?
3: हाँ, वो टॉकी के शुरू शुरू का जमाना था और 1930 की बात है ये।
2: अच्छा, उस जमाने में तो कलाकार अपने अपने गीत भी गाया करते थे, आशा है आप भी गाती होंगी जरूर।
3: हाँ, मैं गाने से बहुत शौक रखती थी। असल में मैंने विलास खान साहब से तालीम भी ली थी 3-4 साल
2: जी,
3: और उस जमाने में आर्टिस्ट अपने अपने गाने गाया करते थे, प्लेबैक का तो कोई सिलसिला था ही नहीं उस पर, और आर्टिस्टों को काफी मेहनत करनी पड़ती थी। जैसे ड्रामा में अपने गाने का रिहर्सल करते हैं, उसी हिसाब से फिल्मों के गाने रिहर्स करते थे और वो गाया जाते थे डायरेक्टली।
2: तो इस लंबे अरसे में आपने हर तरह के अभिनय किए होंगे।
3: हाँ।
2: लेकिन फिर भी कुछ खास पसंद है आपकी?
3: मेरी ये खुशनसीबी है कि मुझे हर किस्म के रोल्स करने मिले। असल में मैंने जो रोल्स किए वो मैंने इसलिए किए क्योंकि मुझे वो स्टोरी पसंद थी, वो रोल पसंद था, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि मुझे कौन सा रोल ज्यादा पसंद था। मैं कहीं परमानेंट आर्टिस्ट तो रही नहीं, और अगर मुझे कोई स्टोरी पसंद नहीं आई तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि भाई ये काम मुझसे नहीं होगा। इसलिए मुझे इत्तेफाक से हर किस्म के रोल्स मिले, कुछ कॉमेडी के मिले, कुछ ट्रेजेडी के मिले, कुछ वीरता के मिले, कुछ जैसे घरेलू मिले। कुछ लोग कहते हैं कि चरणों की दासी में जो सास का पार्ट मैंने किया था वो तो बिल्कुल ही कमाल था, हालांकि मैं वैसी नहीं हूँ, बिल्कुल झगड़ेलू नहीं मैं आपको
2: उसमें झगड़ेलू सास करता
3: है। ओफो, बहुत ही इतना था कि जब मेरी बहू आई, मेरे लड़के की शादी हुई, मेरी बहू जब आई और उन्होंने पिक्चर देखी तो वो

0: हे भगवान, अगर ये पिक्चर मैं पहले देखती तो मैं कभी आगे रह के से शादी नहीं करती।
1: अच्छा, अभिनय से फुर्सत होती है तो आप अपना समय किस तरह बिताना पसंद करती हैं ज्यादातर?
0: जब मुझे कुछ थोड़ी सी फुर्सत मिल जाती थी उस वक्त मैं अपना वो समय घर में बिताती थी। मुझे घर रखने का बड़ा शौक है और मेरे बच्चे उस वक्त बहुत छोटे थे। मैं अपना कर्तव्य समझती थी कि उनको उनकी पढ़ाई देखना, उनको अच्छी तरह से तालीम लेना, और जो मुझे तालीम मिली थी वो बच्चों को मिलनी चाहिए। तो इस हिसाब से मैं काफी समय उनके साथ बिताती थी।
1: रसोई वगैरह का भी शौक है?
0: हाँ, मुझे बहुत शौक है महाराष्ट्रीयन पद्धति का। और पद्धति मैं नहीं जानती लेकिन और लोग कहते भी हैं कि मैं अच्छी रसोई बनाती हूँ, मालूम नहीं।
1: अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या शौक रहे हैं आपके?
0: मुझे गाने का शौक था ही
1: जी,
0: और फिर मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक रखा।
1: अच्छा, विदेश भी गई हूँ?
0: हाँ, मैं दो तीन दफे विलायत गई थी, यूरोप गई थी और जगह भी हुआ, और हर जगह से कुछ न कुछ नायाब चीज इकट्ठा करना घर के लिए। वैसे देखिए तो मेरा घर की तरफ ज्यादा मेरी खींच है, मेरे दिल की, और मैंने काफी समय भी इसमें डाला।
1: तो विदेशों में आप फिल्म उद्योग के भी कुछ लोगों से मिली होंगी जरूर?
0: हाँ, मैं काफी लोगों से मिली।
1: और तो आपके विचार में वहाँ का ये फिल्म उद्योग ज्यादा तरक्की पर है भारत की निस्बत?
0: हाँ, ये जरूर है कि वो हमसे आगे बढ़े हैं, हालांकि टेक्निकली मैं समझती हूँ कि उनको काफी मौका मिलता है एक्सपेरिमेंट करने का।
1: जी, जी।
0: एक्सपेरिमेंट से लोग तो बढ़ ही जाते हैं आगे, हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं मिलता।
1: अच्छा, अभिनय की दृष्टि से?
0: अभिनय की दृष्टि से मेरा ख्याल है हमारे यहाँ वाकई बहुत अच्छे और बहुत इंस्टिंक्टिवली जो लोग हैं आर्टिस्ट, वो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ ज्यादा आर्टिस्टिक है। एक तो हम ज्यादा सेंटिमेंटल भी लोग हैं, भावना प्रधान हम लोग हैं, और वो भावना हम कभी दबा क्यों नहीं रखते, बताते हैं।
1: अच्छा, अपने जीवन की कोई ऐसी घटना आपको याद है कि जिसको आपको याद करके हंसी आ जाती है अभी?
0: मुझे तो अभी भी उस बात की हंसी आती है जब मैंने पहले भवानी साहब के पिक्चर में काम किया था, तो मैंने समझा न जाने मैंने कौन सा बड़ा काम किया, और बड़े शौक से उम्मीद से मैं वो पिक्चर देखने गई। जब देखा वो इतना भयानक था मैं वाकई बहुत डर गई। न मैंने मेकअप किया था, न मैंने कुछ इसके बारे में सोचा था। जिस उम्मीद से मैं गई थी और जो मैंने देखा, उसकी जब याद मैं करती हूँ तो मैं समझती हूँ कि वाकई लोग अपने आप को क्या समझते हैं, जब देखते हैं तो क्या देखते हैं। काश के लोग अपने आप को ऐसे देख सके।
1: अच्छा दुर्गा जी, बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती की तरफ से और विविध भारती के सुनने वालों की तरफ से भी।
0: नहीं शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ चंद लफ्ज कह सकी। नमस्ते।
2: श्रोताओं, संग्रहालय से प्राप्त इस विशेष रिकॉर्डिंग को हमने आपकी सेवा में प्रसारित किया। सुप्रसिद्ध अभिनेत्री दुर्गा खोटे से बातचीत की थी मधुप शर्मा जी ने। ये हमारी एक खास धरोहर है और अब आगे बढ़ें। हमारी बातचीत में हमने इप्टा की बात की थी जब हम दुर्गा खोटे जी को याद कर रहे थे। इप्टा से ही जुड़े एक और कलाकार हैं जो हमें कई फिल्मों में दिखे हैं और बहुत ही उन्होंने अविस्मरणीय भूमिकाएं की हैं। उनके बारे में बहुत कम बात होती है लेकिन उस कलाकार की प्रतिभा के हम सभी कायल हैं।
3: और इस कलाकार को हम उनके शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, उनका नाम असल में है सत्येंद्र कपूर और सब उन्हें पहचानते हैं सत्येन कप्पू के नाम से।
2: जी,
3: और सत्येन कप्पू साहब की शुरुआत असल में मराठी नाटक से हुई थी। पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे जी का लिखा हुआ नाटक था, वही नाटक हिंदी में भी खेला गया।
2: हम अपने श्रोताओं को बता दें, पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे, जी हाँ, पुल देशपांडे, मराठी के महान नाटककार और लेखक।
3: जी हाँ, और इस नाटक को देखने के लिए फिल्म जगत के बहुत से महनीय कलाकार, निर्माता, निर्देशक उपस्थित थे और वहीं उन्हें एक निर्देशक ने चुन लिया अपनी फिल्म के लिए।
2: क्या बात है!
3: उनका नाम था नरेंद्र बेदी साहब और उनकी फिल्म जवानी दीवानी में सत्येन कप्पू को पहला मौका मिला, पहला ब्रेक मिला।
2: और उसके बाद बड़े बड़े फिल्मकारों ने उन्हें ऐसे मौके दिए जिसकी वजह से वो आज भी हमारी स्मृतियों में जिंदा हैं। शक्ति सामंत जी की फिल्म कटी पतंग में वो दिखते
3: और
2: हैं,
3: और रमेश सिप्पी साहब की फिल्म सीता और गीता, और आगे संतान में हमने उन्हें देखा, दीवार फिल्म में हमने उन्हें देखा, बहुत सी फिल्में हैं। और सत्येन कप्पू साहब जिनके अभिनय से प्रभावित रहे, जिन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते रहे, उन कलाकारों के बारे में भी बताते हैं कि बलराज साहनी साहब हो या दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन जी या प्राण साहब, साहब हैं या कमल हासन, नए जमाने के कलाकारों तक ने उन्हें प्रभावित किया और वो उनके साथ अभिनय का मौका उन्हें मिला।
2: तो सतीन कप्पू जी को भी हम आज याद कर रहे हैं श्रोताओं, और इनकी एक रिकॉर्डिंग हमारे पास है जो हम आज खास तौर पर आपके लिए लेकर आए हैं। उनकी आवाज सुनिए और आइए स्मरण करते हैं फिल्मी पर्दे पर चरित्र भूमिकाओं में अपनी छाप छोड़ देने वाले सतीन।

और इन लाइनों में जो छुपी हुई बात है उसको भी आपने जरूर समझा होगा, क्योंकि ये लाइनें मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन को बदलने में बहुत ही मेरा साथ दिया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जबकि मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पढ़ता था और जब कोई 6-7 साल का था तब मैंने वहां से नाटकों में काम करना शुरू किया, और जब बंबई आया तो यहाँ मैंने श्री बल्ला साहनी की फिल्म देखी धोबी का जमीन, जिसे स्वर्गीय बिमलाय जी ने डायरेक्ट किया था। उस फिल्म में जो मैं देखने गया उसमें जो गाना था उसने मुझे बहुत प्रेरणा दी, जिसके बोल हैं कुछ तो निशानी छोड़ जा।

0: बेसिकली मैं थिएटर का आर्टिस्ट हूँ और थिएटर में मुझे कुछ खट्टे मीठे अनुभव हुए जिनमें से मैं एक छोटा सा अनुभव आपको बताता हूँ। हुआ यूं कि मैं अपनी पत्नी को नाटक दिखाने ले गया और नाटक में मैं हीरो था जिसमें मेरी पत्नी होती है, एक बच्चा होता है जिसका नाम विनोद होता है और कुछ ऐसे सीन थे उसके अंदर कि जहाँ रोमांटिक सीन, मेरी बीवी रोती है धोती है और मैंने वो किरदार, वो रोल इतनी ईमानदारी से निभाया कि शायद मेरी पत्नी को इस बात का बुरा लगा मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे मैं घर पहुंचा और मैंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई मुझे एक गिलास पानी दीजिए, तो मेरी पत्नी बहुत जोर से चिल्लाई और एकदम गुस्से में कहा कि जाइए पानी विनोद की माँ से ले लीजिए। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी ने उठाकर बहुत गहरे समंदर में फेंक दिया हो और मैं चिल्ला रहा हूँ कि अरे मुझे बचाओ, मुझे निकालो इससे, लेकिन कोई मल्ला कोई माझी मुझे निकालने वाला नहीं आया और मैं अब यकीन मानिए एक महीना तक उस घर के झगड़े में पड़ा रहा जिससे कि मैं समझता हूँ कि काफी मेंटली मुझे परेशानी हुई।
1: अरे माझी

मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ अपनी एक फिल्म की। फिल्म का नाम था कुली, मनमोहन देसाई जी उसके डायरेक्टर थे। तो एक सीन आता है कि हमारी पिक्चर का विलन हमारे डैम को जहाँ मैं काम कर रहा होता हूँ उसका कुछ पुर्जा ऐसा खोलता है कि तेज बहाव में पानी बहता है और जिसमें हमारा गांव भी बह जाता है और मैं भी बह जाता हूँ। तो मनमोहन जी को शॉट लेना था कि मैं नदी में मेरी लाश बहती हुई आ रही है। और मैं आपको एक बात बता दूं, उन दिनों बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और नदी का जो बहाव था बहुत ही जोरों पर था। तो मनमोहन जी मुझे बता ले कि भाई सत्येन कपूर जी आपको वहां से कूदना है और यहां से आपकी लाश गुजरेगी और हम बीच में जहां कैमरा हमें जूम करना है हम कर लेंगे। मैंने कहा जी बेहतर है। तो मुझे कहा रेडी? मैंने कहा जी हां रेडी। तो जैसे उन्होंने एक्शन कहा तो इतने में वहां गांव की एक औरत बैठी हुई थी, मुझे कहने लगी ना ना ना साहब इधर मत कूदिए, यहां हर साल हमारी देवी बलि लेती है। खैर मुझे उस वक्त कुछ सोचने का मेरे पास टाइम ही नहीं था क्योंकि एक्शन बोल चुके थे मनमोहन जी और मैं भगवान का नाम लेकर नदी में थर से कूद पड़ा और बिल्कुल मैं तो हाथ पैर भी नहीं हिला सकता था, बिल्कुल लाश की तरह पड़ा हुआ था। एक जगह आकर के, एक मकान पे आकर के मेरी लाश रुकी और अपने आप उस जगह पे घूमी, उसने पूरा एक चक्कर लगाया और चक्कर लगाने के बाद में वो नदी के बहाव में आगे निकल गई। इतने में हमारे डायरेक्टर साहब ने बोला कट, शॉट ओके हो गया। मैं बाहर आया तो गांव के एक आदमी ने कहा कि भाई साहब एक मिनट सुनिए, बोले जहां आपकी लाश घूमी थी ना वहां पर एक भंवर है, कुआं है, आप बच गए। अब यकीन मानिए मेरे पाँव के नीचे से धरती निकल गई। वो जो जितने भी सेकंड गुजरे मुझ पे वो मैं जानता हूँ कि किस तरह गुजरे होंगे और मुझे अभी एहसास हुआ कि एक नई जिंदगी मिली थी मुझे। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं थिएटर से वास्ता रखता हूँ और हम थिएटर के कलाकारों की जिंदगी बड़ी अजीब सी होती है। एक्टिंग के साथ साथ कुछ घर की परेशानियां भी होती हैं, उलझने भी होती हैं। मुझे एक अपनी जिंदगी का एक हादसा याद आ रहा है जो मैं आपको सुनाता हूँ। हम जो हिंदी थिएटर करते थे, घर घर जाके टिकट बेचना, तीन तीन महीने एक ड्रामे की रिहर्सल करना, उसके बाद शो करना, तो ये काम बहुत ही मुश्किल था। एक प्ले था जिसकी मैं रिहर्सल कर रहा था दो या तीन महीने से और रिहर्सल करके एक दिन जब मैं घर पहुंचा तो भाई साहब ने कहा कि भाई पानीपत से टेलीग्राम आया है, तुम्हारे छोटे बच्चे का स्वर्गवास हो गया है और तुम पानीपत चले जाओ। मैंने कहा नहीं भाई साहब, बड़ी मेहनत करके हमने ड्रामा तैयार किया है और कल उसका शो होने वाला है, सो मैं शो छोड़ के नहीं जा सकता। कि शो मस्ट गो ऑन, ड्रामा नहीं रुकेगा। खैर मेरे घर पे जो बीती, मेरे परिवार पे जो बीती वो मैं जानता हूँ और हमने शो किया और इसी पर मुझे स्वर्गीय नरगिस भाभी की फिल्म मदर इंडिया का एक गाना याद आ रहा है, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा।

गम से रंजूर ना हो ए यारो, गम से रंजूर ना हो ए यारो, गम भी उसी की ही मेहरबानी है। जिसको गम मिल सके ना दुनिया में, उसकी क्या खाक जिंदगानी है। सुख और दुख ये तो जिंदगी के हिस्से हैं, जिनसे हम अपने आप को कभी परे नहीं कर सकते। कभी कभी जिंदगी हर तरह से भरी पूरी होने के बावजूद ये एहसास दिला देती है कि कहीं वो खाली हो गई है। मैं आपसे एक अजीम हस्ती, महान कलाकार का जिक्र जरूर करना चाहूंगा जो आज हमारे बीच में नहीं है। उस महान कलाकार का नाम है संजीव कुमार। ये मेरी किस्मत थी कि सन 1958 से मैं उनके साथ काम करता रहा, और जब पहला शो उन्होंने किया तो मुझे याद है कि लोग वाह वाह कर उठे थे कि एक नया लड़का एक करेक्टर को कितनी खूबी से निभा गया, और आखिरी दम तक वो अपने करेक्टर को, यानी जो भी पात्र कर गए हैं वो, उन्होंने बड़ी ईमानदारी, बड़ी संजीदगी से उसे निभाया, चाहे वो मजाहिया करेक्टर हो या गंभीर करेक्टर हो। वो जितने सोबर थे अपनी जिंदगी में, उतने मजाहिया भी थे। मुझे एक हादसा याद है, जब हम स्ट्रगल कर रहे थे जिंदगी की, तो मैंने उनसे 3 रुपए उधार लिए थे। मैंने कहा भाई मुझे 3 रुपए दे दो, तो कहने लगे भाई कब लौटाओगे। मैंने कहा कल लौटा देंगे। हुआ ये कि पैसे साहब वो मैं उनको नहीं लौटा सका। वक्त गुजरता गया, संजीव कुमार साहब बहुत बड़े हीरो बन गए और मैं भी छोटी छोटी फिल्में करने लगा। एक दिन मालूम हुआ कि उनकी और मेरी शूटिंग एक साथ एक ही फिल्म में है, तो मुझे उन्होंने कहा तुम मेरे घर पे आ जाओ, हम चले चलेंगे साथ में। तो मैं उनके घर पहुंचा, उनकी गाड़ी में जा रहा था, तो मैंने कहा संजीव आपने वो पहली गाड़ी जो ली थी कितने की ली थी। कहने भाई वो पुरानी गाड़ी थी, मैंने सेकंड हैंड गाड़ी 6,000 में ले ली थी। तो मैंने कहा संजीव काम करो भाई, तुम वो गाड़ी तुम मुझे भेज दो। देखो भाई मैं नया नया आर्टिस्ट बनने जा रहा हूँ और इतना पैसा मेरे पास नहीं, मैं तुम्हें 2,000 रुपए दे देता हूँ अभी, और बाकी 3,000 मैं तुम्हें इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा। अच्छा भाई जब स्टूडियो पहुंचने को हम आ गए, यानी स्टूडियो नजदीक आ गया, तो मैंने उनसे कहा कि भाई संजीव वो तुमने वो गाड़ी के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया, 2,000 मैं तुम्हें दे रहा हूँ, 3,000 तुम्हें धीरे धीरे चुका दूंगा। तो फौरन बोले कि भाई 3 रुपए तुमने लिए थे आज से 15 साल पहले, अब तक नहीं चुकाए, ये 3,000 रुपए तो शायद तुम मेरे साजनम भी नहीं चुका पाओगे। वो कलाकार, वो महान कलाकार आज हमारे बीच नहीं है, तो उन्हीं की याद में मैं आपको उन्हीं की एक पिक्चर खिलौना का गीत सुनाता हूँ।

0: सत्येन कप्पू जी की आवाज हमने सुने और एक बार फिर जो हमारी स्मृतियां हैं वो उन्हीं गलियारों में घूम गई जब 80 के दशक तक वो बहुत सक्रिय रहे और उनकी आवाज सुनकर बड़ा अच्छा भी लगा। उनके द्वारा ये जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था जिसमें उन्होंने अपने पसंद के गीत भी सुनवाए थे।
1: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा, रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में गायिका आशा भोसले की एक अनमोल रिकॉर्डिंग, और स्मृति शेष में नमन निर्देशक कुकू कोहली को। तो सबसे पहले संपादकीय 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सरकार द्वारा दिए जाने वाले देश के सबसे बड़े अवार्ड हैं। इनकी शुरुआत हुई थी सन 1954 में। ये पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किए जाते हैं। समय के साथ इन पुरस्कारों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती चली गई है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में दिए जाते हैं, फीचर फिल्में, गैर फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन। फीचर और गैर फीचर वर्ग में उत्कृष्ट सिनेमा को पुरस्कृत किया जाता है, जबकि सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन खंड में सिनेमा के अध्ययन और उसके विश्लेषण पर केंद्रित कृतियों को सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का मकसद है बेहतर सिनेमा को प्रोत्साहित करना। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 22 सितंबर को एकता नगर गुजरात में प्रदान किए जाएंगे। इसे पहले केवड़िया के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि ये पुरस्कार साल 2024 के लिए दिए जा रहे हैं। इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार आर्टिकल 370 को दिया जा रहा है। इसके निर्देशक हैं आदित्य सुहास जांभले। इसी फिल्म के लिए अभिनेत्री यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जा रहा है। बेहतरीन मनोरंजन देने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए पुरस्कार इस बरस दिया जाएगा नाग अश्विन सिंह रेड्डी की फिल्म कल्कि 2898 AD को।
1: ये 6000 सालों पहले देखा था,
2: वो शक्ति वापस आ गई है।
0: किसी नए निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म स्वातंत्र वीर सावरकर को दिया जाएगा। इसे बनाया है जाने माने अभिनेता रणदीप हुडा ने। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार तमिल फिल्म कैप्टन मिलर को दिया जाएगा। इसके निर्देशक हैं अरुण माथेश्वरन, जबकि सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना काथा कादू को दिया जाएगा। इसके निर्देशक है नंद किशोर ईमानी। साल 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार राजकुमार पेरियासामी को दिया जाएगा, उनकी तमिल फिल्म अमरन के लिए। ये फिल्म शिव अरूर की पुस्तक इंडियाज मोस्ट फियरलेस ट्रू स्टोरीज ऑफ मॉडर्न मिलिट्री हीरोज पर आधारित थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा संयुक्त रूप से अभिनेता ममूटी और कार्तिक आर्यन को। ममूटी को मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम में उनके अभिनय के लिए सम्मानित किया जा रहा है, जबकि कार्तिक आर्यन को कबीर खान निर्देशित फिल्म चंदू चैंपियन के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार संजय मिश्रा को हिंदी फिल्म भक्षक के लिए मिल रहा है, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार तमिल फिल्म महाराजा के लिए सचना नामिदास को दिया जाएगा। उन्हें ये पुरस्कार अभिनेत्री रूपाश्री वरकाडी के साथ संयुक्त रूप से दिया जाएगा, जिन्होंने कन्नड़ फिल्म मिथ्या के लिए ये पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार दिया जा रहा है अभय जोधपुरकर को मराठी फिल्म घरात गणपति के इस गाने के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार वाइकोम विजयालक्ष्मी को मलयालम फिल्म ARM के इस गाने के लिए दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ छायाकार का पुरस्कार दिया जा रहा है शहनाज जलाल को तमिल फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए। सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया जा रहा है।

ये हैं तेलुगु फिल्म पुष्पा द रूल पार्ट टू के लेखक बांडरेड्डी सुकुमार, मराठी फिल्म स्वर गंधर्व सुधीर फड़के के पटकथा लेखक योगेश देशपांडे और तेलुगु फिल्म लखी बस्कार के लेखक वेंकी अटुलुरी। बेस्ट साउंड डिजाइन का पुरस्कार फिल्म भूल भुलैया 3 के लिए मानस चौधरी को दिया जाएगा और बेस्ट एडिटिंग का पुरस्कार दिया जाएगा तमिल फिल्म अमरन के लिए आर कलाई वन्नन को। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार भी संयुक्त रूप से दिया जा रहा है। हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 के गानों के लिए शाश्वत सचदेव को और तमिल फिल्म अमरन के बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए जीवी प्रकाश कुमार को। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मनोज मुंतशिर को फिल्म मैदान के इस गाने के लिए दिया जाएगा।

0: 74वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी क्षेत्रीय भाषाओं की फीचर फिल्मों को भी पुरस्कार दिया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार सुमीरा राय की फिल्म भंगार को दिया जाएगा। रविराज मुर्मू को किसी निर्देशक की पहली नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा उनकी संथाली फिल्म आंगेन के लिए। नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार आनंद एल राय को दिया जा रहा है उनकी फिल्म स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए। आपको एक बार फिर बता दें कि इस बार पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में न होकर एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में दिए जा रहे हैं। ये समारोह 22 सितंबर को आयोजित किया जाएगा जहां भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का ऐलान हुआ है। अनंत नाग का नाम उन कलाकारों में शामिल है जिन्होंने अपने अभिनय का जलवा न सिर्फ कन्नड़ सिनेमा में दिखाया बल्कि हिंदी में भी वो नजर आए और कई अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में भी उन्होंने अपनी अनूठी पहचान बनाई।
1: अदक्के बैतिने नानू दोड्ड अयोग्य।
0: आपको बता दें अनंत नाग का जन्म 4 सितंबर 1948 को हुआ था। उनका पूरा नाम है अनंत नागर कट्टे। यूं तो अनंत नाग कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं पर जानकारी के लिए ये बता देना चाहिए कि वो हिंदी तेलुगु तमिल मलयालम मराठी और अंग्रेजी फिल्मों में नजर आ चुके हैं।
2: सरकार को कुछ होना क्या
3: पता चल गया तुझे वो कहाँ है?
2: नहीं मालूम कहाँ गया माटी मिला।
3: मालूम नहीं वापिस आएगा भी या नहीं।
0: उन्होंने अपने लंबे करियर में तकरीबन 200 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है जिनमें 250 से ज्यादा फिल्में कन्नड़ रही हैं। वैसे अनंत नाग ने अभिनय के सारे आयामों को अपनाया है चाहे वो रंगमंच हो सिनेमा हो या टेलीविजन। चूंकि टेलीविजन का जिक्र चला है तो ये बता देना बहुत जरूरी है कि अनंत नाग आर के नारायण की कहानियों पर आधारित दूरदर्शन के बेहद लोकप्रिय सीरियल मालगुड़ी डेज में नजर आए थे और तब उन्हें घर घर पहचान मिली थी। अनंत नाग के लंबे करियर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने अपने किरदारों में बहुत ज्यादा विविधता रखी है। हर तरह के किरदार उन्होंने निभाए हैं। अनंत नाग की शुरुआत कन्नड़ सिनेमा से हुई थी। फिल्म संकल्प में वो बतौर लीड एक्टर नजर आए थे। हाल ही में फिल्म KGF में वो नजर आए और नई पीढ़ी ने उन्हें पहचाना।
4: गरुडन नोड़ रॉकेट कन्फर्म आयतु हियर इज अ मैन हु कम्स फ्रॉम दैट पावरफुल प्लेस अदक्के अवकाश इद्रु अवनन्नु मुगिसाकलिल्ल।
0: अनंत नाग ने ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF चैप्टर 1 में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक आनंद इंगलागी का किरदार निभाया था। दरअसल ये किरदार फिल्म का सूत्रधार भी है। हिंदी में अनंत नाग अंकुर भूमिका कालीचरण और जुर्म जैसी फिल्मों में नजर आए हैं। सिनेमा और कला के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने साल 2025 में अनंत नाग को देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा था। अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने के लिए ढेर सारी बधाइयां।

0: ये था संपादकीय, अब विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा।
1: हंस क्यों रहे हैं?
2: हम अपने दोस्त और नवाब बुरहानुल मुल्क के रिश्तेदार के नगर पोते मीर रोशन अली में हंस रहे हैं।
1: जरा होश में आइए हुजूर, जरा। हाँ सुनिए मेरी बात, सुनिए
3: सुनिए, यहाँ से भाग निकलते हैं।
0: सिनेमा और साहित्य दो अलग अलग धाराएं हैं, लेकिन दोनों का आपसी रिश्ता बड़ा गहरा है। जब कहानी पर आधारित फिल्में बननी शुरू हुई तो इसका आधार साहित्य बना। बहुत कम लोग जानते होंगे कि दादा साहेब फाल्के ने भारत की जो पहली फीचर फिल्म बनाई थी वो भारतेंदु हरीशचंद्र के नाटक हरीशचंद्र से प्रेरित और उस पर आधारित थी। साहित्यिक कृतियों पर समय समय पर फिल्में बनती रहती हैं, लेकिन ज्यादातर ये कहा जा सकता है कि मुंबई के फिल्मकार साहित्यिक कृतियों पर फिल्में बनाने से बचते हैं। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि मुंबई की अजंता मूवी टोन कंपनी ने सन 1933 के आसपास प्रेमचंद को मुंबई आमंत्रित किया था फिल्मों में लिखने के लिए। प्रेमचंद की कहानी पर मोहन भावनानी ने फिल्म बनाई मिल मजदूर। निर्देशक ने मूल कहानी में थोड़े बदलाव किए जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आए। इस फिल्म में मजदूरों की क्रांति की बात की गई थी। कराची में कोई घटना हो गई और फिर फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सन 1934 में प्रेमचंद की कृतियों नवजीवन और सेवा सदन पर फिल्में बनी और ये फ्लॉप हो गईं। सन 1941 में भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा पर केदार शर्मा ने इसी नाम से एक फिल्म बनाई। ये फिल्म कामयाब रही। इसके बाद सन 1964 में केदार शर्मा ने इस फिल्म को दोबारा बनाया। इस बार फिल्म में रोशन का संगीत था। इस फिल्म को एक उत्कृष्ट कृति पर बनी एक उत्कृष्ट फिल्म के रूप में याद किया जाता है।

0: सन 1960 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी पर बनी फिल्म उसने कहा था। निर्देशक थे मोनी भट्टाचार्य, कलाकार थे सुनील दत्त और नंदा।
1: क्या नाम है तेरा?
2: कमली।
1: कमली, बड़ा प्यारा नाम है।
2: मेरा नाम नंदू है।
1: अच्छा नाम है ना?
3: और बड़ा पुत्रा दे।
1: चल, तू इधर रोज आती है?
2: हाँ।
1: कल ना मैं तुझे बड़े बड़े अमरूद दूंगा।
2: अच्छा, मैं जाऊँ? बड़ी देर हो गई है, मामा बिगड़ेंगे।
1: संभल के जाना। कमली, गर्लफ्रेंड
2: क्या
1: तेरी कुमाई हो गई?
0: आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास धर्मपुत्र पर बी.आर. चोपड़ा ने फिल्म बनाई। सन 1961 में आई इस फिल्म धर्मपुत्र के निर्देशक थे यश चोपड़ा, कलाकार थे माला सिन्हा और शशि कपूर और इस फिल्म ने 9वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता।

मुंशी प्रेमचंद भले ही सिनेमा से निराश होकर लौट गए, लेकिन उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1963 में त्रिलोक जेटली लेकर आए फिल्म गोदान, जिसमें संगीत पंडित रविशंकर का था।

0: बात का गुस्सा तो नहीं कीजिएगा।
1: नहीं बोलो।
0: बात यह है, मेले में चोर पॉकेटमार बहुत आते हैं।
1: सो तो आते हैं फिर।
0: और देखिए मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, थोड़ा सा रुपया है, आप संभाल के रख लीजिए। तो
1: अगर मैं मार लूँ तो?
2: फिल्मों के लिए कई कहानियां लिख चुके और कई फिल्में बना चुके राजेंद्र सिंह बेदी की कृति एक चादर मैली सी पर बनी फिल्म फ्लॉप हो गई थी। प्रेमचंद की कहानी पर सत्यजीत रे ने अपनी हिंदी फिल्म बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये फिल्म साल 1977 में आई थी।
3: गजब हो गया।
4: जाओ।
5: वो घर पर ही है, दीवान खाने में बैठे खेल रहे हैं।
4: खेल रहे हैं
5: शतरंज मिर्जा साहब के साथ। इससे पहले कभी घर पर तो नहीं खेली। अल्लाह मेरा तो जी होला जाता है, कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया।
4: तो माओ जान शतरंज खेल रहे हैं,
5: कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो?
4: हो ही नहीं सकती, जब खुली बिसात सामने हो तो सिवाय मोहरों के और कुछ दिखाई नहीं देता।
5: अरे हाँ, ये तो वो भी कह रहे थे।
2: दरअसल हिंदी की साहित्यिक कृतियों पर सफल फिल्म न बनने के कई कारण हैं। सिनेमा का अपना व्याकरण, अपना ढांचा है और सिनेमा एक पेशेवर इलाका है। जाहिर है कि फिल्में बनाने में पैसे लगते हैं और फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर कामयाब होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए साहित्यिक कृतियों में बदलाव किए जाते हैं जो साहित्यकार को मंजूर नहीं होते। फिर भी दुनिया भर में साहित्यिक कृतियों पर अच्छी फिल्में बनाने का सिलसिला जारी रहा है। राजेंद्र यादव के उपन्यास सारा आकाश पर बासु चटर्जी ने 1969 में फिल्म बनाई थी। मनु भंडारी की कहानी यही सच है पर उन्होंने बनाई रजनीगंधा, साल था 1974।
6: यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में।
2: कमलेश्वर की लंबी कहानी आगामी अतीत पर गुलजार ने बनाई मौसम। 1975 में कमलेश्वर के उपन्यास काली आंधी पर बनी फिल्म आंधी।
7: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है।
2: इन दिनों सिनेमा किताबों को अपना तो रहा है, ये किताबें अंग्रेजी की होती हैं या अन्य भाषाओं की और उन पर पेशेवर फिल्में बनाई जाती हैं, जैसे थ्री इडियट्स बनी थी चेतन भगत के उपन्यास पर। हिंदी कृतियों पर अच्छे सिनेमा का इंतजार दर्शकों को हमेशा रहता है। ये था विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं गायिका आशा भोसले की एक अनमोल रिकॉर्डिंग। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को सांगली में हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1943 में फिल्म माजाबाड़ के एक गाने के जरिए शुरू किया था। संगीत दत्ता दावजेकर का था। हिंदी में उनका पहला गीत था फिल्म चुनरिया के लिए, संगीतकार थे हंस राज बहल। आशा भोसले ने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर से अलग अपनी अनूठी छवि बनाई और हर तरह के गीत गाए।

उन्होंने 7 बार सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता, 2 बार उन्हें सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिल्म उमराव जान के लिए

0: फिल्म इजाजत के लिए। साल 2000 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो सुनते हैं आशा भोसले की ये अनमोल रिकॉर्डिंग।
1: आकाशवाणी एक ऐसा नाम है जो बचपन से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जब छोटे थे हम लोग और जब रेडियो चालू हुआ था वो जमाना अंग्रेजों का था और उस समय छोटे छोटे रेडियो सबके घर में होते थे। रिकॉर्ड्स तो कम होते थे, बहुत बड़े लोगों के पास होते थे। लेकिन शाम होती थी और हम कुछ भी काम हो छोड़ के, दौड़ना हो सब छोड़ के जाके गाना सुनते थे। और हेमंत कुमार, जगमोहन, पंकज मलिक, नूरजहान, ये तो लोग

0: याद हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं तब से हेमंत जी के बिल्कुल जबरदस्त फैन, कि मेरे बेटे का नाम भी हेमंत रखा मैंने। उनका गाना बताती हूँ आपको, बहुत चलता था उस वक्त। आंचल से क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार, ये गाना तब मैं सुना करती थी और मैं बिल्कुल उनके प्यार में थी, छोटी सी थी प्यार में, कि कभी हेमंत कुमार जी का आवाज मैं सुनती हूँ। ये आकाशवाणी नहीं होती तो कभी दुनिया को पता नहीं लगता कि कौन सिंगर अच्छा है, कौन सिंगर बढ़िया है और किसके गाने अच्छे हैं, कौन म्यूजिक डायरेक्टर है, मतलब म्यूजिक किसी को पता ही नहीं लगता। ये पूरा काम जो है हमारी आकाशवाणी ने चालू किया। उस आकाशवाणी पे गाने आते थे, उससे लोगों को पता लगता था कि ये सिंगर बढ़िया है या कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे सब, या सिर्फ प्लेबैक सिंगर ही नहीं, क्लासिकल सिंगर, उनके शो होते थे यहाँ पर, एक एक घंटा रात को वो लोग गाते थे, बड़े गुलाम अली हो, आमिर खान साहब हो, और ये सब गाते थे और लोग सुनते थे। तो ये आकाशवाणी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि मेरा पहला जो कदम था गाने की तरफ जाने का वो रेडियो में हुआ। रेडियो में मुझे बुलाया तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जाओ, पास हो गई तो घर आना, नहीं तो आना ही नहीं घर। मैंने जाके अपने पिताजी के गाने गाए, वो गाने क्लासिकल ढंग के गाने, तो तब दिनकर अम्मेम्बल करके उनके स्टेशन डायरेक्टर थे, वो आए, उन्होंने गाना सुना और कहा अरे ये दीना की लड़की है। ज्यादा सुना ही नहीं, मेरे सर पे हाथ रखा और कहा इस महीने में वो शो देते हैं ना, सुबह 7 बजे आके गाओ, दोपहर को 2 बजे गाओ, रात को कुछ 7 बजे गाओ, ऐसे शो दे दिए। और मैं कांपते कांपते घर गई कि मैं कहीं गाऊंगी कैसे, छोटी थी। और रेडियो, और रेडियो का जो सब लाइट लगता था, लाल लाइट के रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, मतलब
1: चालू
0: लाइव, तो वो लाइट देखते ही तो पसीने पसीने हो जाता इंसान। लेकिन ईश्वर की मर्जी थी, यहाँ तक लाना था। पिताजी का आशीर्वाद, मंगेश शिव का आशीर्वाद है कि आज मैं उसी आकाशवाणी में बैठी हूँ। तब मैं 14-15 की थी, अभी भी मैं गा रही हूँ, स्टेज पे जाती हूँ, 3 घंटे खड़े होकर गाती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, अब
1: वाह,
0: ऐसा सीधा सीधा रफी साहब गा रहे थे, तो मैंने बोला ऐसे नहीं, अगर ऐसे गए तो इशारों इशारों में दिल लेने,
1: जी
0: इशारों हरकत दे दे के उसको ऊपर ले जाना। तो ये हमने काम किया। मैं जब गाना सुनती हूँ तो वो
1: जी
0: वक्त, वो सामने रिकॉर्डिंग थिएटर सब आ जाता है,
1: ओ
0: तो मुझे जब आप कोई पूछता है कि आपको वो वक्त याद आता है तो आपको कौन म्यूजिक डायरेक्टर याद आता है, ऐसे अगर देखा जाए तो मुझे पहला म्यूजिक डायरेक्टर याद आता है मदन मोहन जी, के जिसको लैंग्वेज की तमीज, उर्दू आना, उर्दू जिसको आता हो वो बोल भी अच्छे लेते हैं,
1: जी
0: फिर वो ऐसे आदमी को साथ में रखते हैं जिसको बहुत अच्छी उर्दू हो, साहिर साहब हुए या राजेंद्र कृष्ण, राजा मेहंदी अली, मजरू साहब, बहुत अच्छे अच्छे लोग साथ में रहते थे, तो उनके गाने का स्टाइल, सिखाने का स्टाइल, और वो उस वक्त के लोग इतने अच्छे थे। आपको बताऊं, मैं जाती थी बेटे गाना गाओ, ये ऐसा होता था बेटे खाना खा के फिर गाना गाओ, किस तरह म्यूजिक डायरेक्टर थे। दीदी को भी बेटे बुलाते थे, बेटे गाना गाओ, तो ऐसे इतने बड़े नहीं थे हमसे, बड़े तो थे उम्र में लेकिन इतने बड़े नहीं थे, लेकिन वो बेटे बुलाते थे। जब पहला गाना गाया था तो डर डर के गाया था, बच्चे का गाना था पहला रिकॉर्डिंग, और बड़े बड़े थिएटर जो जहाँ शूटिंग होता है उनमें गाना रिकॉर्ड होता था। बॉम्बे में आने के बाद भी गाने वैसे ही रिकॉर्ड होते थे, बड़ा स्टूडियो है वहाँ, सेट लगा हुआ है और उस सेट में खड़े होके गाना गाना, कभी पेड़ है, कभी मंदिर है, कभी तालाब बना हुआ है, छोटा सा गंदा सा छोटा सा तालाब को बड़ा दिखाते थे, तो ऐसी ऐसी जगह खड़े होके गाना गाते थे। पूरी रात गाना चलता था, पूरे दिन गाना चलता था। एक ही मन में था कि जो इंसान मेहनत करेगा उसी को भगवान यश भी देगा। असल में देखा जाए तो पिताजी जब गुजर गए 42, उसके बाद टाइम थोड़ा खराब आया, काम करने की आदत थी, शायद मेरे अंदर ये है वो कि काम करते रहो, सफाई होनी चाहिए, वर्गो हूँ, वर्गो को बहुत सफाई की जरूरत थी 8 सितंबर। तो क्या होता है कि काम करना मीन्स पूरा जोर लगा के वो काम करना। आशा भोसले जब बोरीली में रहती थी, दादर में रहती थी, और आशा भोसले में कोई फर्क नहीं आया, ना खाने पीने में, ना पहनने में, ना ही बातचीत में, ना ही गाने में। गाना अच्छा करने की कोशिश की, संसार बढ़ता गया, बच्चे बड़े हो गए तो घर चेंज करने पड़े, वरना वही रहती।
1: जी
0: मुझे इन चीजों से कोई प्यार नहीं है, मैं मटेरियल चीजों से बहुत दूर हूँ। मुझे चाहिए, इंसान को एक रूम की जरूरत होती है जिसमें एक टीवी हो, एक

एक बाथरूम पलंग हो, इंसान को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। एक खाना बनाने का घर हो, तो मैं ऐसी औरत हूँ, मुझे जहाँ आप रखे, महलों में रखिए चाहे कहीं पर, मैं सब जगह पे खुश रहती। क्योंकि इंसान जो सपनों पे जीता है उसको कोई भी जगह चल। मैं सपने में जीने वाली औरत, मैं हर में बैठी हूँ, मैं अपने सपनों में रहती हूँ, अपने ख्वाब में रहती हूँ। कोई भी ख्वाब मेरे को चलता है उसी में मैं बहती जाती हूँ। कैसे निकल गया दिन मुझे पता नहीं लगता, फिर मैं खुद ही सोचती और भासती हूँ, पागल नहीं हूँ मैं, कितनी देर से

0: Ramesh. स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जाने माने निर्देशक कुकू कोहली को। कुकू कोहली का 25 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 77 साल के थे। कुकू कोहली का असली नाम था अवतार कोहली। उनका जन्म 4 जून 1949 को पेशावर में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की राज कपूर के साथ बतौर सहायक। कई बरस तक राज कपूर के साथ उन्होंने फिल्म निर्माण के गुर सीखे। सनी देओल की फिल्म बेताब में वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे। फिल्म अर्जुन में भी वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे। इसके बाद उन्होंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा और बनाई धर्मेंद्र अभिनीत फिल्म कोहराम। सन 1991 में उन्होंने फिल्म फूल और कांटे का निर्देशन किया। इस फिल्म के जरिए अभिनेता अजय देवगन ने रुपहले पर्दे पर अपना पहला कदम रखा।
1: मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया है।
0: इसके बाद उन्होंने फिल्म सुहाग बनाई, जिसके सितारे थे अजय देवगन, अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर और नगमा।
2: गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, अरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा।
0: इसके बाद आई हकीकत, जो अजय देवगन और तब्बू के अभिनय से सजी थी। उनकी अगली फिल्म थी अनाड़ी नंबर वन, जिसमें गोविंदा डबल रोल में थे। इसके बाद कुकू कोहली ने फिल्म जुल्मी बनाई, जिसमें अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने अभिनय किया था। इसके बाद उनकी फिल्म आई ये दिल आशिकाना। संगीतकार नदीम श्रवण ने इस फिल्म से संगीत जगत में वापसी की थी।
3: ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना, ये दिल।
0: कुकू कोहली की आखिरी फिल्म थी वो तेरा नाम था, जिसमें अर्जुन बाजवा और कंची कौल ने अभिनय किया था। विनम्र नमन। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का सितंबर महीने का अंक। शोध आलेख स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया।

0: अब हमारे पास वक्त नहीं है जयंत जी कि आज हम विविधा में कुछ और सुनवाएं। समय की सीमा है,
1: जी
0: हम अपने श्रोताओं से अब अनुमति ले।
1: बिल्कुल श्रोताओं, अगले संस्करण तक हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
0: और मनीषा जैन का
1: नमस्कार।
0: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: यह है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रीय संकल्प समारोह आज देश भर में 1067 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत युवा एकजुट हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुँचाया जा रहा है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। मुंबई के कोस्टल रोड पर आज सवेरे एक बीएमडब्ल्यू कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर जा रही थी। घायल व्यक्ति को नायर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को साइबर हमलों और अन्य बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ देश भारत को इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि चिप डिजाइन और विनिर्माण में सक्षम देश के रूप में उभरने के कारण भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि कई कंपनियां और देश अब भारत को अपने लिए खतरा मान सकते हैं। निर्वाचन आयोग आज नई दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित कर रहा है। इस दौरान मतदाता सूची में सुधार के लिए दावे और आपत्ति दर्ज की जा सकेंगी। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में परिषद की सफलता पर बधाई दी है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए परिषद की प्रतिबद्धता दर्शाता है। भारत ने जापान के आयची नागोया में एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। एला वेनिल वेलारिविन, सोनल मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को पहला पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता, जापान को कांस्य पदक मिला। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर एला वेनिल वेलारिविन, सोनम मस्कर और विदर्शा के विनोद को बधाई दी। डॉक्टर मांडविया ने सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय दल के लिए भविष्य में गौरवशाली क्षणों की कामना की है। जापान एशियाई खेलों में महिला T20 क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 196 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। क्वार्टर फाइनल में भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया था। चीन के साथ क्वार्टर फाइनल में वर्षा के कारण रद्द होने से बेहतर रैंकिंग के कारण बांग्लादेश सेमीफाइनल में पहुंचा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंद दिया है। दीपिका सहरावत ने 8, इश्का चौधरी ने 3, जबकि लाल थन तुलांगी और

0: नेहा ने दो गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल इंडोनेशिया से होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना कर संस्कृति उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज। 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल विविध भारती से।

0: केके को आप सुन रहे थे फिल्म जिस्म। सईद कादरी ने इस गीत को लिखा।
1: जंबो जेट लंडन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेट सोई।
2: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
1: रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
2: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
1: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
2: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। एक रिपोर्ट।
1: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े भविष्य के विषय पर आयोजित सम्मेलन ने अलग अलग देशों और क्षेत्रों में न्यायपालिका के काम करने के तरीकों, वैज्ञानिक जानकारी, पर्यावरण से जुड़े प्रशासनिक अनुभवों और संस्थागत कार्य प्रणाली को साझा करने का मंच प्रदान किया। इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों, विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों ने भाग लिया। 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में पर्यावरण जलवायु से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की गई। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय संकल्प समारोह आज देश भर में 1067 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत युवा एकजुट हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। इस अवसर पर पंजाब में केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है।
2: ये पंजाब की भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कई कार्यक्रम हाथ में लिए, एक पेड़ माँ के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये समाज सुधार से जुड़े हुए कार्यक्रम है। पंजाब को हम विकसित पंजाब बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ा उद्देश्य है भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें सभी राज्यों में विकास तेजी से हो, ये भी हमारा एक उद्देश्य है।
0: पंजाब पुलिस ने इस सप्ताह सीमा पार से हीरोइन तस्करी के खिलाफ विभिन्न अभियानों में 101 किलोग्राम हीरोइन जब्त की है। ये कार्रवाई अमृतसर और फरीदकोट के सीमावर्ती जिलों में की गई। आज सुबह मुंबई के काला चौकी इलाके में गणेश उत्सव पंडाल के पास पीने के पानी के अस्थायी स्टॉल पर बिजली का करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। घायलों में 1 की हालत गंभीर है, जबकि 3 अन्य की हालत स्थिर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंबई के ही कोस्टल रोड पर आज सुबह एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 1 व्यक्ति घायल हो गया। कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर जा रही थी। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर प्रदान करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को साइबर हमलों और अन्य बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ देश भारत को इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि चिप डिजाइन और विनिर्माण में सक्षम देश के रूप में उभरने के कारण भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा। बांग्लादेश के ढाका में आज कई देसी बम फटे। कल भी स्थानीय पुलिस थाने के बाहर भी इसी तरह के विस्फोट हुए थे। इस घटना में 1 रिक्शा चालक घायल हो गया है। ढाका में कल शाम अलग अलग घटनाओं में 3 बसों में आग लगा दी गई। इन घटनाओं के मद्देनजर ढाका पुलिस ने पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ा दी है तथा पुलिस की गश्त और तेज कर दी गई है। जापान एशियाई खेलों में भारत की इलावेनिल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने टीम के रजत पदक के बाद व्यक्तिगत रजत पदक जीता। इससे पहले भारत की इलावेनिल वेलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीतकर देश को पहला पदक दिलाया। एशियाई खेलों के महिला T20 क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 196 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सफेद गेंद का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाकर इतिहास रचा। शेफाली एशियाई खेलों में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज भी बन गई हैं। ताजा समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने 12वें ओवर में 7 विकेट पर 58 रन बना लिए थे। वहीं सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। भारतीय तैराक ऋषभ दास ने पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फाइनल आज दोपहर खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। President Draupadi Murmu will address valedictory session of the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi this evening. The two-day conference has been organized by the National Green Tribunal, NGT. We have a report.
1: The Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics provided a platform for the exchange of judicial approaches, scientific knowledge, environmental governance practices, and institutional experiences across jurisdictions. The conference witnessed the participation of environmental experts, judges of the Supreme Court of India and High Courts, district court judges, secretaries of various ministries, senior government officials, and other stakeholders. It also brought together eminent judges and judicial representatives from 17 countries. It facilitated dialogue on critical environmental and climate challenges, including gaps in policy formulation, implementation and enforcement, and explore ways to strengthen environmental governance and institutional cooperation. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
3: Government has said that biometric Aadhaar authentication is mandatory for subsidized domestic LPG refills from the 1st of next month. Domestic LPG consumers will need to have completed biometric Aadhaar authentication to book refills at the regulated retail selling price with applicable subsidy. Linking each connection to the Aadhaar authenticated consumer will help prevent diversion of subsidized domestic cylinders for commercial and industrial use. It will remove duplicate and ineligible connections and make subsidy delivery transparent and targeted. Vice President C.P. Radhakrishnan will inaugurate the 9th India International Water Week 2026 in New Delhi the day after tomorrow. The five-day event has been organized on the theme Climate Resilient Water Management. Iran has communicated its conditions to international mediators for restarting negotiation with the United States. It has also warned that Tehran is prepared for a decisive war if Washington rejects its demands. Mohsen Rezai, Secretary of Iran's Supreme National Security Council, said Iran's conditions included an end to the war on all fronts, the release of frozen Iranian funds, and an end to the naval blockade. In a separate social media post, Rezai said Iran has announced 7 conditions for beginning negotiations with Washington and described Tehran's position as clear and unambiguous. In Bangladesh, multiple crude bombs were exploded at a crossroads in Dhaka's Jatrabari a day after similar blasts outside the local police station. A rickshaw puller has been injured in the latest incident. 3 buses were set on fire in separate incidents in Dhaka last evening. Against the backdrop of the incidents, the Dhaka Metropolitan Police has strengthened security across the city, and police patrols and surveillance have also been increased. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana during the day. Madhya Maharashtra, Odisha, East Rajasthan, Gangetic West Bengal, Jharkhand, Konkan, Goa, Madhya Pradesh, Marathwada, Telangana and Vidarbha are expected to experience thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds. The Met Department said the similar conditions are expected over Chhattisgarh and other northeastern regions for the day. On to sports and Asian Games 2026, India's campaign continues strongly on the second day in Japan. India's Elavenil Varadivan clinched a silver medal in the women's 10-meter air rifle event at the Aichi Nagoya Asian Games in Japan today. Earlier in the day, India secured the silver medal in the women's 10-meter air rifle team event with Elavenil Valarivan, Sona Maskar and Vidarsha Vinod combining to deliver the country's first medal of the games. The Indian trio finished with a team total of 1,898 points, placing them behind China in the standings. In swimming, Rishabh Das has qualified for the final of the men's 100 meters breaststroke after finishing 5th overall in the heats with a time of 54.85 seconds. Finals will be played this afternoon. In hockey, the Indian women's team began the campaign with a dominant 19-0 win over Uzbekistan in the Pool B opener today. In women's cricket, India has set a target of 196 against Bangladesh in the second semi-final in the Asian Games. Earlier, India won the toss and opted to bat first. Shefali Verma has made history as she brings up a maiden white ball international 100 and becomes the first batter to score a century in the Asian Games. Meanwhile, opener Smriti Mandhana has become the leading run scorer in women's T20Is. And that is the end of this news bulletin.
4: Hum. आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:10 हो रहे हैं। वक्त हो चला है प्रादेशिक समाचार का।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमीट्रिक प्रमाणन किया अनिवार्य। राज्य के श्रम नियोजन मंत्री संजय यादव ने तेजस कार्यशाला का किया उद्घाटन। कहा, केंद्र के सहयोग से बेरोजगारी कम करने के लिए झारखंड के 19 जिलों में लागू की गई योजना। झारखंड का 30 लाख का इनामी उग्रवादी और टीएसपीसी का कमांडर वाराणसी में एटीएस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। झारखंड पुलिस के साथ एनआईए को भी थी तलाश। राज्य की पूर्व मंत्री विमला प्रधान का सिमडेगा स्थित पैतृक गांव बगडाण में राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। और भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराकर शानदार शुरुआत की। झारखंड में खुशी की लहर। और अब समाचार विस्तार से। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ क्लैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रदर्शन को लेकर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि यह साहस, पराक्रम, धैर्य और अनुशासन का प्रदर्शन है। उन्होंने कहा कि सूर्य किरण टीम करीब 30 वर्षों से देश विदेश में अपने प्रदर्शन से लोगों को प्रेरित कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे युवाओं को सशस्त्र बलों और वायुसेना में शामिल होने की प्रेरणा मिलेगी।
2: सूर्य किरण एरोबेटिक्स की जो टीम है, जिसने दुनिया भर में लगभग 800 जगहों पर अपना शो किया है और लगभग 30 वर्षों से ये अद्भुत नजारा रहता है। और ये साहस, पराक्रम और एक डिसिप्लिन, तो जो युवा आते हैं एक मोटिवेशन होता है कि हम भी फौज का हिस्सा बने।
0: केंद्र सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT और स्टार्टअप इंडिया की ओर से गोड्डा के तिलका मांझी कृषि महाविद्यालय में जिला स्तरीय तेजस कार्यशाला आयोजित की गई। श्रम नियोजन मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के 19 जिलों में तेजस योजना लागू की गई है, जिसका उद्देश्य बेरोजगारी कम करना है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के मगध और आम्रपाली कोयला क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए CISF की औपचारिक तैनाती प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहां कुल 1676 CISF कर्मियों की चरणबद्ध तैनाती की जाएगी। तैनाती से कोयला परियोजनाओं और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा मजबूत होने के साथ कोयला चोरी और अवैध निकासी पर नियंत्रण में मदद मिलने की उम्मीद है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के तहत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह झारखंड समेत 1067 स्थानों पर हो रहा है। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुँचाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एटीएस के साथ मुठभेड़ में झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी का कमांडर ब्रिजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता मारा गया। उस पर झारखंड सरकार और एनआईए की ओर से कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार xhandle@airnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक

0: सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज इस कड़ी में हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती पर। केंद्र सरकार ने नवंबर 2024 में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य रासायनिक खाद पर निर्भरता घटाने, मिट्टी की सेहत सुधारने और किसानों की खेती लागत कम करने को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया है।
1: नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत आज देश में करीब 12.5 लाख हेक्टेयर में नेचुरल फार्मिंग के 24,000 क्लस्टर्स बन चुके हैं। यही नहीं, देश में क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप की भी करीब 3,000 वैरायटीज विकसित हो चुकी है।
0: झारखंड में बड़ी संख्या में किसान प्राकृतिक खेती अपनाकर इसका लाभ उठा रहे हैं। रांची जिले के रातू प्रखंड के टिगरा नवाटोली गांव के किसान विमल तिग्गा और पंकज गोप ने बताया कि प्राकृतिक खेती के माध्यम से वे सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं।
2: पहले का खेती में रासायनिक खाद सब किया जाता था, जिसके कारण मिट्टी का उर्वरा शक्ति बहुत कम हो गया। आज कम पैदा होने की शिकायत है, तो विगत 2 साल से हम वो सारा केमिकल खाद वगैरह को तोबा कर दिए और अपने स्तर से सिर्फ गोबर खाद देते हैं और थोड़ा मोटा कीड़ा लगता है तो गौमूत्र का छिड़काव करते हैं।
3: किसान जागरूक हुए हैं और इस प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस खेती में हम लोग टमाटर, बैंगन, मिर्च, फूलगोभी, पत्ता गोभी, आलू सभी तरह के फसल को हम लोग रासायनिक मुक्त कर रहे हैं। जब हम लोग इसको मार्केट में ले जाते हैं तो इसका मार्केट वैल्यू भी अलग होता है। जो ग्राहक होता है इंतजार करते रहता है कि कब वहाँ के किसान लेके आएंगे और हम सब्जी को खरीद पाएंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इसे लेकर गुड्डा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने कहा कि भाजपा की ओर से सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है, जो 17 अक्टूबर तक चलेगा।
4: सेवा समर्पण संकल्प समृद्धि शासन का जो है वो 25वां साल है। 2001 में वो पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री उसके बाद ये तीसरी बार भारत की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया और उन्होंने जो विकास किया उसके लिए एक संकल्प के लिए हम सभी कार्यकर्ताओं को एक दिया जलाना।
0: राज्य की पूर्व मंत्री विमला प्रधान का सिमडेगा स्थित उनके पैतृक गांव बगडाण में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले कोलेबीरा विधायक नमन विक्सल कुंगाड़ी, उपायुक्त कंचन सिंह, पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस खोटरे समेत अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराकर शानदार शुरुआत की। दीपिका सहरावत ने 8, इशिका चौधरी ने 3 जबकि लालथंत लुआंगी और नेहा ने 2-2 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल इंडोनेशिया से होगा। इस शानदार जीत पर कप्तान सलीमा टेटे के गांव सिमडेगा समेत पूरे झारखंड में खुशी की लहर है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन किया अनिवार्य। राज्य के श्रम नियोजन मंत्री संजय यादव ने तेजस कार्यशाला का किया उद्घाटन। कहा, केंद्र के सहयोग से बेरोजगारी कम करने के लिए झारखंड के 19 जिलों में लागू की गई योजना। झारखंड का 30 लाख का इनामी उग्रवादी और टीएसपीसी का कमांडर वाराणसी में एटीएस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। झारखंड पुलिस के साथ एनआईए को भी थी तलाश। राज्य की पूर्व मंत्री विमला प्रधान का सिमडेगा स्थित पैतृक गांव बगडाण में राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। और भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराकर शानदार शुरुआत की। झारखंड में खुशी की लहर। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 1:21 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सिद्धेश्वरी देवी के स्वर में खमाज में ठुमरी। बोल हैं जाओ वहीं तुम श्याम।

दूसरा आदमी, ये था फिल्म का नाम। और ये गीत आप सुन रहे थे मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा, राजेश रोशन का संगीत। आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हम संडे को भी छुट्टी नहीं रखते, काम तो चालू रहता है और साथ में विविध भारती हो तो बोर होने का वक्त ही नहीं रहता। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप विविध भारती के साथ जुड़े हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन छुट्टी जरूर बनती है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सात गीतों की फेहरिस्त में ये जो है चौथे नंबर का गीत शामिल हुआ है, क्या मौसम है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैं तो सुबह से ही सोच रही थी कि आज संडे है, आराम से काम करूंगी, लेकिन अचानक पतिदेव की जरूरी मीटिंग आ गई और फिर वही जल्दी जल्दी काम में जुट गई, लेकिन नो टेंशन, विविध भारती है ना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी उन श्रोता का। एक और श्रोता लिखते हैं कि इतवार के दिन तो सभी की छुट्टी होती है, तो जो हमारी हेल्पर है आज उसके बच्चों की छुट्टियां भी रहती है, बस वो भी आज छुट्टी पर ही है। काम थोड़ा बढ़ गया है लेकिन इत्मीनान से धीरे धीरे निपटाए जा रहे हैं और सुरीला सफर के साथ भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत तो युवाओं को समर्पित है, क्योंकि इस कहानी में एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों अकेले में मिलते हैं और प्यार की बातें होती है, फिर वे पहाड़ों में वादियों में घूमते हैं, झरने के पास समय बिताते हैं और फिर लौट पड़ते हैं। अलग अलग दोनों को अपने घर जाने की मजबूरी है और अगले दिन फिर से मिलने का वादा करते हैं। क्या बात है, आपने तो ये कहानी लिख दी है। इबारत के बारे में एक और श्रोता लिखते हैं कि इस इबारत की खास बात यह है कि ये किसी मोड़ पर नहीं ठहरती, बल्कि एक मुलाकात से शुरू होकर एहसासों के उस मुकम्मल सफर को बयां करती है। शाम का ढलना, पहाड़ों और वादियों की बातें, दो दिलों के बीच किसी तरह का वादा ना होना लेकिन विश्वास का पनपना, बहुत ही खूबसूरत लगता है। जी हाँ, बिल्कुल, विश्वास पर ही दुनिया कायम है। और हम बढ़ते हैं इस प्रोग्राम में आगे अगले गीत की तरफ।

वारिस फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे। वर्मा मलिक ने इसे लिखा, उत्तम जगदीश का संगीत। आपके संदेश हम तक पहुंचे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि रविवार के दिन छुट्टी होती है, सभी लोग घर पर ही होते हैं और सड़कें कुछ खाली खाली दिखाई पड़ती है। बाजारों मार्केट में कुछ भीड़भाड़ सी दिखाई देती है और ये सब देखकर लगता है कि रविवार अपनी पहचान स्वयं करवा रहा हो। जी हाँ बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि हम अभी हैदराबाद में हैं, बेटिया जवाईसा के साथ हैं और यहाँ पर गणेश विसर्जन चल रहा है और बाद में प्रसाद भंडारा होगा और हम बस एंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत पर विशेष पंक्तियां, ढलती हुई शाम ने एक नया पैगाम दिया, दो अजनबी धड़कनों को एक ही नाम दिया। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिखी आपने। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि ये भी इत्तेफाक है कि आपने जो आज सुरीला सफर प्रोग्राम में सवाल पूछा है, उसी समय और इत्तेफाक से उसी सवाल पर मैं अपना कमेंट टाइप कर चुका था और यही तो बात है विविध भारत।

0: भी मुंबई से हमारी जो पहचान है, जो प्यार है, ये उसका प्रतीक है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपके संदेश हम तक भेजते रहिए और बताइए कि आज का रविवार, आज का ये जो दिन है, किस तरह से बिता रहे हैं आप, या फिर क्या सोचा था और वैसा नहीं हुआ, क्या प्लानिंग थी वैसी नहीं हुई, ये भी हमें लिख भेज सकते हैं। साथ ही साथ जैसे जैसे सोमवार आने को होता है तो कैसा लगता है, क्या अभी भी ऐसा लगता है कि परीक्षा आने वाली है, अभी भी ऐसा लगता है कि स्कूल में जाना है, किस तरह के भाव आते हैं मन में, ये भी लिख सकते हैं। दिलचस्प संदेश रहेंगे तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा।
1: एक विलक्षण गायक,
2: अरे ओरे हे,
1: संगीत के साधक,
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की,
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात,
1: वो हैं संगीतकार गायक

अनुरंजनी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:45 हो चुके हैं। ये वक्त है कार्यक्रम सुगम संगीत का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं भूपिंदर और मिताली सिंह की गाई गजलें। आइए सबसे पहले सुनते हैं मलिक ओमनाम की लिखी गजल। फनकार हैं भूपिंदर सिंह।

खुद से भी मैंने प्यार तुम्हारे लिए किया, गम को गले का हार तुम्हारे लिए किया। आइए सुनते हैं नसीम अजमेरी की लिखी गजल, फनकार हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह।

सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 2 बजने को है, आइए एक बार फिर आपको दिल्ली लिए चलते हैं मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार के लिए।

भारत महिला क्रिकेट के फाइनल में शेफाली वर्मा शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरलम तमिलनाडु पुदुचेरी और तेलंगाना में

0: इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। एक रिपोर्ट।
1: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े भविष्य के विषय पर आयोजित सम्मेलन ने अलग अलग देशों और क्षेत्रों में न्यायपालिका के काम करने के तरीकों, वैज्ञानिक जानकारी, पर्यावरण से जुड़े प्रशासनिक अनुभवों और संस्थागत कार्य प्रणाली को साझा करने का मंच प्रदान किया। इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों, विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों ने भाग लिया। 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में पर्यावरण जलवायु से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की गई। इनमें नीतियां बनाने, उन्हें लागू करने और उनका पालन सुनिश्चित करने में आने वाली कमियों पर भी विचार किया गया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बेहतर बनाने और विभिन्न संस्थानों के बीच सहयोग मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 14 राज्य इसमें भाग लेंगे, जबकि 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी आमंत्रित किया गया है। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूलन जल प्रबंधन से जुड़ी नवीन तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस दौरान 22 से 24 सितंबर तक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन भी होगा। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देशभर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देश भर के युवा शामिल हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। नशा मुक्त पंजाब यात्रा के तीसरे चरण का शुभारंभ आज विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने फजिलका के सादिकी सीमावर्ती क्षेत्र से किया। उन्होंने राज्य भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और अन्य पार्टी नेताओं के साथ आसफ वाला युद्ध स्मारक पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस यात्रा को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।
2: ये पंजाब की भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कई कार्यक्रम हाथ में लिए, एक पेड़ माँ के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये समाज सुधार से जुड़े हुए कार्यक्रम है। पंजाब को हम विकसित पंजाब बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ा उद्देश्य है भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें सभी राज्यों में विकास तेजी से हो, ये भी हमारा एक उद्देश्य है।
0: श्री मेघवाल ने नशा प्रभावित परिवारों के सदस्यों से भी मुलाकात की और उनके दुख में भागीदार हुए। इससे पहले शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पठानकोट के सीमावर्ती जिले से यात्रा का शुभारंभ किया था। यह यात्रा पंजाब की 3 प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशीली दवाओं की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल करना है, ताकि नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदला जा सके। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत तेलंगाना में कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन इस अभियान में भाग ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल के अंतर्गत आज हैदराबाद में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया।
3: देशव्यापी अभियान के तहत आज हैदराबाद के नेकलेस रोड पर नशा मुक्त भारत साइकिल रैली आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने इस रैली में हिस्सा लिया और नेकलेस रोड पर युवाओं और साइकिल चालकों के साथ साइकिल चलाई। युवाओं पर नशीले पदार्थों के गंभीर असर का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रतिभागियों को नशा न करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सांसद के लक्ष्मण ने कहा कि स्वस्थ युवा ही एक मजबूत और विकसित भारत के निर्माण का आधार है। उन्होंने सभी से इस अभियान में शामिल होने की अपील की। हैदराबाद से गोपागोनी सप्तगिरी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज प्रस्तुत है बिहार के किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया के लाभ पर

0: विशेष श्रृंखला।
1: बिहार में इंपोर्टेड नीम कोटेड यूरिया की शुरुआत दिसंबर 2015 से की गई। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार इसके इस्तेमाल से राज्य में अरहर और सोयाबीन सहित दलहन फसलों की वृद्धि में 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि अन्य फसलों में करीब 10% की वृद्धि हुई है। किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार विभिन्न प्रदर्शन और विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से नीम कोटेड यूरिया को बढ़ावा दे रही है। पैक्स और अन्य खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। और कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक भी किसानों को इसके उपयोग और लाभों की जानकारी दे रहे हैं।
2: हम लोग राज्य सरकार के स्तर पर प्रत्येक डेमोंस्ट्रेशन में जो भी हमारे किसानों के मध्य यदि हम फील्ड में किसी उपज के प्रदर्शन करते हैं या केविके के माध्यम से कोई काम कर रहे होते हैं तो आम किसानों के बीच इसकी पहुंच अधिकाधिक सुलभ हो उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हम लोगों ने यह तय किया है कि जितने भी हमारे डेमोंस्ट्रेशन चाहे वो खाद्य बीज की योजना राज्य सरकार के स्तर पर किसानों के बीच जाएगी उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हमारे राज्य सरकार के जितने भी किसान हैं उन तक इसकी सुलभता हो सके तो पैक्स एवं अन्य रिटेलर के माध्यम से एक निर्धारित मात्रा इसकी उपलब्ध रहती है।
1: कृषि विभाग के अनुसार किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग के तहत नीम कोटेड यूरिया के साथ अन्य उर्वरकों और जैविक खादों के इस्तेमाल के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधि श्री।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
4: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय वायुसेना जोधपुर वायुसेना केंद्र पर जापान वायु आत्मरक्षा बल के साथ द्विपक्षीय वायु अभ्यास वीर रक्षक 2026 का संचालन कर रही है। एक रिपोर्ट।
5: 14 दिवसीय अभ्यास मंगलवार को समाप्त होगा। ये अभ्यास उन्नत परिचालन मिशनों और दोनों वायु सेनाओं के बीच व्यापक पेशेवर समन्वय पर केंद्रित है। भारतीय वायु सेना स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस, ASU-30 MKI और रफाल सहित विभिन्न प्रकार के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों के साथ भाग ले रही है। जापान AF-2A लड़ाकू विमान के साथ अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। अभ्यास वीर रक्षक 2026 सामरिक दक्षता और एरोस्पेस चालन तालमेल को बढ़ाकर दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं हो जाती और अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू नहीं करता। ईरान की समाचार एजेंसी के अनुसार ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबाफ ने कहा कि ईरान अपने दुश्मनों के खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल करता रहेगा।
6: ईरानी अधिकारियों ने एक बार फिर कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तभी खोला जाएगा जब अमेरिका उनकी शर्तें पूरी करेगा। इनमें लड़ाई खत्म करना और ईरानी शिपिंग पर लगे प्रतिबंधों में बदलाव शामिल है। होर्मुज में जहाजों की आवाजाही अभी भी काफी सीमित है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि पिछले 2 महीनों में उसने 2000 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को वहां से गुजरने में मदद। वहीं हूदी हमलों के बीच अमेरिका ने वेस्ट एशिया के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी किया है और कहा है कि हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। दुबई से आकाशवाणी समाचार के लिए मनीष शिवा।
0: बांग्लादेश के ढाका में आज कई बम धमाके हुए। कल भी स्थानीय पुलिस थाने के बाहर भी इसी तरह के विस्फोट हुए थे। इस घटना में एक रिक्शा चालक घायल हो गया। ढाका में कल शाम अलग अलग घटनाओं में 3 बसों में आग लगा दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।

0: ये आकाशवाणी है। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। इन खेलों के बारे में और अधिक जानकारी दे रही हैं जागृति शर्मा।
1: जापान एशियाई खेलों में भारत की एला वेनेल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने टीम के रजत पदक के बाद अपना व्यक्तिगत रजत पदक जीता है। 2025 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता वलारिवन ने फाइनल में 252.4 अंक हासिल किए। जापान की हिनाता ताइची ने रिकॉर्ड 253 अंकों के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत की एला वेनेल, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का पहला रजत पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। जापान को कांस्य पदक मिला। इस बीच सुचिका तारियाल ने इतिहास रच दिया है। वे एशियाई खेलों में महिलाओं के पारंपरिक 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इस जीत के साथ सुचिका सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और मार्शल आर्ट्स में भारत का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया है। भारत एशियाई खेलों के महिला टी20 क्रिकेट मैच के फाइनल में पहुंचा। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 114 रन से हराया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। भारत के 196 रन के जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 16वें ओवर में 81 रन पर ही सिमट गई। शेफाली वर्मा ने सफेद गेंद का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाकर इतिहास रचा। शेफाली एशियाई खेलों में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज भी बन गई हैं। वहीं सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड की दिग्गज खिलाड़ी सूजी बेट्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। फाइनल मैच मंगलवार को भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंदकर शानदार शुरुआत की। दीपिका सहरावत ने 8, इशिका चौधरी ने 3 जबकि लाल थंत लुआंगी और नेहा ने 2-2 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल इंडोनेशिया से होगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ में भी बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। हौजी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट के फाइनल में भारत पहुंचा शेफाली वर्मा शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: फैसलों की ताज़ा अपडेट के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ मैं कविता
1: एंड आई एम दर्पंती केएल।
0: अब तक भारत के शेड्यूल पर नजर डालें, खेलों पर नजर डालें तो अब भारत दो मेडल जीत चुका है शूटिंग में। 10 मीटर एयर राइफल वुमेन्स टीम में आया है भारत का पहला मेडल जो जीता है एला वनिल वलारीवन सोनम मस्कर विदर्शा विनोद ने। वहीं इसी की इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा में एला वनिल ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है।
1: Right, so two medals for Ella Vanil Valarivan, who hails from Tamil Nadu, and she calls Gagan Narang her mentor. And the interesting bit is that in the 2010 Asian Games in Guangzhou, Gagan Narang also achieved the same feat. He had won two silver medals, one in the individual event, one in the team event, and that's exactly what Ella Vanil has done today. And obviously, as Kavita told you, alongside Sonam Maskar and Vidarsha Vinod, she also won a medal in the team event. So India now

0: now are at ninth spot in the medals table. Still early days with those two medals, but there are two more medals which have been confirmed but are not currently reflecting on that medals table. One in MMA, we have been telling you again and again that Suchika Tarial has confirmed at least a bronze by entering the semi-finals in the women's 60 kilogram category. However, another medal has now been secured in cricket as well. The Indian women's team have won their semi-final contest in a one-sided manner. They steamrolled Bangladesh, riding on Shefali Verma's record-breaking century, and are now assured of at least a silver. However, we will hope that in the final, when they lock horns with Sri Lanka, whom they defeated a few days back in the Women's Asia Cup final, they will again retain their gold medal, retain their crown of the Asian Games as well.
1: क्रिकेट के साथ ही जीत का सिलसिला बढ़ाया है आगे हॉकी के खिलाड़ियों ने. जी हाँ, हॉकी में भी दोनों ही टीमों के रिजल्ट हम सबके सामने आ चुके हैं. पहले मुकाबला खेला गया महिलाओं का, जहाँ पर भारतीय टीम ने उज्बेकिस्तान को शानदार तरीके से 19-0 से हरा दिया. इसी के पीछे पीछे भारतीय पुरुषों की भी मुकाबला खेला गया, जहाँ पर भारतीय टीम ने इंडोनेशिया को 13-1 से हरा दिया. और बात करें अगर इसी के साथ स्विमिंग की, जिसका मुकाबला अब से कुछ ही देर बाद होने वाला है, यानी 2:40 पर ये मुकाबला होगा. तैराकी में पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा पर भारतीय तैराक एक बार फिर से मेडल के लिए दावेदारी पेश करते नजर आएंगे. ऋषभ दास यहाँ पर होंगे हमारे सामने. और आपको ये भी बता दें कि जो सारी प्रतिस्पर्धाएं हैं नागोया शहर और आईची प्रीफेक्चर में हो रही है, लेकिन स्विमिंग की प्रतिस्पर्धाएं जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हो रही हैं.
0: Right, so we hope that Rishabh Das, who will be featuring in that final, will be able to get a medal as well. However, from the swimming center in Tokyo, we move our attention to the Sky Hall in Nagoya, where the table tennis event is happening. As we told you in our last update, that Indian women's team had won their opening contest against Indonesia, and the men's team also started off on a winning note by defeating Indonesia. However, in their second tie, Singapore is giving the Indian women's team a run for their money. In each tie, there are 5 matches played, and you have to win 3 of them in order to win the tie and take the points out of it. In the first match in this particular tie against Singapore, Yashaswini Ghorpade got India off to a good start. However, after that, Srija Akula has lost her match, and Dia Chitale has also lost her match. So now in the remaining 2 matches, India need to make it or break it, otherwise they will lose this fixture. On the other hand, in the badminton court, there was not much of competition. India secured a comfortable victory against Kazakhstan, riding on good performances from Unnati Hooda, Tanvi Sharma and PV Sindhu. And based on that, now they are into the quarterfinals, where they will be facing Japan.
1: बात करते हैं वुशु की, जिसमें अब से कुछ देर बाद भारत के 2 खिलाड़ी अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे. 52 किलोग्राम में अपर्णा सांडा इवेंट में ईरान की सोगंद सिंह काई चेतन से भिड़ेंगी. वहीं पुरुष 75 किलो में विक्रांत बालियान का मुकाबला ईरान के सोहेल मौसवी से होगा. ये भी सांडा इवेंट का ही मैच है. सांडा इवेंट सांशो की कहा जाता है वुशु मार्शल आर्ट का फुल कॉन्टेक्ट कॉम्पिटिशन है, जिसे फाइटिंग इवेंट माना जाता है. वुशु की उत्पत्ति चीन से हुई है. ये चीनी मार्शल आर्ट है, जिसे दुनिया भर में कुंग फू के नाम से भी जाना जाता है.
0: सो वील कीप आर आईज ऑन दैट एंड वी विल गिव यू द अपडेट एज सून एज पॉसिबल एज एंड व्हेन इंडिया विन द मेडल्स. फॉर नाउ दिस इज दर्पण एंड कविता साइनिंग ऑफ विद द मैसेज दैट वी विल मीट अगेन एट 3:30 PM विद द लाइव अपडेट्स फ्रॉम द 20th एशियन गेम्स.

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:35 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं फौजी भाइयों को समर्पित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती। जय भारती कार्यक्रम में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं मनोज मुंतशिर का लिखा गीत बी प्राग की आवाज में। इस गीत की धुन बनाई है तनिष्क बख्शी ने और फिल्म का नाम है

0: मधुमति फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे, मुकेश की आवाज में शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत। और इससे पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया वक्त फिल्म से, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में आपने सुना था, साहिर लुधियानवी ने उसे लिखा, रवि का संगीत।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे प्रोग्राम सदाबहार नगमे विविध भारती से।

मोहम्मद रफी की आवाज में गीत गाइड फिल्म से अभी आप सुन रहे थे शैलेंद्र के लिखे बोल एसडी बर्मन की तर्ज। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे संपन्न होता है।

0: यह विविध भारती लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका इस प्रोग्राम में मनचाहे गीत, जिसका नाम है आपके प्यार भरे फरमाइशी गीत जो आपने लिख भेजे हैं पत्रों के जरिए हम तक पहुंच चुके हैं और आज इस प्रोग्राम में शामिल होने को एकदम तैयार है। आज का ये गीतों का सफर आप तय करेंगे अनुराधा उपाध्याय के संग। चलिए शुरुआत करते हैं इस पहले गीत के साथ।

जानी दुश्मन इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। वर्मा मलिक ने इसे लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, और इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी थी गांव हिवरखेड़ तेलहारा जिला अकोला महाराष्ट्र से विनोद कुमार, भारती, पारस, पायल, श्वेता और उर्वी बैन ने। नेहरू चौक पैठण से सुरेश जाधव, अनीता जाधव, प्रसाद जाधव, बेबी सोनल ने। ग्राम खकड़ तहसील कोंच जालों उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुजर, सत्यम सिंह, अंशराज एवं उनका समस्त परिवार। संबलपुर कांकेर से ज्योति, ओजस्वी, इशिका, फागुराम यादव ने। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसू तासु, अर्णव आनंद, सत्यम ने इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी, और साथ ही आनंद।

मन्नाडे की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। श्री 420 फिल्म का नाम शैलेंद्र ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज। इसे सुनना चाहा था गणेशपुर गंज डूंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजली वाले, शेख शमा परवीन, अलकमर बेगम, अफसाना बेगम, महजवी शेख और मिर्जा नसरीन बेगम ने। साथ ही ताज मंजिल लकड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकी पवार और मोहम्मद हसनैन ने इसे सुना चाहा था। बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका ने। ग्राम छह गांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना, भूपेंद्र, झवर, तनुश्री, आरोही और कान्हा वाघे ने इसे सुनना चाहा था। साथ ही सेक्टर 9 पंचकुला से रमेश गुलाटी, स्नेह, हिमांशु और देवांशु गुलाटी ने इसे सुनना चाहा था और वरुण जवुलका से महेंद्र सरकटे, विजया और मिलिंद ने इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे। पगला कहीं का फिल्म का नाम हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। और इसे सुनने के लिए हमें पत्र मिले छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानू के, साथ ही नरोत्तम गौड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से। इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी हटौद बाजार लाहौद से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर और राजकुमारी पटेल ने। गुजरात मादनगर से राहुल ओजा, प्रतीक ने इसी गीत की और साथ ही दीप्ति, उन्होंने इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी। मुक्तसर पंजाब से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत, निशु और भूपेंद्र, और शीतलानगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, अर्पा, पैरी, पार्वती और राधा ने इसी गीत को सुनना चाहा था।

लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में ये गीत राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, रविंद्र जैन का संगीत। और इस गीत को सुनना चाहा था मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप गुगलानी, मीनाक्षी तिवारी और नरेंद्र तनेजा ने। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या सुच्चा सिंह पाठक ने। रिधोरा से बाबूलाल बोराखेड़े, गोकुला और मंगेश बोराखेड़े ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा था बाजार चौक पुलगांव से अब्दुल कलाम और नाजिमा अंजुम ने। इसी गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी। उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक और मयंक ने। साथ ही चेतन नाहटा ने। और इसी गीत को सुनना चाहा था जसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश, निवृत्ति और संजय चौहान ने।

0: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में धरती फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन की तर्ज थी, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और इसे सुनना चाहा था कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा, टीडी मल्होत्रा मोहाली से जयवीर सिंह ठाकुर ने, और साथ ही शीतल पार्क राजकोट से कासिम संगवाणी, इकबाल और अनवर ने, शहर अंबिका चौक भीड़ से जनार्दन वेद पाठक, भाग्यश्री चीयू माऊ बिट्टू और आरवी ने, मोलनपुर मंडी से कृष्ण गोपाल शर्मा, राज शर्मा, मंजू शर्मा, अंश बिट्टू और दीपक जैन ने, चूड़ी लाइन भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी, रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद ने इस गीत को सुनना चाहा था, और साथ ही साथ जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन और महेंद्र जैन ने इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मनचाहे गीत यहीं संपन्न करते हैं।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत। यह है विविध भारती।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज आपको सुनवाते हैं नाटक स्वप्न वासव दत्ता का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतरण है। रूपांतरकार कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा।

0: ये हमारे राजगृह का प्रमदवन कैसा है?
1: अद्भुत है, सुंदर है राजकुमारी।
2: राजकुमारी पद्मावती, देखिए देखिए मेरे अंजुरी की ये शेफाली का फूल रक्त संख्या के टुकड़ों से चमक रहे हैं।
0: हाँ चीची, अद्भुत है ये फूल, है ना अवंती के?
1: बहुत ही सुंदर है।
0: और तोड़ो?
1: नहीं नहीं, और न तोड़ो। क्यों रोकती है?
0: जब आर्यपुत्र यहाँ प्रमदवन में आकर इन फूलों का विस्तार देखेंगे तब मैं उसे अपना सम्मान मानूंगी।
1: सखी, आर्यपुत्र तुम्हें बहुत प्रिय हैं?
0: नहीं जानती अवंती के, लेकिन आर्यपुत्र के बिना मैं अत्यंत उत्कंठित हो जाती हूँ। बस मुझे एक संदेह है।
1: क्या?
0: जैसे आर्यपुत्र मेरे हैं अवंती के, क्या वैसे ही वासुदत्ता के भी थे?
1: उससे भी बढ़कर।
0: तुमने कैसे जाना?
1: हाँ,

0: यदि उनका प्रेम कम होता तो वासव दत्ता अपने आत्मियों परिजनों को यूं सहज छोड़ पाती?
1: हाँ संभव है।
2: राजकुमारी, आप महाराज उदयन से कहती क्यों नहीं कि आप भी वीणा सीखेंगे?
1: मैंने कहा था जीती।
0: फिर क्या कहा उन्होंने?
1: कुछ नहीं, केवल दीर्घ निश्वास छोड़ वे चुप रहे।
0: ओह,
1: उस समय शायद आर्या वासुदत्ता के गुणों का स्मरण हो आया हो उन्हें।
0: हाय आर्य पुत्र, ये कैसी व्यथा।
3: गिरे हुए बंधु जीव कुसुमों और अविरल पवन से ये प्रमद वन कैसा रमणीय हो रहा है। अरे इधर नहीं, इधर नहीं, उधर चले श्रीमान वत्सराज।
4: मैं आ गया मित्र वसंतक। मैंने उज्जैनी में राज कन्या वासवदत्ता को जब देखा तब मेरी अवस्था अकथनीय हो गई थी। तब काम के पांचों बाण मुझ पर पड़े, हृदय आज भी उस चोट से व्यथित है। और मित्र, अब प्रहार पर प्रहार हुआ है। यदि मदन शरों की संख्या 5 ही है तो ये छठा कहां से आ गया?
3: देवी पद्मावती, देवी पद्मावती कहां गई? देवी पद्मावती लता मंडप में तो नहीं गई? व्याघ्र चर्म से दिखने वाले असन कुसुमों से ढके पर्वत तिलक शिलापट पर तो नहीं जा बैठी? तीव्र गंध वाले सप्तछन वन में तो नहीं गई? अरे अरे, कहीं हिरणों और पक्षियों की अनुकृति से चित्रित दारू पर्वत पर तो नहीं चली गई देवी?
2: देखिए राजकुमारी पद्मावती, सामने से महाराज उदयन चले आ रहे हैं।
1: हाँ हाँ, वही तो है चेटी। अवंतिकी, तुम पर पुरुष का दर्शन नहीं करती ना, तुम्हारी इसी चरित्र रक्षा के कारण मैं आर्य पुत्र का दर्शन त्याग रही हूँ। वे हमें नहीं देखे इसलिए इस माधवी लता मंडप में चले।
2: आओ यही करें राजकुमारी।
3: अरे लगता है श्रीमती पद्मावती यहाँ आकर लौट गई।
4: कैसे जाना वसंतक?
3: अरे इस शैफाली का गुच्छ को देखे जिसके की फूल तोड़ लिए गए।
4: वसंतक, इसी शिलातल पर बैठ हम पद्मावती की प्रतीक्षा करें।
3: बहुत अच्छा प्रभु, बहुत अच्छा। पर शरद काल की ये तीखी धूप बड़ी असह्य है प्रभु। क्यों ना हम इस माधवी लता मंडप में चले।
4: अच्छा चलो।
2: अरे ये वसंतक मूर्ता में सारा काम चौपट कर देगा, भला आप क्या करें चेटी? कहीं तो इस लता से लटके मधुचत्ते को हिलाकर आर्य पुत्र को मार्ग विरत कर दूं। हाँ हाँ ऐसे ही करो।
3: अरे बचाओ बचाओ, इन मधुकरों से, इन भ्रमों से मेरी रक्षा करो। अरे श्रीमान आप वहीं रुके।
4: अरे अरे अरे मधुकरों को भया तो न करो वसंतक, हमारी पच्चापों से उद्विग्न हो वे भी हमारी तरह अपनी प्रियाओं से विरहित हो जाएंगे। अतः यही बैठो।
3: जी
2: राजकुमारी पद्मावती, हम तो यहाँ बंदी हो गए।
1: लेकिन प्रसन्नता है, सामने ही आर्य पुत्र बैठे हैं।
0: आर्य पुत्र स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, भाग्य की कृपा।
2: अरे आर्य अवंतिका की आंखों में ये आंसू कैसे?
0: नहीं नहीं कुछ नहीं जेठी, आंखों में काश फूलों के धूलिकण गिर पड़े इससे आंखों में आंसू आ गए।
3: स्वामी वत्सराज उदयन, ये प्रमद वन एकदम सूना है, इसी से कुछ पूछना चाहता हूं।
4: पूछो वसंतक।
3: आपको प्रियतर कौन, पहले की वासवदत्ता या आज की पद्मावती?
4: क्यों मुझे महासंकट में डालते हो वसंतक? मैं कुछ नहीं कह सकता।
3: मैं सौगंध खाकर कहता हूं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। अब तो सच सच बता दें प्रभु।
4: रूपशील माधुर्य के कारण पद्मावती मुझे प्रिय है, लेकिन वासवदत्ता में मेरी आसक्ति के कारण वो मन को हर नहीं

0: आती। अब तुम कहो, तुम्हें कौन प्रिय है?
1: मेरे लिए तो दोनों समान हैं प्रभु। देवी वासवदत्ता आदरणीय थी और देवी पद्मावती तरुणी दर्शनीय क्रोध अहंकार रहित मृदुभाषिणी और उदार हैं। हाँ, उनमें एक गुण और अधिक है प्रभु। वे मीठे मीठे पकवान लिए पूछती रहती हैं, आर्य वसंतक कहाँ गए? आर्य वसंतक कहाँ हैं?
0: मित्र वसंतक, मैं ये सारी बातें वासवदत्ता से कह दूंगा।
1: अब देवी वासवदत्ता कहाँ हैं? वे तो कभी की परलोक सिधार।
0: हाँ मित्र, तुमने अपने इस परिहास से मेरा मन विक्षिप्त कर दिया। अपनी पुरानी आदत से ही ऐसी बात मुंह से निकल पड़ी। वसंतक, तुम मेरी दशा नहीं जानते। वासवदत्ता का अमूल्य अनुराग भुलाया नहीं जा सकता। उसकी याद से मेरा परिताप नित नया होता जाता है।
1: अरे अरे, आपका मुख आंसुओं से भीग गया। चलो मुंह धोने के लिए पानी लाऊं।
2: अवंती के, आर्य का मुख आंसुओं से जाने क्यों भीग गया? सुनो, यही समय है, हम यहां से निकल चले।
3: नहीं राजकुमारी, व्यथित पति को यूं छोड़ जाना उचित नहीं। आप यहीं ठहरे, मैं ही यहां से चली जाती हूँ।
2: हाँ, यही उचित है। देवी पद्मावती, हमारे के पास चले। सचमुच जाऊं?
3: हाँ जाओ पद्मावती, जाओ। वे दुखी हैं, उन्हें शांत बना दो।
4: आर्य की जय हो।
0: पद्मावती, बैठो। जल ले आए वसंत?
1: जी हाँ।
0: काश रज आंखों में पड़ जाने से मुंह आंसुओं से भीग गया।
4: अथवा किसी दुख से?
0: नहीं पद्मावती, नहीं।
1: महाराज उदयन, अपराहन वेला हो रही है, अब आप पधारें और अपने सुहृदजनों को दर्शन दें।
0: ठीक कहा वसंतक, आओ चलें।

0: मधुरी के, ओ मधुरी के, जल्दी इधर आ।
1: आई।
0: मधुरिका, राजकुमारी पद्मावती सिर पीड़ा से व्याकुल है। तू जा और आर्य अवंतिका को बुला ला।
1: राजकुमारी कहाँ है?
0: उद्यान वाले समुद्र गृह में। मैं आर्य वसंता को खोजती हूँ, वे भी स्वामी को ही संदेश दे दे।

0: पद्मावती से विवाह के बाद भी मुझे वासव दत्ता की याद सताती है। वासव दत्ता मेरी प्रिया, मेरी शिष्या, जिसके वीणा स्वरों को सुन कैसा विमोहित हो जाता था मैं। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा वासव दत्ता?
1: राजकुमारी पद्मावती सिर पीड़ा से व्याकुल है और उनके शैया समुद्र गृह में है।
2: अरे चलो वसंतक, समुद्र गृह की राह दिखाओ मुझे।
1: जी, ये रहा समुद्र गृह, आर्य पधारे।
2: पहले तुम चलो वसंतक।
1: जी। ठहरिए ठहरिए श्रीमान, अरे इस भूमि पर तो सर्प लेट रहा है।
2: मूर्ख, ये पुष्पमाला है।
1: पुष्पमाला?
2: सर्प नहीं, ये माला तोरण द्वार पर लटक रही थी और अब भूमि पर गिरी, वायु झोंकों से हिल रही है।
1: हाँ, ये तो सर्प नहीं है। देव, यहां सैया है, दीपक जल रहा है, एकदम शांति है। लगता है राजकुमारी यहां आई और चली गई।
2: नहीं वसंतक, देवी यहां नहीं आई। देखो ये सैया वैसी ही है, सिकुड़न तक नहीं, औषध लेपन से सिरहाना भी मैला नहीं हुआ, न मन बहलाव के लिए यहां कोई शोभा।

0: रची गई।
1: तो देव उनके यहां आने की प्रतीक्षा करें?
0: हां यही ठीक है। मित्र वसंतक
1: जी,
0: मुझे नींद आ रही है, कोई कथा कह।
1: जी ठीक है, तो देव सैया पर लेट हुंकारे भरते जाए और सुने। हाँ तो राजन, उज्जैनी नामक एक रमणीय नगरी है।
0: क्या कहा, उज्जैनी?
1: ये कथा पसंद नहीं तो दूसरी कहूं।
0: है। लेकिन इसके साथ मुझे अवंतीनाथ की कन्या वासुदत्ता की याद आ रही है, जिसने उज्जैनी से प्रस्थान के समय बंधुजनों का स्मरण कर अपने आंसू मेरे हृदय देश पर बरसाए थे। वासुदत्ता, वासुदत्ता।
1: राजन, दूसरी कथा है, ब्रह्मदत्त नाम का नगर है।
0: मूर्ख, ब्रह्मदत्त राजा का नाम था।
1: हाँ।
0: नगर कांपिल्य था।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो पहले इसे याद कर लूं मैं। राजन, राजा ब्रह्मदत्त था नगर कांपिल्य, राजा ब्रह्मदत्त था नगर कांपिल्य, कांपिल्य राजा था नगर ब्रह्मदत्त, नगर कांपिल्य। अरे देव को तो नींद आ गई, चलो अच्छा हुआ, बड़ी सर्दी है, चलो कुछ ओढ़ने को ही ले आऊं, वरना अपने राम टिर बोल जाएंगे।
2: भाग्य कितना निठुर है, ये पद्मावती जो आर्य का विरह दुख दूर करने में सहायक होती अस्वस्थ हो गई। अरे यहाँ के सेवक कैसे असावधान हैं? पद्मावती के पास केवल जलता दीप छोड़ चले गए। अच्छा, तो इसी शैया पर पद्मावती सो रही है, चलो उसी की शैया पर बैठो। क्या क्या बात है, इस शैया पर बैठते मन मन कैसा आह्लादित हो रहा है। इसकी श्वास प्रश्वास तो बिल्कुल ठीक चल रही है, लगता है स्वस्थ हो गई।
0: वासुदत्ता, वासुदत्ता।
2: ये तो आर्यपुत्र है, यहाँ कैसे?
0: प्रिय,
2: अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो आर्य योगंद्रायण और मेरी दोनों की प्रतिज्ञा निष्फल होगी, वत्स देश की राज्य प्राप्ति का स्वप्न अधूरा रह जाएगा।
0: अवंती राजपुत्री,
2: लगता है आर्यपुत्र स्वप्न में बातें कर रहे हैं। भला है यहाँ कोई नहीं, एक क्षण रुक, इन्हें देख हृदय और दृष्टि को संतुष्ट तो कर लूं।
0: प्रिय आशीष,
2: बोल रही हूँ स्वामी, बोल रही हूँ।
0: क्या तुम कुपित हो?
2: नहीं, दुखी हूँ।
0: तो अलंकार क्यों उतार दिए?
2: अलंकार पहनने से भी क्या भला होता?
0: वासुदत्ता, वासुदत्ता, प्रिय, प्रिय।
2: आर्य की स्वप्नावस्था है, यहां देर से बैठी हूं, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा?
0: प्रिय,
2: चलो चलने से पहले सोए आर्य पुत्र के इन पहले हाथों को ठीक कर दूं। अब चलो।
0: ठहरो, ठहरो, ठहरो वापस, ठहरो वासुदत्ता, ठहरो। अरे ये क्या, ये क्या?

0: ये मेरा मनोभाव सत्य है या स्वप्न?
1: राजन, जाग गए आप?
0: हाँ वसंतक, मित्र एक सुसंवाद।
1: क्या
0: वासव दत्ता जीवित है?
1: हाँ, वासव दत्ता कहाँ, वे तो कभी के परलोक से हार गए।
0: नहीं, मुझे शैया पर सोता देख चली गई।
1: समझा समझा राजन, जब से मैंने उनकी बात कही तभी से आप देवी वासव दत्ता के विषय में सोच रहे थे, इसी से उन्हें स्वप्न में देखा होगा।
0: वसंतक, अगर वो स्वप्न था तो ना जागना ही धन्य होता, यदि ये भ्रम है तो वह सदा बना रहे।
1: समझा राजन समझा, इस राजगृह नगरी में अवंती सुंदरी नामक यक्षिणी रहती है, कहीं वो तो दिखाई नहीं दे गई?
0: नहीं नहीं नहीं, नींद से जाग मैंने उसके मुख को देखा, मुख पर बिखरी लंबी हल्के अंजन रहित नेत्र। देखो मित्र देखो, मेरी इस भुजा को देखो, स्वप्न में ही वासव दत्ता ने जिसे स्पर्श किया वहां भी रोमांच है।
1: राजन व्यर्थ चिंतन छोड़े, आइए चतुर्शाला चलें।
2: चलिए राजन चलिए।

0: वत्सराज उदयन की जय हो।
1: आइए कंचुकी।
2: हमारे महाराज दर्शक ने आपके लिए संदेश दिया है कि आपके शत्रु आरुणि पर आक्रमण के लिए आपके आमात्य रुमणवान बड़ी सेना लेकर उपस्थित हैं। इसी तरह हमारा विजयनी राज दल युद्ध के लिए सन्नद्ध है। आपके शत्रु विभाजित कर दिए गए हैं। आपके गुणों से अनुरक्त आपकी प्रजा आश्वस्त है। प्रयाण के लिए सेना के पृष्ठभाग की रक्षा का प्रबंध कर दिया गया है। शत्रु पराजय के सब करणी उपस्थित हैं। सेना गंगा पार कर चुकी है। वत्सों का देश प्राय आपके हाथों में है महाराज।
1: ये सुसंवाद है कंचुकी। अब मैं भयानक कर्मों में दक्ष उस आरुणि को तैरते गजाश्व और तरंग बाण वाले महासमुद्र में पकड़कर नष्ट कर दूंगा।
0: कौशाम्बी राजमहल के इस सुनहरी तोरण द्वार पर कौन प्रतिहारी नियुक्त है?
3: आर्य, मैं हूँ विजया।
0: विजया, महाराज उदयन से निवेदन कर, अवंती राज महासेन के यहाँ से रभ्य गौत्र कंचुकी और देवी वासा दत्ता की धाय आर्य वसुधारा आए।
3: आर्य कंचुकी, इस संदेश के लिए न ये उपयुक्त स्थान है न समय।
0: क्यों?
3: आज स्वामी के पूर्व प्रासाद में कोई वीणा बजा रहा था,

0: स्वाति, घोषवति का स्वर? यह तो वासव दत्ता की वीणा घोषवती का स्वर लगता है। ये वीणा कहाँ भाई?
1: बजाने वाले ने कहा, नर्मदा तीर झाड़ियों में पड़ी मिली, स्वामी चाहें ले लें। जैसे ही स्वामी ने उस वीणा को अपने अंक में लिया,
0: घोषवती, घोषवती, मैंने तुम्हें तो पाया, लेकिन वासव दत्ता वो कहाँ है?
1: आप सोचें, इस समय कैसे निवेदन करूं उनसे?
2: विजय, जा निवेदन कर। ये संवाद मुझे उसी से संबंधित प्रतीत होता है।
1: जाती हूं आर्य।
3: स्वामी की जय हो। अवंतीराज महासेन के यहाँ से रैभ्य गोत्र कंचुकी और महारानी वासव दत्ता की धाय आर्या वसुधारा द्वारे उपस्थित हैं।
4: तो प्रतिहारी, पहले पद्मावती को बुलाओ।
3: जो आज्ञा प्रभु।
5: आर्य पुत्र की जय हो। मैंने संवाद सुना, मैं अपने संबंधियों की कुशल वार्ता से प्रसन्न होंगी।
4: हाँ, वासव दत्ता के स्वजन आपके भी स्वजन हैं।
5: आप मेरे समीप बैठे ही उन लोगों से मिलेंगे, मुझे देख क्या वे उदास नहीं होंगे?
4: नहीं पद्मावती, नहीं, बैठो।
3: कंचुकी और धाये द्वार पर खड़े हैं महाराज,
4: उन्हें शीघ्र लिवा लाओ।
6: आर्य पुत्र की जय हो।
1: आर्य पुत्र की जय हो।
4: आर्य रैभ्य, मैंने जिनके साथ मैत्री कामना की, जो पृथ्वी के राजवंशों के उदयास्त के कारण हैं, वे अवंती राज महासेन सकुशल तो हैं।

0: कुशल हैं और आप सबके कुशलार्थी हैं।
1: उनकी मेरे लिए क्या आज्ञा है?
0: महाराज उदयन, शत्रुओं द्वारा अप्रहत आपका राज्य सौभाग्य से लौट आया।
1: आर्य दैभ्य, ये सब महाराज महासेन के प्रभाव का ही परिणाम है। आज भी मैं स्मरण करता हूं, आरंभ में मैं उज्जैनी राज्य की सीमा के समीप उन्हीं की सैन्य से पराजित हुआ। बंदी बना तो उन्हीं महासेन ने मेरा पुत्रवत पालन किया। मैंने उनकी प्रिय कन्या वासवदत्ता का हरण कर लिया, लेकिन मैं उसकी रक्षा नहीं कर सका। उसका मृत्यु संवाद सुनकर भी मेरे प्रति उनका आदर पूर्ववत है। विजय प्राप्त कर पुनः मेरे वत्स राज्य में लौट आने का कारण भी वही है। मात वसुधारा, राजमाता अंगारवती कुशल पूर्वक तो है?
2: स्वस्थ ही, आपका कुशल पूछती हैं।
1: सभी कुशल हैं, यहां सब कुशल है मां, केवल केवल वासवदत्ता बस वो ही नहीं है।
2: राजन, संताप न करें।
0: स्वामी, धैर्य धरे, महासेन कन्या वासवदत्ता मरकर भी अमर है, क्योंकि आप उन्हें आज भी उसी स्नेह से स्मरण करते हैं।
1: वासवदत्ता को मैं कैसे भुला सकता हूँ?
2: राजन, राज महिषी अंगारवती ने कहा है वासवदत्ता अब नहीं रही, किंतु मेरे और महासेन के लिए आप पुत्र गोपालक और पालक की भांति ही प्रिय हैं। पहले से ही मनोनीत जामाता ही, इसी विचार से आप उज्जैनी लाए गए थे। फिर बिना शिक्षा के बहाने, बिना अग्नि साक्ष्य आपको वासुदत्ता दे दी गई थी, पर शीघ्रतावश आप बिना विवाह क्रिया के वासुदत्ता का हरण कर चले आए थे। तब हमने आपका और वासुदत्ता का चित्र बनवाकर विवाह मंगल संपन्न किया। उसी चित्र फलक को हम आपके पास भेज रहे हैं, जिसे देख आप सुखी हों।
1: देवी अंगारवती ने स्नेहपूर्ण और अनुकूल बात कही। उनका यह कथन 100 राज्यों की प्राप्ति से भी बढ़कर है। अपराधी होते हुए भी हम दोनों के प्रति वे अपना स्नेह नहीं भूली।
3: आर्यपुत्र, मैं चित्र देखना चाहती हूँ।
2: ये देखिए पद्मावती जी।
3: अरे
1: देवी, क्या बात है?
3: आर्यपुत्र, आश्चर्य, देवी वासवदत्ता की इस प्रतिकृति के समान ही कोई यहाँ रहता है।
1: यहाँ?
3: हाँ आर्यपुत्र।
1: तो उसे शीघ्र बुलाएं।
3: लेकिन विवाह पूर्व किसी ब्राह्मण ने उसे अपनी भगिनी बताकर मुझे सौंपा है। ये भी कहा है उसका पति विदेश गया है, वो प्रोषित पति का है, इस कारण पर पुरुष का दर्शन नहीं करती।
1: ओह, अगर वो ब्राह्मण की भगिनी है तो कोई और है। यूं तो रूप सामी मिल ही जाता है।
4: स्वामी की जय हो। उज्जैनी से एक ब्राह्मण आया है, कहता है देवी के आश्रय में मैंने अपनी बहन रखी थी, मैं उसे लेने आया हूँ।
1: पद्मावती, क्या ये वही ब्राह्मण तो नहीं?
3: संभव है वही हो।
1: प्रतिहारी, अंतरपुर के आचरण का ध्यान रखते हुए बीच में यवनी का डाल ब्राह्मण को शीघ्र उपस्थित करो।
4: जो आज्ञा प्रभु।
1: पद्मावती, आप उस ब्राह्मण भगिनी को ले आए।
3: जी।
5: जय हो, आपकी जय हो।
1: ये स्वर परिचित सा प्रतीत होता है। ब्राह्मण, क्या आपने अपनी बहन को देवी पद्मावती के आश्रय में रखा था?
5: हाँ राजन।
1: तो शीघ्र ले आओ इनकी भगिनी को।
4: आर्य पुत्र की जय हो, धरोहर ये है।
1: धरोहर लौटा दो पद्मावती, वस्तुतः धरोहर साक्षियों के समक्ष लौटाना चाहिए। यहाँ ये रैभ्य और आर्या वसुधारा है, यही साक्षी होंगे।
2: ये क्या, ये ही तो महासेन पुत्री वासवदत्ता है।
1: मेरी प्रिया वासवदत्ता, सच अगर यही है तो देवी पद्मावती, आप वासवदत्ता को ले अंतपुर में प्रवेश करें।
5: नहीं देव, उसे अंतपुर प्रवेश नहीं करा, वो मेरी भगिनी है। राजन, आप भरत कुलोत्पन्न है, विनीत है, ज्ञानवान, पवित्र राजधर्म के आचार्य, इस तरह मेरी भगिनी का हरण न करें।
1: अच्छा, तब रूप सादृश्य देखें। प्रतिहारी, ये बीच की यवनी का हटा दो।
5: स्वामी की जय।
1: महामात्य।
3: आर्यपुत्र की जय।
1: वासवदत्ता, अरे अरे, ये तो हमारे महाअमात्य यौगंधरायण ही है, और ये महासेन पुत्री वासवदत्ता, ये सत्य है या स्वप्न?
5: महाराज उदयन,

0: लेने का अपराधी मैं हूं। स्वामी रक्षा करें।
1: आप रक्षित हैं महाअमात्य, आपके यत्नों से ही हम डूबतों की रक्षा हुई है।
2: तो ये अवंतिका ही आर्या वासुदत्ता है।
3: आर्य, आपके साथ सखी भाव से व्यवहार करते, अगर शिष्टाचार का उल्लंघन हुआ हो तो क्षमा करें।
4: उठो सुहागिन पद्मावती, जो स्वयं दूसरों की हित सेवा में लगा रहा उससे भला अपराध कैसा।
1: मित्र यौखंधरायन, बताओ देवी वासवदत्ता को यूं हटा देने में तुम्हारा क्या प्रयोजन था?
0: कौशाम्बी की रक्षा कर सकूं, मित्र राज्यों की सहायता जुटा सकूं, ताकि आपको विजय लाभ हो सके राजन।
1: और उसे पद्मावती के आश्रय में रखने का क्या तात्पर्य?
0: राजन, इसीलिए कि पुष्पक भद्र आदि भविष्य दृष्टाओं ने कहा था, देवी पद्मावती आपकी रानी होगी और उसी के साथ देवी वासवदत्ता भी आपको प्राप्त हो जाएगी।
1: क्या मंत्री रूमणवान भी इसे जानता था?
0: हाँ राजन, सभी जानते थे।
1: ओ
0: महाराज उदयन, रेभ्य और आर्या वसुधारा को आज ही देवी वासवदत्ता की कुशलता की सूचना के लिए उज्जैनी भेज दे।
1: नहीं, हम सभी देवी पद्मावती के साथ उज्जैनी चलेंगे और हमारे साथ वासवदत्ता भी होंगी।
0: हाँ स्वामी, आज आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई है।
2: और मेरा स्वप्न।

तो ये था नाटक स्वप्न वासव दत्ता का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतरण था। रूपांतरकार थे कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। आकाशवाणी इंदौर की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
2: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
3: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
5: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी। उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ ये है जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह जी। उत्तम जी, बहुत बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में।
1: नमस्कार यूनुस जी, नमस्कार टू ऑल जो उजाला सुन रहे हैं। आप उजाले में सुन रहे हो और हम अंधेरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं।
0: सर, आपकी जिंदगी की जो कहानी है वो बहुत उतार चढ़ाव और संघर्षों से भरी रही है। मुझे लगता है कि शुरू से शुरू करें और एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम आपकी जिंदगी को दोहराने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ पैदा हुए और आपके पिताजी क्या करते थे, यहाँ से बात शुरू करते हैं।
1: जी, बात तो यहीं से शुरू होनी चाहिए जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं। जिंदगानी बहुत लंबी है क्योंकि तो 4.5 साल की उम्र में हमारे दादाजी ने मेरे पिताजी को कहा कि भाई यहाँ तो म्यूजिक ले लो और यहाँ ये घर ले लो। तो पिताजी ने कहा ठीक है। तो अंदर गए, मम्मी को बुलाया, मुझे बुलाया, जो कपड़े पहने हुए थे उससे हम लोग बाहर निकल गए।
0: आप किस शहर में थे?
1: ये लखनऊ की बात है और आई वॉज बॉर्न इन देहरादून।
0: अच्छा, तो ये अलग अलग शहर क्यों थे?
1: देहरादून से सब पूरी फैमिली लखनऊ आ गई थी
0: जी,
1: और लखनऊ में भगवान की कृपा से बहुत बड़ी हवेली थी।
0: अच्छा अच्छा,
1: बहुत खूबसूरत हवेली थी। मुझे आज भी वो हवेली जो है मेरी आंखों में समाई है, ऐसी इतनी बड़ी हवेली थी। उस हवेली में हम लोग रहते थे। बस वहां से मैं 4.5 साल का था जब मुझे याद है, तो पिताजी ने बुलाया तो मम्मी और मेरा हाथ पकड़ा, हम तीनों बाहर निकल गए। और उसके बाद पिताजी, माताजी और हम तीनों शायद हमारे मामा के यहाँ घर गए, मुझे याद नहीं।
0: ये जो निकलने का सिलसिला है, इसकी बुनियाद ये थी कि संगीत को अपनाया।
1: हाँ,
0: और दौलत को ठुकराया।
1: दौलत को ठुकराया, मतलब संगीत चाहिए तो ये घर छोड़ दो और संगीत नहीं चाहिए तो इस घर में रहो। लेकिन संगीत क्यों चाहिए? क्योंकि पिताजी चोरी चोरी जाते थे सितार सीखने।
0: अच्छा, ये लखनऊ की बात
1: है? ये लखनऊ की बात है। और लखनऊ में उस टाइम पे एक बहुत बड़े उस्ताद थे, उस्ताद इलियास खान साहब
0: जी,
1: आपने नाम शायद सुना होगा
0: जी।
1: डैडी हमारे उनके शागिर्द थे और उनके यहाँ सीखते थे, तो उनके अंदर म्यूजिक था, डैडी के अंदर म्यूजिक था, तो बाकी लोगों के म्यूजिक था, लेकिन ऐसा म्यूजिक नहीं था जो हमारे जैसे डैडी मतलब चोरी करके, पैसे चोरी करके भी सीख रहे हैं, वो और फैमिली में किसी के पास आया नहीं। तो वो चीज मुझ में भी आई। और मुझ में डैडी को कैसे पता चली, हमारे पिताजी को कैसे पता चली कि मैं स्कूल जाता था जब लखनऊ में, तो जब वापस आता था तो आई यूज टू सिंग, वो जो प्रेयर होती थी स्कूल की, मैं वो गाता था
0: बाबा।
1: और जब मेरी किताबें देखते थे डैडी, तो उसमें सब लाल इंक से मार्क्स होते थे
0: जी,
1: तो मुझे लगता था सबको ब्लू इंक है, मेरी को मार्क रेड इंक है, कुछ खास बात होगी। बच्चे को कहाँ पता चलता है। तो मैं मतलब फेल ही था, कोई मतलब नहीं था स्कूल जाने का। तो डैडी ने इसलिए वो उसने डिसीजन लिया और उन्होंने छोड़ दिया
0: एक झटके में हवेली से बाहर,
1: एक झटके में हवेली के बाहर, और सीधा उस रात मामा जी के घर में, या कौन सा घर था मुझे याद नहीं, वहां हम लोग शायद 1.5-2 महीना रहे। उसके बाद शायद डैडी ने किराए पर मकान लिया, मुझे याद नहीं। बट इस दौरान में 4.5 साल की उम्र में मुझे उन्होंने सबसे पहले मटका सिखाया।
0: अच्छा
1: जी,
0: क्या बात है।
1: मेरा पहला इंस्ट्रूमेंट जो है लाइफ का वो मटका है।
0: तो पहले आपने मटका बजाया,
1: मटका सिखाया, फिर उन्होंने तबला सिखाया
0: जी जी,
1: फिर उन्होंने मुझे 6 महीने के करीब कथक सिखाया
0: जी,
1: कथक डांस। इस दौरान मुझे उन्होंने थोड़ा बहुत वोकल जो होता है, गाना होता है, थोड़ा बहुत वो भी सिखाया, लेकिन तबले पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। और यहां से हमारी एक यात्रा शुरू हुई,
0: बाकायदा यात्रा।
1: यात्रा गुरुद्वारों की यात्रा, मतलब डैडी सितार बजाते थे, मम्मी बाजा बजाती थी, मैं तबला बजाता था, हम लोग कीर्तन करते थे
0: गुरुद्वारों में, कीर्तन करते थे।
1: और इस
0: कौन से शहरों में आप रहे उस दौरान?
1: याद नहीं, लेकिन बहुत घूमे
0: जी,
1: एक साउथ छोड़ के और बंगाल छोड़ के बाकी बहुत जगह गए हम,
0: पूरे देश में घूमे,
1: आसाम गए, गुजरात गए, महाराष्ट्र में आए, काफी जगह घूमे हम लोग, हर जगह कीर्तन करते थे,
0: गुरुद्वारों में रहते थे, कीर्तन करते थे।
1: डैडी ने एक रायपुर में एक गुरुद्वारे में नौकरी की 1.5 साल
0: जी,
1: 1.5 साल तक हम लोग रायपुर में थे। वहां मेरी बहुत विद्या चली। और आप सोचिए, जिस उम्र में बच्चों को खेलना, पहनना, खाना, बच्चों के शौक, उस उम्र

0: उम्र में मेरे हाथ में तबला था
1: क्या बात है।
0: और उस उम्र में 7-7 घंटे तबले का रियाज होता था।
1: मतलब जितना बच्चा स्कूल में पढ़ता उतना आप संगीत की तालीम ले रहे थे।
0: संगीत की तालीम दे रहे थे मुझे पिताजी।
1: बहुत सख्त थे, डांट मार वाला मामला था?
0: नहीं, प्यार से बहुत सिखाते थे और टीचर बहुत अच्छे थे। हमारे डैडी म्यूजिशियन उतने अच्छे नहीं थे, बट टीचर तो कमाल थे
1: जी।
0: मतलब अगर समझो किसी को पता ही नहीं है कि म्यूजिक क्या होता है, उससे भी वो तबला बजवा देंगे।
1: वाह क्या बात है,
0: ऐसे टीचर। अभी मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ।
1: अच्छा,
0: मैं सिखा नहीं सकता, मुझसे सिखाना नहीं होता। मैं म्यूजिशियन को सिखा दूंगा कि मेरा ये पीस है, मेरा ये गाना है, इसको कैसे बजाना है, वो मैं करवा लूंगा।
1: वो तो मैंने देखा है आपको
0: लेकिन
1: करते हुए।
0: हाँ, लेकिन सिखाना जिसको होता है वो मेरे में पेशेंट नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट टीचर। टीचर इज ए डिफरेंट थिंग। तो हमारे फादर बहुत टीचर थे, हमारे बच्चे जितने भी हैं फादर के गोदी में बैठ के सीखे हुए हैं, कंधों पर बैठ के उन्होंने सीखा। हमारी प्रीति, हमारा जो बड़ा लड़का था अमर, तो जी वहां से जो जर्नी शुरू हुई है, तो वो सीखते सिखाते गाते बजाते, ट्रेनों में चलते, ट्रेनों में उतरते, बसों में चढ़ते, बसों में उतरते, 1960 में बॉम्बे पहुंच गए।

0: उत्तम जी, जब बंबई आप पहुंच रहे थे तो उससे पिछला वाला शहर कौन सा था?
1: वो मुझे याद है, वो अभी भी याद है मुझे
0: जी,
1: अहमदाबाद।
0: ओहो, गुजरात पहुंच गए थे घूमते हुए? मतलब कहाँ, रायपुर फिर अहमदाबाद?
1: गुजरात पहुंच गए थे। गुजरात में शायद एक डेढ़ महीना हम लोग रहे किसी गुरुद्वारे में, और उसके बाद वहां से हम बॉम्बे आ गए थे, क्योंकि डैडी का अल्टीमेट जो टारगेट था वो बॉम्बे था
0: जी,
1: कि बॉम्बे पहुंचना है।
0: उसके पीछे इरादा क्या था?
1: वही तो, उत्तम को वायलिनिस्ट बनाना है।
0: तो पिताजी का मकसद था आपको एक वायलिनिस्ट बनवाना,
1: एक फिल्म इंडस्ट्री का म्यूजिशियन बनाना, क्योंकि डैडी इंडस्ट्री देख के गए थे और उनका ये मन में था, मुझे तो नहीं बोला, उनके मन में था कि इसको बच्चे को यहाँ डालना है इंडस्ट्री में। अब सोचिए कहाँ बिजनेस फैमिली, कहाँ उनकी सोच कि लड़के को यहाँ डालना है। तो आप हैरान होंगे, आप सुनने वालों भी सब हैरान होंगे कि हम 1960 में जनवरी में उतरे, हम लोग
0: जनवरी में
1: हम लोग 11 बजे के करीब ट्रेन से उतरे हैं, और डैडी के एक बहुत खास दोस्त थे, उनकी फैमिली ने जाके हमको छोड़ा, मुझे और मम्मी को छोड़ा, और छोड़ा और उसके बाद वो कहाँ गए डैडी मुझे आज तक नहीं पता, और वो चले गए छोड़ के,
0: बम्बई छोड़ के चले गए,
1: नहीं नहीं घर में छोड़ के चले गए
0: जी जी।
1: और शाम को आए, शाम को वापस आया तो आके बोलते हैं कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो रही है वायलिन की। मैंने कहा डैडी कहाँ? बोलते एक टीचर है फेलिक्स हेरेडिया करके, एले एब्रियो की एक शॉप हुआ करती थी उन दिनों, म्यूजिकल शॉप थी जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स बिकते थे
0: जी जी।
1: तो ये ढूंढते ढूंढते सब वहां चले गए, वहां देखा उनको मिला एक फेलिक्स हेरेडिया करके, तो उनसे पूछा कि मेरा लड़का वायलिन सीखना चाहता है। बोले पहले बजाता है? बोले हाँ क्लासिकल बजाता है, तबला वबला सब उसके अंदर, सुर बहुत है उसके पास। बोले ले आ। तो दूसरे दिन डैडी मुझे लेके गया।
0: उस वक्त आपकी उम्र क्या रही?
1: 12 वर्ष।
0: अच्छा, मम्मी और पापा दोनों का नाम क्या था, और मम्मी की कौन सी याद है उस वक्त की?
1: मम्मी के थे बहुत सी यादें हैं,
0: पहले नाम
1: डैडी के हमारे जो नाम था उनका नाम था ब्रिजपाल सिंह
0: जी जी।
1: तो ज्ञानी उन्होंने पास की थी, उन दोनों में ज्ञानी एक डेस्टिनेशन हुआ करता था
0: जी,
1: हिंदी में
0: जी,
1: जो ज्ञानी जो लोग पास करते थे, तो वो ज्ञानी जैसे आज बीए या एमए है, तो डैडी ने पास किया था ज्ञानी, ब्रिजपाल सिंह ज्ञानी।
0: अच्छा।
1: हमारी माताजी का नाम जसवंत कौर
0: जी जी,
1: और ये दोनों हमारे पिताजी थे सरगोधा से।
0: अच्छा।
1: आज जो पाकिस्तान में है।
0: हाँ।
1: और मदर थी कुजरावाला से, तो दोनों पाकिस्तान के थे उस टाइम पे, तो पाकिस्तान से 47 से पहले ही आ गए थे हम लोग यहाँ पे पार्टी
0: जी जी जी।
1: तो करते कराते यहाँ पहुंच गए, तो 60 में मेरी जनवरी में इस क्लासेस शुरू हो गई थी।
0: कितना मुश्किल था कि एक नया शहर और उस शहर में एक नए

0: टीचर जिनसे सीख रहे हैं आप?
1: जी, डैडी तो पहले आके गए थे बम्बई
0: जी,
1: तो ये जो उनके दोस्त थे बहुत खास, जैसे घर होता है अपने, तो हम लोग उनके यहाँ घर में 2-3 महीने रहे
0: जी।
1: दो तीन महीने ही मैंने इमीडिएटली नेक्स्ट डे मुझे लेके गए और वायलिन थी मेरे पास, उससे उन्होंने मुझे शुरू करवाया सिखाना। तो मैं उनसे शायद 1.5 से 2 साल सीखा हूँ।
0: क्या बात है।
1: और उस 2 साल में उन्होंने एक मुझे पीस सिखाया जिसको पोलका बोलते हैं, पोलका वायलिन में पोलका होता है
0: जी,
1: वो उन्होंने मुझे पीस बजाया। वो पीस मेरे आगे जाके बहुत काम में आएगा, मैं आपको बताऊं,
0: वो कहानी में आगे आएगा।
1: आगे आएगा। तो ये हो गया, ऑलमोस्ट 2 साल में सीखता रहा। इन 2 सालों में यूनुस जी शायद 10 या 12 घर चेंज ही हुआ।
0: बाप रे, 10-12 घर
1: 2 साल में
0: जी।
1: कहीं 1 महीना, कहीं 2 महीने, कहीं 2.5 महीने, कहीं गुरुद्वारों में, बोरी बंदर गुरुद्वारा था वहां रहे, दादर गुरुद्वारे रहे, माटुंगा गुरुद्वारे रहे, लेकिन मेरी प्रैक्टिस नहीं रुकी, वो चलती रही
0: जी।
1: और प्रैक्टिस भी 13.5 घंटे रोज की।
0: बाप रे बाप,
1: ये लोग सुन के बहुत हैरान होंगे।
0: 13.5 घंटे
1: 13.5 घंटे मेरे फादर ने टाइम टेबल बनाया, वो भी सुबह 5:30-6 बजे से शुरू होता, 6 से लेकर शाम को 8-9 बजे तक।
0: ओहो,
1: 3 घंटे 15 मिनट का ब्रेक, 3 घंटे 15 मिनट का ब्रेक, 3 घंटे 15 मिनट का ब्रेक, 3 घंटे खाना खाओ, 3 घंटे फिर 15 मिनट का, रात के लास्ट जो है वो 1.5 घंटे का ब्रेक, 1.5 घंटा प्रैक्टिस करो, उसके बाद खाना खाओ, सो जाओ, क्योंकि सुबह 4:30 बजे उठ के आपको कम से कम 6 किलोमीटर रन भाग के आना है।
0: अरे बाप रे,
1: 4:30-5 बजे।
0: तो कभी 12 साल के बच्चे, कभी ऐसा नहीं होता था कि नीचे खेलें,
1: नहीं
0: बच्चों के साथ खेलें?
1: कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि यही जिंदगी थी। डैडी ने जिस जिंदगी में डाला बस उसी जिंदगी को एडॉप्ट, क्योंकि फादर ने कहा है ना खत्म होगी बात,
0: बस उसके आगे
1: माँ ने कहा है खत्म होगी बात
0: जी,
1: इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना। माँ बाप जो है वही तो भगवान है, तो भगवान का एक असूल होता कि मैंने कह दिया तो तुमने तुमको करना ही है।
0: कितनी सुंदर बात है।
1: कभी भी ये बात नहीं आई कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, व्हाई शुड आई डू दिस, ये वर्ड कभी माइंड में ही नहीं आया।

0: घर में।
1: दो साल निकल गए बम्बई में। 62 में हमारे एक दोस्त हैं जो अभी दुनिया से चले गए हैं, सुरेंद्र राव करके, वायलिन बजाते थे, जिनका लड़का आज संजू राव करके बजाते, उनके फादर।
2: अच्छा वायलिन बजाते हैं।
1: अच्छा वायलिन, हाँ मैं यहाँ बताऊँ, 62 में हम लोग पार्ला में आ गए थे, किराए पर, किराए के मकान में रह रहे थे, और वहां पे वो आया, कहते ये एक रिकॉर्डिंग आई है।
2: अच्छा।
1: रिकॉर्डिंग सुन के डैडी सुन के हैरान हो गए, रिकॉर्डिंग? बोले हाँ रिकॉर्डिंग। तो कहा ये? बोले बॉम्बे लैब में है, मोहम्मद सफी चाचा है जो बड़े डायरेक्टर है, नौशाद साहब के असिस्टेंट है
2: जी,
1: उनकी रिकॉर्डिंग। तो 9 बजे का टाइम, तो हम लोग तो 8 बजे पहुंच गए
2: जी, बिल्कुल।
1: उसकी जो सुबह की जो प्रैक्टिस वैक्टिस सब करके पहुंच गए। 9 बजे शुरू हुआ यूनिस जी, 1 बजे के करीब लंच ब्रेक हुआ, हमने खाना खाया, फिर 2 बजे शुरू हुआ, फिर शाम को 6 बज गए, फिर चाय पिया, और रात को 9 बज के करीब बैकग्राउंड म्यूजिक खत्म हुआ।
2: 12 घंटे
1: उस टाइम पे बैकग्राउंड म्यूजिक 8 घंटे का हुआ करता था।
2: जी जी,
1: 8 घंटे का बैकग्राउंड म्यूजिक विद ब्रेक, तो 13 घंटे हो गए।
2: हाँ।
1: 4 घंटे और या 3.5 घंटे और, तो रात को 9 बज जाते थे आराम से। तो जैसे ही पूरा दिन बजाया, बड़ा अच्छा लगा, ये एक्सपीरियंस नया एक्सपीरियंस बिल्कुल।
2: सिनेमा का बैकग्राउंड म्यूजिक बजा रहे हैं,
1: वो भी
2: मोहम्मद शफी के साथ।
1: मोहम्मद शफी साहब का इतना बड़ा नाम, नौशाद साहब के असिस्टेंट, हम लोग कुछ वायलिनिस्ट थे, कुछ रिदम था, मुझे आज भी याद है, बड़ा रिदम था उनके। और फिर हमने पूछा किसके लिए है, बोलते कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म है।
2: अच्छा।
1: उसके लिए था वो। तो उन्होंने बोला बच्चों एक काम करो, ये संडे को हमारे घर में आओ। तो संडे, समझो आज मंडे है या ट्यूसडे है, तो संडे हम लोग सब सुबह कितने बजे पहुंचे, बस सुबह 8 बजे पहुंच जाओ सब लोग
2: जी।
1: तुम सारे बच्चे 8 बजे पहुंच गए
2: मोहम्मद शफी के घर,
1: मोहम्मद शफी के माहिम में। और वहां जब पहुंचे सब, जाके हम लोग हॉल में बैठ गए। अच्छा हॉल था, बिल्डिंग थी उनकी अपनी, अजमत करके नाम था बिल्डिंग था, या रहमत सब कुछ नाम था बिल्डिंग का, पूरी बिल्डिंग उनकी थी। ऊपर के फ्लोर में हम लोग पहुंचे, बाहर बैठे हुए थे, तो इतने में एक कोई इंसान आए
2: जी,
1: हमको पता नहीं कौन है, हम सब किस

0: को कोई पता नहीं, वो बच्चों को कि वो कौन है। तो आके कुर्सी में बैठ गए, तो सभी से बाहर आया, हाँ पीटर आ जा आ जा। उनका नाम पीटर था, बहुत बड़े वायलिनिस्ट थे,
1: फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हस्ती
0: बहुत बड़ी हस्ती।
1: जी।
0: तो उन्होंने, हाँ पीटर आ जा।

0: एक पीस, हम 7-8 वायलिन वाले थे, सबके सामने वो पीस कहा, ये जो तुमने बजाई
1: नोटेशन रख दिया,
0: पीटर साहब को सुनाओ। तो 1 2 3 4 में चौथे में था, 5 6 7 8 हो गया या 9 हो गया, 8 हो गया, जो भी था याद नहीं। तो उसने अकेले ने बजाना शुरू किया, दूसरे ने बजाया, तीसरे ने बजाया। आप हैरान होंगे यूनुस जी, मेरे सामने अंधेरा था, मेरी आंखों के सामने कुछ नहीं था, ना नोटेशन, ना कोई बैठा हुआ है, कुछ मुझे नजर आया। और मैं इतना नर्वस हो गया, इतना डर गया, मैं चाचा समझ गया। उन्होंने बोला हाँ तू मेरे से फट से आ, तुम बजाओ। और मैं नहीं बजा सका उससे।
1: अरे बाप रे,
0: आई कुड नॉट प्ले, मैं नहीं बजा सका उससे। मैं, मुझे हुआ क्या? शाम को नीचे चले गए, फिर चाचा ने कहा कि तुम रोज आना है यहाँ, पीटर प्रैक्टिस कराएंगे। तो हम लोग आते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। फिर उन्होंने मुझे कहा, थोड़ी लंबी है स्टोरी,
1: बिल्कुल,
0: तो उन्होंने कहा कि पिताजी को लेके आना। तो मैं पिताजी को लेके, एक बड़ा अच्छा चैप्टर भूल गया
1: जी,
0: कि जब उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक खत्म किया तो उन्होंने 10-10 रुपए दिए,
1: उस जमाने के हिसाब से बड़ी रकम थी,
0: 10 रुपए पूरे दिन के। तो सबको 10-10 रुपए दिए, तो 10 रुपए देख के ही हम सब लोग ऐसे हो गए। और मुझे किनारे थोड़ा कॉर्नर में बुला के 5 रुपए और दिए,
1: तो 15 हो गए।
0: मुझे 5 रुपए और दिए, तो मुझे बोला ये 5 रुपए जो दे रहा हूं ना, ये अपने पिताजी को बोलना कि तुम्हें शर्ट ले देंगे।
1: ओ
0: शर्ट फटी होगी
1: जी, जी
0: जाने
1: जी जी।
0: तो मैंने घर में जाके बोला 15 रुपए, तो 15 रुपए की कमाई एक दिन में, मतलब आज का 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया एक दिन की कमाई हो गई, बहुत बड़ी बात,
1: इतनी बड़ी रकम
0: कहाँ 15 रुपए। तो डैडी को मैं कहा, डैडी ऐसा ऐसा उन्होंने बोला है। तो मम्मी को 10 रुपए दिए, जो पैसे दिए, गुरु जी को मथा टेका कि आज बच्चे की पहली कमाई आई है
1: 12 बरस की उम्र में,
0: नहीं 14 बरस हो गया।
1: अच्छा
0: 62
1: जी जी,
0: 14 बरस
1: जी।
0: लेकिन जो 2 साल जो मेहनत की उसकी ये कमाई थी, पहले दिन की कमाई थी। तो डैडी मुझे नेक्स्ट डे बोले चलो उठो, चलो चलते हैं। कहा चलो ना, निकल पड़े। तो पार्ला में रहते थे, पार्ला से हमने ट्रेन पकड़ी, दादर गए। दादर के ब्रिज के ऊपर आज भी कपड़े बिकते हैं। तो डैडी ने 5 रुपए में 3 शर्टें खरीदी,
1: गजब,
0: 2 मेरे लिए एक अपने लिए, और मुझे लगता है शायद अपने 2 या 3 साल पहनी वो शर्ट।
1: क्या बात है।
0: तो उसके बाद फिर चाचा ने कहा कि पिताजी को लेके आना, तो मैं डैडी को लेके गया। बोले इसको, लड़के को आप बाबा जी क्या, रामप्रसाद जी क्या डालो।
1: रामप्रसाद जी यानी आज के जमाने के बहुत बड़े संगीतकार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल जी के पिताजी,
0: प्यारेलाल जी के
1: ट्रम्पेट बजाया करते थे,
0: ट्रम्पेट बजाया करते थे। और इतने बड़े टीचर थे वो, इतने बड़े टीचर थे वो, इतने, जैसे जो चीज आप सुना करते हो ना, वो हमने महसूस की है और हमने उसको सीखा है, हमने उसको जिया है, हमने
1: जी। कोई उनका नाम नहीं लेता था, उनको बाबा जी बोलते थे,
0: बाबा जी बोलते। नहीं तो अदरवाइज पुराने जमानों में क्या होता था कि जो गुरु होता था वो खिलाता भी था, पिलाता भी था, रहायश भी रखता था और सिखाता भी था
1: जी।
0: ये बाबा जी थे हमारे,
1: और आप उनके सबसे महत्वपूर्ण शिष्य बने।
0: महत्वपूर्ण शिष्य था, और मैं बाबा जी से 6 महीने के करीब सीखा हूँ।
1: बहुत सख्त थे वो,
0: दूसरों के लिए,
1: आपके लिए नहीं,
0: मेरे लिए।
1: वो आपको अपना लाडला बच्चा कहते थे,
0: लाडला बच्चा भी कहते थे, और मुझे राम सिंह कहते थे।
1: अच्छा।
0: ये कहते ये मेरा राम सिंह है।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: क्योंकि उस टाइम पे राम सिंह का बहुत बड़ा नाम था।
1: हाँ।
0: राम सिंह एक बहुत बड़े अरेंजर हुआ करते थे। राम सिंह जी सैक्सोफोन बजाते थे। इंडस्ट्री में सैक्सोफोन ऑब्लिगेटो में कैसे बज सकता है, ये उनकी देन है,
1: राम सिंह जी की देन है जी।
0: और वो ऐसे थे कि आप समझो एक ऑर्केस्ट्रा बज रहा है और साथ साथ में लिख रहे हैं
1: नोटेशन
0: लिख रहे हैं।
1: गजब।
0: और वो तो आपका ऑर्केस्ट्रा खत्म होगा, उनकी नोटेशन खत्म हो जाएगी।
1: ये रफ्तार
0: थी, जैसे
1: टाइप कर रहे हैं,
0: टाइप करते ना, जैसे स्टेनो जो शॉर्ट फॉर्म ऐसा ऐसा लिखते थे वो
1: जी।
0: तो बाबा मुझे हमेशा ये कहा करते थे, ये मेरा राम सिंह है।
1: वाह।
0: सबको कहते थे तुम लोग जो मर्जी बनो, बट ये मेरा राम सिंह है।
1: तो आप उनकी आंखों के तारे बन गए थे,
0: जो भी था
1: उस वक्त। प्यारेलाल जी,
0: प्यारे जी का बहुत बड़ा नाम था।
1: अच्छा।
0: बहुत बड़े वायलिनिस्ट, बहुत बड़े अरेंजर, और उनकी फिल्म भी आ गई थी परसवानी।
1: हाँ, 63 में आ गई थी।
0: 63 में आ गई थी। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बहुत बड़ा नाम था, और प्यारे पे वैसे भी बहुत बढ़िया लाजवाब वायलिनिस्ट थे। उनके जो वायलिनिस्ट के गुरु थे वो एंथोनी गोंसाल्विस थे
1: जी, एंथोनी गोंसाल्विस,
0: जिनसे 2-2.5 महीने मैं भी सीखा हूं।
1: अरे बाबा,
0: मैं भी उनके पास गया था। तो बाबा जी से 6-6 महीने करते करते चाचा जी के साथ काम करता रहा, और सफी चाचा ने मुझे एक

0: ऐसा मौका दिया जो आमतौर पे किसी को दिया ही नहीं जाता। आमतौर पे किसी को भी ये चीज नहीं मिलेगी। उन्होंने एक फिल्म आई थी जिसका वो बैकग्राउंड कर रहे थे, उस बैकग्राउंड म्यूजिक का पूरा कंडक्टिंग उससे करवाया, 90 म्यूजिशियन,
1: अरे बाप रे, और आपकी इतनी कम उम्र।
0: इतनी कम उम्र, ये शायद 63 64 की बात है। मुख्तार करके कोई एक्टर थे बहुत बड़े,
1: जी, शेख मुख्तार।
0: शेख मुख्तार, उनकी फिल्म थी वो,
1: वाह,
0: 6 फुट के थे, छह
1: हाँ वो
0: सवा दो
1: थट्टी कट्टे।
0: हटे कट्टे, उनकी फिल्म थी वो। इनका बैकग्राउंड म्यूजिक चाचा कर रहे थे। वो बैकग्राउंड म्यूजिक 7 दिन हमने लिखा, 7 दिन चाचा ने कंपोज किया, और एक हमारे साथ और भी थे वो लिखा। हमने उस 7 दिन के बाद हमने वो म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म सेंटर में मैंने कंडक्ट किया। आप सोचो कि इंडस्ट्री का टॉप नोच जो म्यूजिशियन है वो बैठा हुआ,
1: और एक बच्चा कंडक्ट कर रहा है।
0: एक बच्चा कंडक्ट कर रहा है,
1: बाप रे,
0: 15 16 साल की उम्र।
1: कमाल।
0: वहां से एक कंडक्टिंग चाचा ने मुझे दी। एट द सेम टाइम एक फिल्म का बैकग्राउंड कर रहे थे सभी चाचा, नौशाद साहब का।
1: जी
0: तो हम सब बजा रहे थे, मैं सर थर्ड रो में बैठा हुआ था, बजा रहा था। तो मुझे ऐसे बोला है, तो बाहर लेके गए, सोलो बजाएगा।
1: वाह वाह,
0: सोलो बजाना इतने बड़े बड़े म्यूजिशियन? मैंने कहा हाँ चाचा बजाऊंगा। तो 64 की कोई एक फिल्म है नौशाद साहब की, जिसमें वो छोटा सा मेरा सोलो है,
1: कौन सी फिल्म है?
0: वो मुझे याद थी। क्योंकि क्या होता था कि नौशाद साहब और एक ऐसे म्यूजिक एक्टर थे जिनके बैकग्राउंड म्यूजिक जो है फिल्म नहीं हुआ करते थे,
1: जी।
0: सब टाइमिंग पर फिल्म हुआ करते थे, टाइमिंग पर
1: अच्छा,
0: बैकग्राउंड म्यूजिक हुआ करता था। यस, आज जैसे हम फिल्म देख के म्यूजिक करते हैं ना,
1: हाँ, वो ऐसा नहीं होता
0: ऐसा
1: था।
0: नहीं होता था।
1: गजब। तो 64 में किसी फिल्म में आपने
0: हाँ,
1: बजाया?
0: तो वो सोलो बजाए, वो मेरा पहला सोलो था।
1: वाह वाह,
0: आप देखिए, वो एक अंधेरा सामने छा गया,
1: हाँ
0: मैं 8 10 लोगों में नहीं बजा सका, और ये 64 में इंडस्ट्री के सब बड़े बड़े नाम,
1: क्या बात है,
0: जेरी फर्नांडिस, ऑस्कर परेरा, पीटर साहब भी उसमें थे,
1: वाह।
0: पीटर साहब और दोराडो साहब, बड़े बड़े नाम, और बैठे उसके सामने मैं खड़ा होकर बजा रहा हूँ। वो जो सोलो बजाया यूनुस जी, वो आज तक बजा ही रहा हूँ,
1: गजब गजब, क्या बात है।
0: आज तक बज रहा है। और फिर उसके बाद मुझे बाहर जब बजा लिया, तो मैं केरसी, मुझे बोलते केरसी उत्तम तूने बजाया तो ठीक है, फील नहीं है।
1: केरसी लॉर्ड बोल रहे हैं?
0: ये
1: ओहो
0: 64 की बात है,
1: जी, अब
0: अब फील ही फील है।
1: ये कहां से आया?
0: ये लग गई मेरे बात, मैंने कहा हाँ फील क्यों नहीं है।
1: हाँ
0: पहला सोलो था,
1: जी
0: फिर उसके बाद तो पंचम के यहाँ सारे सोलो मेरे हैं,
1: जी
0: मदन साहब के यहाँ, नौशाद साहब के यहाँ, पाकिजा, ये सब सोलो मेरे हैं।
1: बिल्कुल,
0: फिर एक मतलब इंडस्ट्री में ऐसा हुआ कि आ गया है कोई,
1: एक वायलिनिस्ट की
0: समबडी इज देयर,
1: एंट्री हो गई है।
0: समबडी इज देयर।
1: जी, बहुत ही प्यारी यादें आप हमारे साथ बांट रहे हैं कि 12 बरस की, 14 बरस की उम्र और 90 म्यूजिशियंस को आप कंडक्ट करते हैं और ये तमाम चीजें हैं। हम 63 64 के जमाने में हैं, तो मुझे लगता है यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं। नौशाद साहब का कोई गाना सुना जाए, आप बताएंगे कौन सा गाना सुने?
0: 1960 में फिल्म आई थी मुगले आजम, और उसका जो गाना है वो हम लोग जब फिल्म देखने गए तो हाँ क्या मतलब, हमारा हाथ जो था छाती पर था, ये कैसे कर सकते हैं ऐसा, ऐसा का
1: जी,
0: हम लोग सब यही होते थे, यार ये ऐसा काम कैसे हो सकता है,
1: करिश्माई
0: कौन
1: का में।
0: करिश्मा ही का। और वो गाना देखिए, 1960 का जो गाना है रिलीज हुआ, बना तो शायद 56 57 में बना होगा या 58 में बना होगा,
1: हाँ,
0: जब प्यार किया तो डरना क्या।
1: क्या बात है, क्या बात है, ये गाना सुनते हैं।
0: इस गाने को सुनते हैं।

0: कहानी को थोड़ा फॉरवर्ड करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आपने यहां मुगले आजम का जिक्र कर दिया है और मुझे ये पता है कि आपका एक मुगले आजम कनेक्शन है। मैं कहानी नहीं बताता, आप ही बताइए कि आपका एक मुगले आजम कनेक्शन है और वो बहुत शानदार है और बहुत कम लोगों को पता है।
1: देखिए जी, ये भी भाग्य की बात है कि एक टाइम तो हम मुगले आजम देख रहे थे और तरस रहे थे, वो सोच रहे थे कि ये काम कैसे कर सकते हैं, और वही मुगले आजम 2003 में
0: कलर होके आती है
1: और पता चलता है कि उसकी रिकॉर्डिंग कोई और कर रहा है, तो नौशाद साहब के कानों में गया, तो ये कैसे हो सकता है, मैं तो हूं अभी। नौशाद साहब बोल रहे हैं मैं तो हूँ और राइट्स भी मेरे पास है। तो फिर वो सब जो बातें हुई वो फिर हमारे पास आई, तो नौशाद साहब ने कहा कि उत्तम मुगले आजम आई है, कलर हो रही है और उनको स्टूडियो करना है,
0: पूरा म्यूजिक मतलब गाने भी और बैकग्राउंड
1: सब, सब सब सब सब सब कुछ स्टूडियोफोनिक करना है, तो मतलब वही
0: भव्यता
1: चाहिए, वो ट्रैक चाहिए। तो हमारे पास मुगले आजम में सिर्फ एक ट्रैक
0: जी, बिल्कुल,
1: उस ट्रैक में डायलॉग भी, उस ट्रैक में गाने भी, उस ट्रैक में बैकग्राउंड म्यूजिक भी, उस ट्रैक में साउंड इफेक्ट भी
0: सारे हैं,
1: और उस ट्रैक में
0: हिसिंग भी है,
1: ये चल रही है।
0: अरे बाप रे,
1: 1960 की पिक्चर है, इसको कहां से निकालोगे। तो जो प्रोड्यूसर थे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार ये साउंड कहते हैं, मैं आपको अमेरिका से ठीक करवा के निकालता हूं। तो उन्होंने अमेरिका भेजे सारे साउंड, साउंड ठीक हो क्या है, लेकिन जब हम बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे हैं तो देख रहे थे वो साउंड चल रहा है। उन्होंने 50% कम कर दिया था,
0: जी जी
1: 50% अभी भी था। वो 50% कुछ 7 या 8 दिन बैठ के, मैंने अपने टेक्नीशियन के साथ बैठ के, उसका नाम है तनय गज्जर, जो आवाज स्टूडियो का मालिक था,
0: जी जी,
1: उसके साथ बैठ के वो साउंड पूरा क्लीन किया। पहले 7-8 दिन ये गए
0: जी,
1: उसके बाद में, क्योंकि उस टाइम पे सब लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, हमने सबका बैठ के एक एक गाने का क्लिक बनाया।
0: बाप रे,
1: आप सोचिए क्लिक बनाने में कितना टाइम गया होगा हमारा पूरा। जब क्लिक बना तब एक एक गाने का नोटेशन लिखा गया
0: जी।
1: अच्छा, अब नोटेशन तो लिख लिया गानों को, क्योंकि गाने हैं, पता चल रहा है गाने क्या है, सबको पता है गाने, लिख लिया। अब बैकग्राउंड म्यूजिक जब कुछ सुनने जाओ तो डायलॉग है, डायलॉग के पीछे क्या बज रहा है। ये बहुत बड़ा काम था, यहाँ पे आज का बहुत बड़ा

0: एलिस्टर शो का, इसका नाम है प्रकाश वर्मा।
1: मैं जानता हूँ।
0: मैंने कहा प्रकाश आ जाओ, ये अपने को लिखना है। पूरा स्कोर लिखा गया,
1: बैकग्राउंड का पूरा,
0: बैकग्राउंड का पूरा स्कोर लिखा गया है।
1: ओ गॉड,
0: उसको कम से कम मुझे लगता है 1.5-2 महीने लग गए।
1: और गानों के नोटेशंस करने में
0: भी,
1: क्योंकि
0: वो भी, हाँ, वो
1: अलग
0: भी
1: अलग इंस्ट्रूमेंट के नोटेशन होंगे कि वायलिन के ये हुए, वायोला के हुए।
0: अब हमने क्या किया कि नौशाद साहब ने उस टाइम पे अगर 120 म्यूजिशियन यूज किए तो हमने फिर से 120 म्यूजिशियन यूज किए।
1: इतने म्यूजिशियन किस स्टूडियो में समाए?
0: पार्ट बाय पार्ट।
1: अच्छा,
0: उस टाइम तो लाइव थे
1: जी, यहाँ तो अभी ट्रैक थे।
0: और इस मुगल आजम के दौरान हमने 12 वायलिन, 6 वायोला, 4 चेलो और 2 बेस, ये हमने मद्रास से मंगाए थे।
1: बाप रे बाप रे,
0: ये हमने मद्रास से म्यूजिशियन आए यहाँ रहे 7 दिन। 7 दिन ये पूरा रिकॉर्डिंग बजाई उन्होंने अपने पार्ट्स,
1: गजब।
0: खाली वायलिन के पार्ट, वायलिन वो चले गए, फिर फ्लूट आया, फिर ये आया, फिर रिदम आई, फिर सितार आई, फिर तबला आया। ये करते करते करते हमको ऑलमोस्ट 4-5 महीने लग गए इसको।
1: तो मतलब साल भर का काम था ये कुल मिला के,
0: आराम से।
1: और पूरे गाने रिक्रिएट किए गए,
0: पूरे,
1: लेकिन गायक की आवाज सेम रखी गई।
0: गायक की आवाज, म्यूजिक भी वही, सब कुछ वही। आपको, आप अभी सुनो तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये कहीं कुछ हमने ऐड किया है।
1: मैंने वो सीडी सुनी हुई है जो स्टीरियोफोनिक, जो डॉल्बी आप लोगों ने किया था,
0: जी, जी।
1: उसकी जो भव्यता है, उसका जो साउंड है, गूस बम्स आ जाते हैं। मुझे याद है कि मोहे पनघट पे के पहले पूरे सितार के पीसे थे, बहुत लंबा पीस है,
0: बहुत लंबा,
1: 2.5-3 मिनट
0: सारे किए हुए
1: जी।
0: सितार के ऊपर सितार बजी, तबले के ऊपर तबला बजा, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि दो सितारे बज रही है। वो रखा हुआ पहले का,
1: हाँ हाँ, उसी के ऊपर बजा दिया,
0: उसी के ऊपर बजा हुआ। आप सोचो क्या सिंक किया होगा, कितना सिंक होगा, कितना माइन्यूट काम है।
1: जैसे, इस तरह से,
0: जैसे पेंटर माइन्यूट काम होता ना, ये उससे भी ज्यादा माइन्यूट है।
1: इस तरह से मुगले आजम का म्यूजिक रिक्रिएट हो गया,
0: रिक्रिएट हुआ। और अच्छा, मजे की बात ये है, देखिए मुगले आजम बनी थी 10 साल में, और उस टाइम पे मुगले आजम के ऊपर 1,60,00,000 रुपया खर्चा हुआ था
1: जी,
0: उस टाइम पे। मतलब आज का तो 2-3 हजार करोड़ हो गया वो,
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए पिक्चर रिलीज हो गई, पिक्चर हिट हो गई, बहुत हो गया। अब जब बननी शुरू हुई तो फिर करोड़ों खर्चा। अभी ये जो मैं आपको म्यूजिक बता रहा हूँ, इसके ऊपर 1 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है
1: जी, जी।
0: बकायदा बिल्स हैं हर चीज के, 1 करोड़ रुपया पूरा म्यूजिक के ऊपर। और उसके बाद में जो उन्होंने कलर किया वो तो सब जो है सो है
1: जी।
0: मतलब तो उस टाइम पे भी खर्चा हुआ था, आज भी खर्चा हुआ, उस टाइम भी कमाया था, आज भी कमाया उन्होंने।
1: ऐसी ऐसी लेजेंडरी फिल्म,
0: आज भी अगर 6-7-8 करोड़ खर्चा किया है तो उन्होंने 40 करोड़ कमाया वापस। और देखा कि उन्होंने यंगस्टर्स ने
1: जी, बिल्कुल अलग जनरेशन थी,
0: अलग जनरेशन ने पूरी फिल्म देखी और फिल्म को एंजॉय किया।
1: तो जब भी आप मुगले आजम का ये जो कलर वर्जन डॉल्बी डिजिटल देखें तो ये जरूर याद करें कि उत्तम जी ने ये सारा म्यूजिक रिक्रिएट किया है और ये साल भर की मेहनत का नतीजा है। एक और गाना मुगले आजम का हो जाए,
0: बिल्कुल हो जाए। वो जो लास्ट गाना रफी साहब का गाना बजाइए,
1: जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद।
0: क्योंकि क्या है, उसमें नौशाद साहब ने बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा यूज किया,
1: बहुत बड़ा। वो जिस तरह से ऊपर जाता है, वाह वाह, कुमार साहब पर फिल्म आया गया,
0: ये सुनाइए,
1: सुनते हैं।

0: देखिए, बातों को थोड़ा फ्लैश फॉरवर्ड इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये जो मुगले आजम का रिक्रिएशन है ये बहुत कम लोगों को पता है
1: जी जी
0: कि ये संगीत आपने
2: तो यहाँ मैं एक बात बता दूं, इस दौरान जो है ना मेरा जो लड़का है गुरमीत
0: जी,
2: उसका 60% उसका हाथ है इसके अंदर।
0: जी जी जी
2: सारा जो इंस्ट्रूमेंट्स की डबिंग है, वायलेंस की डबिंग है, वो सब लिखना, वो सब उसने किया हुआ है। बात बाकी जो काम तो फिर मैंने मिक्सिंग वगैरह करवाई।
0: जी जी
2: जी
0: क्या बात है। वापस चलते हैं 1964 के जमाने में जब आप कंडक्ट तो करने लगे थे और सोलो पीसेस भी बजा रहे थे। इस दौर में दो बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स से आपकी मुलाकात का जिक्र हम सुनना चाहेंगे, एक तो नौशाद साहब और दूसरे मदन मोहन जी।
2: देखिए जी, नौशाद साहब क्या थे, उनके घर में तो मैं घुस गया था क्योंकि
0: हाँ।
2: मोहम्मद साफी साहब थे
0: जी,
2: लेकिन उनके साथ कभी ऐसे डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई। नौशाद साहब के साथ डायरेक्ट मुलाकात जो हुई है वो 72 की बात है।
0: इतना लंबा समय निकल गया
2: जी, क्योंकि साफी साहब काम करते थे, हम लोग बजाते थे
0: जी।
2: जैसे मैं म्यूजिशियन था वैसे सब दुनिया के म्यूजिशियन सब बजाते थे हम लोग। 72 में चाचा ने मुझे कहा तुम घर आओ। मैं घर गया
0: जी,
2: चाय पीने, चाय पीते हैं, चलो मेरे साथ। तो उनकी गाड़ी में वो आए तो कार्टर रोड में नौशाद साहब के घर आ गए। मैं कहा ये तो नौशाद साहब का घर है,
0: आशियाना
2: आशिया। मैं कहा चाचा यहाँ क्या, चलो चलो बताता हूँ। अंदर चले गए, रूम में बैठ गए, नौशाद साहब ऊपर से आए, बोले आओ सभी मियाँ, किसको ले आए, इसको किसको ले आए, ये कौन है? देखा तो हुआ इसको, अपनी रिकॉर्डिंग बजाता है ना, शायद वायलिन बजाता है। हाँ जी वायलिन बजाता है। तो क्यों लाए उसको यहाँ पे? मैं इसलिए लाया हूँ कि आज से ये आपके साथ काम करेगा।
0: गजब।
2: क्योंकि मैं अब मेरे से काम नहीं होगा, मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगा, आज से उत्तम आपका काम करेगा। तुमको इतना भरोसा है इस पर? बोले हाँ जी बिल्कुल भरोसा, कर लेगा ये पूरा काम? बोले हाँ। वो पहली मुलाकात थी।
0: वाह वाह वाह, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही।
2: नौशाद साहब सामने बैठे हुए, चाचा बैठे हुए, मैं बैठा हुआ। तो बोले ठीक है तो इसको कल सुबह भेजो। दूसरे दिन जब मैं गया तो उनकी एक जगह थी, वो बैठते थे, एक सामने कुर्सी थी
0: जी जी,
2: जैसे आप बैठे हैं ऐसे मैं बैठा हूँ, तो ऐसे वो कुर्सी मैं लास्ट तक बैठा उनके साथ।
0: आज भी है वो उसी जगह?
2: आज भी वो कुर्सी, और उस कुर्सी पर
0: रफी साहब भी बैठते थे,
2: बड़े बड़े सिंगर बैठे हैं
0: जी,
2: गुलाम अली साहब से ले आमिर खान साहब से लेकर प्रसुल्ले साहब के, रफी साहब, लता जी, आशा जी।

0: अब उस कुर्सी पे बैठते, वो कुर्सी मेरी सामने लिखते थे, मैं बैठा जी आओ उत्तम, आओ उत्तम साहब, ये बड़ी खूबसूरत वाक्य है,
1: जी जी
0: तहजीब और इज्जत
1: जी,
0: ये अगर किसी से सीखनी है ना तो नौशाद साहब से।
1: क्या बात है,
0: मैंने उनको कभी तू बोलते नहीं सुना,
1: जी
0: कभी तुम बोलते नहीं सुना, तो मुझे उत्तम साहब, तो मैं उनको जी, नाम तो मैं उनका ले नहीं सकता था, तो जी जी जी करके बात करता था, या अंकल बोल देता था। कल सफी मियाँ आपको छोड़ के गए और कह गए कि आप मेरे साथ काम करेंगे, मैंने कहा जी अगर आप इस लायक समझते हैं तो। क्या लोगे रिकॉर्डिंग का, मैंने कहा जी आप जो दे देंगे। नहीं नहीं नहीं आप बताओ क्या लोगे, ये देखिए ये बात है 72 की,
1: जी जी
0: क्या उम्र होगी मेरी, 48 58 68, 24 साल की उम्र,
1: जी जी
0: 23 24 के।
1: जी
0: तो मैंने कहा अंकल मैंने सुना है संगीतकारों में सबसे बड़े आप थे और सबसे ज्यादा पैसे भी आपने लिए,
1: जी
0: और आपने जो पैसे लिए वो तो किसी ने नहीं लिए। हंस पड़े, बोले हाँ सही बात है। मैंने कहा मैं चाहता हूं कि अरेंजरों में सबसे ज्यादा पैसे मैं लूं।
1: अरे बाप रे,
0: हाँ उनको ये नहीं लगा कि अपने ऊपर आ जाएगा लड़का।
1: हाँ
0: तो मैंने कहा अंकल 750 रुपये रखेंगे आने का।
1: हाँ,
0: वैसे उस टाइम पे 200 250 300 रुपये में काम कर रहे थे लोग,
1: तो ये 3 गुना मांगा,
0: 750 में आ गए
1: जी।
0: बोले ठीक है,
1: 750 रुपये एक गाने
0: एक
1: की।
0: गाने का।
1: गजब।
0: बोले ठीक है। और यूनुस साहब ये दिन आया कि प्रोड्यूसर को बोलते थे कि वो उत्तम से बात कर लो, वो जो बोलेगा वही करना।
1: वाह,
0: और 35 साल मैंने उनके साथ काम किया।
1: बाप रे, 35 साल नौशाद साहब के साथ
0: साथ
1: काम करना, मतलब एक पूरे युग को जीना।
0: पूरा युग को जीना। और आप सोचिए कि इन 35 सालों में हम हाँ कितना नजदीक आ गए होंगे, कितना
1: जी
0: समझते होंगे एक दूसरे को। जब मेरी लड़की प्रीति उनके यहाँ गई सीखने के लिए,
1: अच्छा
0: हाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बड़ा कनेक्टेड वाक्या है
1: जी,
0: तो प्रीति बोले डैडी मुझे अंकल के पास ले चलिए, अबू के पास
1: अबू
0: ले चलिए। मैं ले गया, वो इतना उनका आपस में प्यार हो गया कि इस प्यार की वजह से मैं उत्तम साहब नहीं रहा, मैं उत्तम हो गया।
1: वाह वाह वाह वाह, प्रीति की वजह से ही हुआ।
0: प्रीति की वजह से, मतलब अब तक वो मुझे उत्तम साहब बोल रहे थे, प्रीति आ गई, वो इतना प्यार हो गया इनमें, इतना वो मतलब वो अबू और प्रीति, अबू प्रीति। और उस दौरान मैंने एक दिन देखा कि मुझे उत्तम करके बुला रहे हैं। उत्तम कहाँ है, मैं कहा बड़ा अच्छा लगा। बुजुर्ग जब
1: नाम लेके पुकारते
0: हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
1: जी जी,
0: क्योंकि मेरे डैडी भी मुझे उत्तम जी बोलते थे, मम्मी भी मुझे उत्तम जी बोलते थे।
1: हाँ।
0: पता नहीं क्या बात है।
1: अरे
0: हाँ पता नहीं, आई डोंट नो, उत्तम जी आ गए बेटा।
1: वाह।
0: तो उस दिन से मैं उनके लिए उत्तम हो गया और फिर उनके जनाजे तक मैं साथ में था।
1: जी, नौशाद साहब की और बहुत सारी बातें हम शेयर करेंगे, यहाँ पहले उनका एक गाना सुनते हैं। अभी मदन मोहन जी वाली बात बाकी है, उसको
0: नहीं,
1: इस
0: पहले नौशाद साहब का एक गाना सुना दीजिए जो मेरा उनके साथ पहला गाना है।
1: जी,
0: माई फ्रेंड का गाना है वो।
1: हाँ हाँ,
0: रफी साहब का गाया हुआ गाना है, नैया मेरी बहती जाए, ये मेरा पहला गाना उनके साथ।
1: वाह वाह वाह, ये सुनते हैं, उसके बाद
0: ये सुनिए, उसके बाद फिर हम मदन साहब के ऊपर चलते हैं।

0: नौशाद साहब की बातें तो और होंगी, ये गाना हमने सुना। एक बहुत दिलचस्प वाकया है मदन जी से मुलाकात का,
1: जी जी,
0: जो वैसे हमारी आपकी मुलाकातों में आपने सुनाया है। हमारे सुनने वालों को ये वाकया सुनाइए जिस किस्सा गोई के साथ आप सुनाते हैं।
1: जी जी, ये शायद 1963-64 की बात होगी
0: जी,
1: जब उनके यहाँ डैडी 2-3 दफा लेके गए, मुझे मिले नहीं।
0: हाँ, बहुत बिजी थे,
1: बिजी रहते थे, और उस टाइम पे म्यूजिशियंस जाते थे सुनाने तो मोस्टली लोग सुनते नहीं थे। तो एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, चौथी बार चांस मिल गया, मदन साहब मिल गए बाहर। उनके असिस्टेंट थे सूरी साहब करके,
0: जी जी,
1: वो बाहर बैठे हुए। तो डैडी ने कहा कि हम लोग आए हैं तो चाहते हैं कि लड़के को सुन ले। बोले ठीक है। तो सूरी साहब अंदर गए तो 5 मिनट के बाद हमको बोला जाइए। तो मैं वायलिन लेके, हम दोनों बाप बेटा अंदर चले गए, नमस्ते की उनको, हाँ जी आइए बैठी, बैठ गए हम लोग। आप कौन है? तो डैडी ने बोला मेरा नाम सो एंड सो है। ये कौन है? बोलते इज माई फादर, मेरे डैडी बोलते हैं उनको,
0: इज
1: माई फादर। तो मदन साहब को अच्छा नहीं लगा। व्हाट डू यू मीन? सर वो कहते हैं ना, चाइल्ड इज ए फादर ऑफ ए मैन।
0: ओ
1: यू मीन दैट? यस। हाँ क्या करते हैं? ये वायलिन बजाता है। अच्छा सुनाओ। तो मैंने वायलिन खोली और वही पोलका बजाया जो मुझे टीचर ने सिखाया। तो फेलिक्स
0: की दास्तान आप पहले बता चुके हैं,
1: फेलिक्स हेरिडे साहब ने वो पोलका सिखाया था
0: जी।
1: वो पोलका कुछ 9-10 मिनट का है, और वो पोलका ऐसा है कि इसमें कंप्लीट वायलिन आ जाती है। तो वो सुनते रहे
0: जी,
1: क्योंकि संगीतकार थे, उन्होंने सब देखा हुआ था। सुनते रहे 10 मिनट के बाद में जब मैं ऐसे, मुझे देखते रहे, मुझे वो उनकी आंखें मुझे आज भी याद है, मुझे देखते रहे। फिर डैडी ने कहा कि गाना सुनाओ। तो मदन साहब का कौन सा गाना है मुझे याद नहीं, बट मैंने मदन साहब का गाना बजाया।
0: गजब।
1: ये पोलका के बाद मैंने उनका गाना बजाया।
0: वाह।
1: और गाना बजाने के बाद हम लोग बाहर आए। यूनुस जी आप सोचो कि वो दिन गया और उनका लास्ट गाना दिल ढूंढता है, आई वॉज कंडक्टिंग।
0: क्या बात है। मतलब 1964 में जब आप 16-17 बरस के रहे होंगे, तब से लेकर आखिर 75 तक उनका साथ रहा।
1: सबसे पहला नाम उनकी लिस्ट में मेरा होता था
0: जी, क्योंकि दिल ढूंढता है मेरा ख्याल है 1975 में आई थी ये फिल्म।
1: तो
0: मौसम,
1: हाँ, इसी दौरान मैं एक रिकॉर्डिंग बजा रहा था उनकी। तो उस टाइम पे केसी ने भी छोड़ दिया था, मास्टर जी ने भी छोड़ दिया था।
0: मास्टर जी यानी सोनिक जी,
1: सोनिक साहब। हाँ, इनका एक अरेंजर आ गए थे ज्ञान वर्मा,
0: जी जी जी,
1: जो आज जो हमारा प्रकाश है वर्मा, उसके बड़े भाई, जिन्होंने दिल ढूंढता है सब उन्होंने किया था।
0: ज्ञान वर्मा कभी उषा खन्ना के साथ भी हुआ करते थे,
1: उषा खन्ना के साथ वायलिन बजाया करते थे, अरेंजर मुझे याद नहीं।
0: जी
1: जी, रवि साहब क्या, उन्होंने बहुत काम,
0: हाँ
1: रवि साहब क्या बहुत काम किया। तो हम सब बजाते थे साथ में, ज्ञान अच्छा वायलिनिस्ट भी था, बजाता भी था। तो सुबह सुबह 9 बजे पहुंचे हम लोग, तो ज्ञान ने सारा इंट्रोडक्शन वगैरह सब पूरा रिहर्सल कराया, हम लोग करा के बैठ गए। तो मदन साहब आए 9:45 के करीब
0: जी,
1: आए तो सब चुप हो गए, शांत हो गए सब। हाँ ज्ञान सुनो। तो ज्ञान ने कुछ सुनाया, म्यूजिक बजाया हम लोगों ने, फिर उन्होंने बोला म्यूजिक वन सुनाया। तो वो बैठ गए, एक्चुअली खड़े हुए थे तो कुर्सी पे बैठ गए।

0: और उनका चेहरा मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है,
1: पसंद नहीं आ रहा है,
0: कुछ इनको म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा। तो वो गाना था, हर तरफ अब यही अफसाने। तो ये गाना था और मैं बजाते चले गया,
1: हिंदुस्तान की कसम फिल्म का गाना,
0: हिंदुस्तान की कसम, और मैं ये गाना बजाता चले गया। 70 म्यूजिशियन चुप बैठा हुआ है और एक लड़का वायलिन बजा रहा है।
1: आपको पता था कि मदन जी गुस्से में हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा
0: है, उसके बावजूद भी वो गाना मैं बजाता रहता।
1: ये किस धुन पे किया था?
0: पता नहीं, आई डोंट नो
1: जी,
0: उस टाइम पे क्या हुआ मुझे पता नहीं,
1: क्योंकि मदन जी का गुस्सा बहुत मशहूर था,
0: लेकिन
1: फौजी शख्सियत।
0: लेकिन क्या था कि मदन जी का गाना बजा रहा था इसलिए उन्होंने मुझे शायद कुछ नहीं कहा
1: जी,
0: क्योंकि मैं कहीं और चीज नहीं बजा रहा था।
1: हाँ,
0: मैं उनका ही गाना दारारी रारी यही बजा रहा था। बजाते बजाते मैंने कुछ बजा दिया
1: अपनी तरफ से,
0: अपनी तरफ से बज गया।
1: वाह,
0: मैंने जानबूझकर नहीं बजाया, बज गया। तो वहां से उठे और सीधा मेरे पास आके बोलते, व्हाट डिड यू प्ले? मेरे तो पसीने छूट गए, एसी में मुझे पसीना आ गया। सर, आई सेड सर नथिंग, व्हाट डिड यू प्ले जस्ट नाउ? एकदम उनका आवाज चेंज हो गई पूरी। मैंने, मुझे थोड़ा सा कंट्रोल हुआ अपने, सर या आई प्लेड दिस।

0: जान, ये जो उत्तम बजारा है ये फर्स्ट म्यूजिक होगा एंड सोलो वैलिड होगा एंड उत्तम विल प्ले सोलो वैलिड।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: यहां से युवराज जी आई बिकेम ए सोलो वायलिनिस्ट फॉर हिम।
1: क्या बात है। और फिर बहुत गानों में वायलिन,
0: बहुत गानों में सोलो बजाया
1: जी। कुछ गानों का जिक्र हो जाए।
0: मुझे याद नहीं है लेकिन बहुत से गाने हैं
1: जी।
0: हाँ, ये गाना याद है मुझे।
1: जी
2: हर तरफ

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत पर आधारित ये लंबी श्रृंखला। आज आपने सुना इस श्रृंखला का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और एचआर पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले रविवार।
1: उजाले उनकी यादों।
2: सन का अत्यंत सुंदर उदाहरण है ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स, स्थानीय समुदाय की प्रथाओं और उनके जीवन के अनुभवों की क्लाइमेट एडप्टेशन की क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं। हमें ट्रेडिशनल नॉलेज पर आधारित पीपल सेंट्रिक और कम्युनिटी बेस्ड एडप्टेशन के माध्यम से क्लाइमेट रेजिलियंस को सुदृढ़ करने के प्रयास करने चाहिए। क्लाइमेट रेजिलियंस बढ़ाने में सस्टेनेबल अफोर्डेबल की भी एडप्टेशन की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। आज बहुत सारे फॉरेस्ट लैंड में फॉरेस्ट नहीं है। फॉरेस्ट लैंड तो है लेकिन उसमें कोई फॉरेस्ट का नाम निशान नहीं। उसमें फॉरेस्ट की अफॉरेस्टेशन की आवश्यकता है। सस्टेनेबल अफॉरेस्टेशन का वास्तविक लक्ष्य केवल पेड़ लगाना नहीं है बल्कि स्वयं और स्वनिर्भर इकोसिस्टम को फिर से स्थापित करना है। डेवलपमेंट को एडप्टेशन का एक रूप मानना भी महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल है। विकास के लिए मजबूत हेल्थ सिस्टम और क्लाइमेट रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकता है। एक कृषि उत्पादकता बढ़ाने और अफोर्डेबल तथा विश्वसनीय ऊर्जा की उपलब्धता से भी जुड़ा है। रोप टू सोलर पैनल्स उपलब्ध कराने की योजना भारत सरकार की ऐसे ही एक पहल है जो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से भारत के एनर्जी लैंडस्केप को नया रूप दे रही है। विकासशील देशों को ऐसा मार्ग तय करना चाहिए जो विकास की गति को सुनिश्चित रखते हुए रेजिलियंस बढ़ाए। जिम्मेदार क्लाइमेट एक्शन की प्रतिबद्धताएं देश की विकास संबंधी आवश्यकताओं और आर्थिक आकांक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए। ये तकनीकी रूप से फिजिबल भी होने चाहिए। मुझे बताया गया है सम्मेलन में ऐसे अनेक पहलुओं पर चर्चा हुई। एक और महत्वपूर्ण विषय है आधुनिक विज्ञान और समुदायों के पारंपरिक ज्ञान को साथ जोड़ना। रिमोट सेंसिंग, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रिडिक्टिव मॉडल्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे नवीन टेक्नोलॉजी को ट्रेडिशनल नॉलेज और स्थानीय समुदाय के जीवन अनुभव से जोड़ा जाना चाहिए। ये समन्वय क्लाइमेट विस्टम के ऐसे युग का सूत्रपात कर सकता है जो अधिक प्रभावी क्लाइमेट रेस्पॉन्स का मार्ग प्रशस्त करेगा।

0: और सो जाओ। भारत की युवा आबादी देश की अत्यंत मूल्यवान संपदा है। युवाओं और जनसाधारण को जोड़कर पर्यावरण चेतना बढ़ाने की दिशा में भारत ने सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। भारत सरकार की मिशन लाइफ पहल ने ये दिखाया है कि जन भागीदारी और कम्युनिटी ओनरशिप के माध्यम से इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन के लिए बहुत सार्थक कार्य किए जा सकते हैं। सरकार के कई अन्य पहलों को भी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के प्रभावी कार्यक्रम के रूप में वैश्विक सराहना मिली है। मुझे विश्वास है कि विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, न्यायपालिका के वरिष्ठ प्रतिनिधियों, एक्टिविस्ट और अन्य हितधारकों के इस सभा में अनेक इनोवेटिव दृष्टिकोण सामने आए होंगे और इस मंथन के फलस्वरूप अनेक व्यवहारिक समाधान विकसित किए जाएंगे। मुझे विश्वास है कि इस आयोजन का समावेशी नीतियों और प्रभावी कार्यों के आधार पर क्लाइमेट रेजिलिएंट सोसाइटीज के निर्माण की दिशा सुनिश्चित करने में योगदान रहेगा। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। उपयोगी अनुभवों के आदान प्रदान का मंच प्रदान करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल विशेष प्रशंसा के पात्र है। मैं आप सभी के प्रयास के माध्यम से सस्टेनेबल और सुनिश्चित भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: Request you all to please rise.
2: And now it's time for the national song and the national anthem. That'll be played by the Rashtrapati Bhavan Military Band.

0: जय हिंद।
1: इसी के साथ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का भविष्य विषय पर आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन हो रहा है और माननीय राष्ट्रपति महोदया मंच से प्रस्थान के लिए तैयार हैं। सभी लोग खड़े होकर उनको अभिवादन कर रहे हैं और धीरे धीरे मंच से प्रस्थान सभी गणमान्य व्यक्तियों का।
2: As the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu highlighted that the soils, rivers, mountains, forests, the five elements are highly revered in our culture. Our country knows how important, how vital these are for our survival. Every Indian should be proud, every citizen should be proud that ancient Indian traditional knowledge systems combined science and values to give the highest regard to nature. As quoted by Sir David Attenborough and included in his speech by Honorable Justice Prakash Srivastavji, the chairperson of NGT, what we do now shall have a profound impact on the next 1,000 years. As stated by Justice Honorable Srimati B.V. Nagaratnaji, Honorable Judge of Supreme Court of India, that we have to learn from the Panchabhutam, from the five elements. From earth we learn patience and steadiness, from air broad-mindedness and adaptability, from fire warmth and energy, from sky equality, and from water purity and continuity. Let's hope that all the objectives of the conferences, like the knowledge exchange, like innovation and technology, like policy development, collaborative action and public engagement, all are working together, all work in a better way, for a better future, for a combined future for all of humanity.
1: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का भविष्य विषय पर आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में न सिर्फ वर्तमान में विश्व के सामने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर चर्चा की गई, बल्कि भविष्य में इस गंभीर विषय को लेकर एक रोड मैप तैयार किया गया ताकि इस वैश्विक समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाया जा सके और हमारी इस पृथ्वी और पर्यावरण को हरा भरा और संतुलित बनाए रखा जा सके, जहां तकनीकी के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। इसी के साथ मैं यहां मौजूद आकाशवाणी की पूरी टीम, तकनीकी सहायता के लिए शिकमन सिंह, सुमित कटियार, नकुल, मोनिका और अभिषेक के साथ ओबी कार्यक्रम प्रभारी श्री जय सिंह और संपूर्ण मार्गदर्शन और समन्वय के लिए श्री प्रमोद कुमार जी का आभार व्यक्त करते हैं। आइए इसी संकल्प के साथ कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे और इस धरती को हरा भरा बनाए रखेंगे, मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलता हूं।

कभी बीता ही ना हो, वो उन्हीं पलों में कहीं ठहर गया हो, क्योंकि दिल के कुछ मौसम वहीं ठहरे रह जाते हैं। मोहब्बत की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है कि वो सिर्फ मिलने का नाम नहीं है, वो तो बिछड़ने के बाद भी उतनी ही सच्ची रहती है।

शायद इसलिए ही कहा जाता है कि सच्ची मोहब्बत का अंत नहीं होता, वो किसी रिश्ते के टूटने से मरती नहीं, बल्कि यादों में एक खूबसूरत कहानी बनकर हमेशा जिंदा रहती है। एक ऐसी कहानी जिसे दिल बार बार पढ़ना चाहता है, भले ही उसका आखिरी पन्ना अधूरा ही क्यों ना हो। कभी कभी कुछ रिश्ते अपनी मंजिल तक पहुंचकर नहीं, बल्कि अधूरी यादों में बसकर अमर हो जाते हैं।

मोहब्बत की किताब के कुछ पन्ने हंसी से भरे होते हैं तो वही कुछ आंसुओं से भीगे हुए, और कुछ ऐसे होते हैं जो कभी लिखे ही ना जा सके, मगर दिल को उन अधूरे पन्नों से भी शिकायत नहीं होती। दिल उन अनकहे अल्फाजों को भी सहेज कर रखता है जो कभी जुबान तक नहीं आ सके, उन ख्वाबों को भी संजो कर रखता है जो हकीकत नहीं बन सके। कभी कभी अधूरी कहानियां ही सबसे ज्यादा मुकम्मल लगती हैं।

यादें भी कितनी अजीब होती है ना। वो इंसान भले ही पास ना हो, मगर उसकी हंसी, उसकी बातें और उसके साथ बिताए पल, उसके होने का एहसास दिल से कभी जाने ही नहीं देती। दिल के किसी कोने में एक छोटी सी लौ हमेशा जलती रहती है, जो ये विश्वास दिलाती है कि शायद किसी दिन फिर से मुलाकात होगी, वही मुस्कान लौटेगी और अधूरी रह गई बातें

अपनी दोस्त आरती श्रीवास्तव को छाया गीत समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी।

आइए आपको हमारी इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी दे दी। अब से थोड़ी ही देर में यानी कि 5:35 पर हम प्रस्तुत करेंगे अपने युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज आप सुनेंगे कुमारी चंपा सिंह की वार्ता। विषय होगा स्वास्थ्य और मानसिक शांति। 6:02 पर खेतीबाड़ी कार्यक्रम में बागवानी से लाभ, पशुपालन में स्वरोजगार विषयों पर चर्चा होगी। डॉक्टर रमेश कुमार कृषि विशेषज्ञ से ली गई भेंट वार्ता भी हम आपको सुनवाएंगे, जिसका विषय होगा फूलों की खेती। भेंट करता होंगे संतोष कुमार। 6:30 जननी कार्यक्रम में स्तनपान का महत्व विषय पर चर्चा की जाएगी। बरसात के मौसम में खान पान में स्वच्छता जरूरी, इस विषय पर भी चर्चा होगी। साथ ही उर्वशी जायसवाल की वार्ता भी प्रसारित की जाएगी, जिसका विषय होगा सफलता के लिए सकारात्मक सोच। 7:00 प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल का प्रसारण होगा 7:10 पर आकाशवाणी के रांची केंद्र से। स्वरांजलि के तहत सुनिएगा गीत और गजल। गायक कलाकार होंगे भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह। और महुआ कार्यक्रम में हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे नागपुरी लोकगीत। गायक कलाकार होंगे बशीर अंसारी और साथी।

रात्रि 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से हम पेश करेंगे। 8:45 बजे हिंदी में समाचार, 9 बजे अंग्रेजी में समाचार, 9:15 बजे उर्दू में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। विविध भारती के तहत आज के फनकार में आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम 9:30 बजे से। ट्वेंटियथ एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026, ये स्पेशल प्रोग्राम हम आपके लिए पेश करेंगे 10:30 बजे से। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा 10:20 बजे से। 11:00 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 बजे पर अंग्रेज़ी में समाचार और हमारी सभा का समापन होगा 11:10।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है हमारे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम में हम अपने सभी युवा साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम आपको कुमारी चंपा सिंह की एक वार्ता सुनवाएंगे जिसका विषय होगा स्वास्थ्य और मानसिक शांति। इसी कार्यक्रम में हम आपसे कई विषयों पर चर्चाएं भी करेंगे, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में आइए आपको सुनवाते हैं ये फिल्मी गीत।

0: आपको सुनवाते हैं कुमारी चंपा सिंह की वार्ता। विषय है स्वास्थ्य और मानसिक शांति।
1: मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है दैनिक जीवन में भावनाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, आदर्शों में संतुलन रखने की योग्यता। इसका अर्थ है जीवन की वास्तविकताओं को सामना करने और उनको स्वीकार करने की योग्यता। हमें एक अच्छा और निरोगी जीवन जीने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम जीवन कभी भी खुशी से और तनाव मुक्त नहीं जी सकेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य एक ख्याल रखने को या फिर मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक विकास को मानसिक स्वास्थ्य नहीं कहते, बल्कि जब हम संज्ञात्मक और भावनात्मक क्षमताओं का उपयोग अपने जीवन में तनाव मुक्त करने के लिए और अपने समाज के विकास के लिए करते हैं उसे मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सन 1948 में स्वास्थ्य या आरोग्य की ऐसी परिभाषा दी है, दैहिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य है, या फिर किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। ऐसे कई सारे कारण हैं जो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं, जैसे पारिवारिक मतभेद, सामाजिक मतभेद, सांस्कृतिक मतभेद, किसी मुश्किल काम का तनाव और ऐसे ही कई अन्य कारण हैं जो व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। सकारात्मक सोच से भी मानसिक स्वास्थ्य में सहायता मिलती है। सकारात्मक सोच मतलब किसी भी चीज़ को लेकर हमेशा अच्छा सोचना। यह एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें अपने मन में किसी भी चीज़ को लेकर हमेशा सकारात्मक सोच रखनी होगी। तब हम तनावमुक्त जीवन जी पाएंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में तभी सफल होता है जब वो व्यक्ति अपनी सफलता को लेकर अपने मन में हमेशा सकारात्मक सोच रखता है और वो व्यक्ति हमेशा अपने सफलता के लिए कड़ी मेहनत करता है और अपनी सकारात्मक सोच से उसके मन को हमेशा तनावमुक्त रखती है। एक तनावमुक्त और निरोगी जीवन के लिए अच्छा मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलताएं हासिल करने के लिए अच्छे मानसिक रूप से सबल बनने की ज़रूरत होती है। इसलिए जिस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है वो व्यक्ति बाकी व्यक्तियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा मेहनती और आत्मविश्वासी होता है, इसलिए वो हमेशा किसी भी मुसीबतों का सामना पूरी हिम्मत से करता है, ना कि उस मुसीबत से डरकर भागता है। इसलिए हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि यह भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, जिससे कि उनके बच्चे हमेशा एक अच्छा और निरोगी जीवन जी सकें।

दोस्तों, इस गीत के बाद आइए थोड़ी चर्चा करें, और चर्चा का विषय है आज का विश्व सफाई दिवस। आज 20 सितंबर, जिसे हम विश्व सफाई दिवस के रूप में भी मनाते हैं। स्वच्छता स्वस्थ जीवन और सुंदर भविष्य का आधार है, यह तो हम सभी जानते हैं। स्वच्छता केवल हमारे आसपास की सफाई का नाम नहीं, बल्कि यह स्वस्थ जीवन, सुंदर समाज और जिम्मेदार नागरिकता की पहचान है। विश्व सफाई दिवस हमें अपने घर, विद्यालय, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने के साथ साथ स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने की प्रेरणा देता है। कूड़ा कचरा, प्लास्टिक और गंदगी न केवल हमारे परिवेश को दूषित करते हैं, बल्कि वायु, जल और मिट्टी को भी प्रभावित करते हैं। गंदगी अनेक बीमारियों का कारण बन सकती है, इसलिए स्वच्छता को केवल किसी एक दिन का अभियान न बनाकर अपनी दैनिक आदत और जीवन शैली का हिस्सा बनाना आवश्यक है। स्वच्छ समाज का निर्माण केवल सरकार या सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं है, प्रत्येक नागरिक की छोटी सी पहल बड़ा परिवर्तन ला सकती है। दोस्तों, हमें कूड़ा इधर उधर न फेंकना, गीले और सूखे कचरे को अलग रखना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना और दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करना चाहिए। विद्यालयों में बच्चों को स्वच्छता के संस्कार देना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के बच्चे ही कल के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। जहां स्वच्छता है, वहां स्वास्थ्य है, जहां स्वास्थ्य है, वहां खुशहाल जीवन है। आइए विश्व सफाई दिवस पर हम संकल्प लें कि अपने आसपास की स्वच्छता की शुरुआत दूसरों से नहीं, स्वयं से करेंगे। स्वच्छता केवल अभियान नहीं, हमारी जिम्मेदारी और हमारी संस्कृति भी है।

लेते हैं इजाज़त, नमस्कार। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से मुख्य प्रादेशिक समाचार।

चारों के साथ मैं पूजा कुमारी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज धनबाद में आईआईटी आईएसएम में आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यशाला को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार के साथ समाज, शिक्षण संस्थानों, वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और आम लोगों की भागीदारी जरूरी है। राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण और स्वास्थ्य आपस में जुड़े हैं और प्रदूषण का सीधा असर मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के प्रदर्शन को साहस, पराक्रम, धैर्य और अनुशासन का प्रतीक बताया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में आज उन्होंने कहा कि ऐसे प्रदर्शन युवाओं को वायुसेना और सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं। 22 सितंबर को आदिवासी समाज का प्रमुख पर्व कर्म मनाया जाएगा, जिसे लेकर रांची के कर्म टोली अखाड़ा में तैयारियां तेज हो गई हैं। कर्म पर्व को लेकर अखाड़ा में पारंपरिक रीति रिवाजों और पूजा अनुष्ठान की तैयारियां की जा रही है। जगलाल पाहन ने पर्व के दौरान होने वाले पूजा विधानों और परम्पराओं की जानकारी दी। रांची में आज पुलिस ने प्रतिबंधित मादक पदार्थ के साथ एक महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 7.8 ग्राम मादक पदार्थ के अलावा 99,680 रुपए नगद और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर हिस्सों में 25 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार कल से 24 सितंबर तक कहीं कहीं वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। मौसम विभाग ने तेज हवा और वज्रपात के दौरान लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। 20वें एशियाई खेलों के पहले दिन भारत ने 2 सिल्वर मेडल जीत लिए हैं। दोनों मेडल 10 मीटर राइफल शूटिंग में मिले हैं। वहीं सूचिका तरियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की ट्रेडिशनल कैटेगरी के सेमीफाइनल में पहुंचकर मेडल पक्का कर लिया है। दूसरी ओर महिला क्रिकेट में भारत ने दूसरी सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेतीबाड़ी। कार्यक्रम खेतीबाड़ी के बाद आप सुनेंगे हमारी ग्रामीण महिला श्रोताओं के लिए कार्यक्रम जननी।

खेतीबाड़ी सुनने वाले तमाम किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ चर्चाएं, जिन

में हम आपसे बातें करेंगे और उसके बाद आप सुनेंगे लोकगीत और उसके बाद हम आपको भेंट वार्ता भी सुनाएंगे। तो कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपसे बातें करेंगे बागवानी से लाभ के बारे में।

तो किसान भाइयों, हम आपसे बातें कर रहे थे चर्चा के बारे में, और पहला चर्चा हम आपसे करेंगे बागवानी से लाभ के बारे में, और उसके बाद जो चर्चा होगी उसका विषय होगा पशुपालन में स्वरोजगार। तो चलिए पहले हम बातें करते हैं बागवानी से लाभ के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, बागवानी से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कई बेहतरीन लाभ मिलते हैं। बागवानी करने से शरीर की अच्छी खासी कसरत हो जाती है, जिससे दिल स्वस्थ रहता है। और किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि मांसपेशियों की मजबूती भी होती है, यानी कि मिट्टी खोदने, पौधे लगाने और निराई गुड़ाई करने से हाथों और शरीर की मांसपेशियां जो है मजबूत होती है। साथ ही किसान भाइयों, धूप में काम करने से शरीर को प्राकृतिक रूप से विटामिन डी मिलता है, जो हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। पौधों के बीच समय बिताने से कम मन शांत होता है और तनाव कम करने वाला हार्मोन कोर्टिसोल नियंत्रित रहता है। मिट्टी और हरियाली के संपर्क में आने से मूड अच्छा रहता है और डिप्रेशन के लक्षण कम होते हैं। यूं कहें कि खुशी और सुकून मिलता है। इसके साथ साथ किसान भाइयों, देखा जाए तो आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ भी इससे हमें प्राप्त होता है, जैसे कि शुद्ध और ताज़ा सब्जियां हमें मिलता है, घर पर उगाई गई सब्जियां और फल रासायनिक खाद से मुक्त और सेहतमंद होते हैं। इसके साथ साथ आर्थिक बचत और आय में भी जो है मुनाफा होता है, यानी कि व्यावसायिक रूप से बागवानी करने या सरकार की योजनाओं जैसे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का लाभ उठाकर किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। पौधे हवा को साफ करते हैं और घर के आसपास का वातावरण सुंदर और ठंडा रखते हैं, यानी कि पर्यावरण में भी इससे बागवानी करने से सुधार होता है। और इसके साथ साथ किसान भाइयों, इस तरह से हमें पर्यावरण में तो सुधार होता ही है, हम शारीरिक रूप से भी हम जो है सो मजबूत बनते हैं, स्वस्थ बनते हैं और स्वस्थ रहते हैं। और चलिए किसान भाइयों, फिलहाल तो हम एक लोकगीत सुनते हैं, उसके बाद फिर आपसे बातें करेंगे पशुपालन में स्वरोजगार पर।

किसान भाइयों, ये तो गीत हुई, लोकगीत हुई, ये भरत सिंह भारती की आवाज़ों में। और अब चलिए हम बातें करते हैं पशुपालन में स्वरोजगार पर, आपसे चर्चा करते हैं इस विषय को लेकर। जी हाँ किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि पशुपालन में स्वरोजगार का एक बहुत ही मजबूत और लाभदायक जरिया है। भारत जैसे हम देश में जहाँ कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्य है, पशुपालन से जुड़कर लोग अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। जी हाँ किसान भाइयों, गाय या भैंस पाल कर यानी कि डेयरी फार्मिंग करके दूध और उससे जुड़े उत्पाद घी पनीर वगैरह वगैरह बेचना सबसे लोकप्रिय और स्थिर आय वाला व्यवसाय है। इसी तरह से कुक्कुट पालन भी आप कर सकते हैं, यानी कि अंडे या मांस के लिए मुर्गियों का पालन करना भी हो सकता है। इसमें कम जगह और कम समय में अच्छा रिटर्न मिलता है। और साथ ही किसान भाइयों, बकरी और भेड़ पालन के द्वारा भी हम व्यवसाय करके मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, मांस और दूध की मांग को देखते हुए बकरी पालन तेजी से उभरता हुआ स्वरोजगार बन गया है और कई क्षेत्रों में सुअर के मांस की अच्छी मांग के कारण यह भी मुनाफे का सौदा है। यानी कि सुकर पालन कर भी, यानी कि पीग फार्मिंग करके भी आप अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। उसी तरह हो गया मधुमक्खी पालन, बहुत कम लागत में शहद और उत्पाद तैयार, अन्य उत्पाद तैयार करने के लिए इसे शुरू किया जा सकता है। किसान भाइयों, सरकार जो है सो इसमें बढ़ावा भी दे रही है और उनकी योजनाएं भी बहुत सारे हैं। जैसे सबसे पहले तो मैं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत झारखंड सरकार जैसे राज्य स्थानीय निवासियों को स्वरोजगार के लिए व्यावसायिक बकरी पालन, जैसे 100 बकरी प्लस 5 बकरा यूनिट पर 70% तक का भारी अनुदान दे रही है। ये बात आप भी जान जाएं। और सब्सिडी लोन भी इसके द्वारा दिया जा रहा है, यानी कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड या अन्य राष्ट्रीय योजनाओं के जरिए पशु खरीदने और शेड निर्माण के लिए आसानी से बैंक लोन मिल जाता है। तो इस तरह से आप जो है सो

खुद से पशुपालन में स्वरोजगार तलाश सकते हैं और कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब किसान भाइयों हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में, और अब सुनते हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश कुमार से ली गई भेंटवार्ता। विषय है फूलों की खेती और इनसे बातचीत कर रहे हैं इस संबंध में संतोष कुमार।

0: अपने खेतों से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसानवाणी में। ग्रामीण भाइयों, हम फसलों की बात करते हैं, दलहनी फसलों की बात करते हैं, धान्य फसलों की बात करते हैं, अनाज फसल की बात करते हैं, सब्जियों की बातें करते हैं, तरह तरह की फसलों की बातें करते हैं हम किसान भाई बहन। और एक बात हम यह भी बताते चले आपको कि इन फसलों के अतिरिक्त खेती करते हुए अगर हम व्यावसायिक रूप से फूलों की खेती करें तो निश्चित रूप से हमारे लिए आमदनी का एक बेहतर स्रोत बन सकता है किसान बंधु। और इसमें किस प्रकार से फूलों की खेती में देख रेख हमें करने की आवश्यकता है, अभी बरसात का मौसम है, अभी हम कौन सी खेती कर सकते हैं, यहाँ की जलवायु क्या है, किस फूल के लिए बेहतर जलवायु है, यहाँ की मिट्टी किस फूल के लिए उपयुक्त है, और किस फूल की खेती अभी वर्तमान में की जा सकती है, और आने वाले समय में किसकी योजना आप बना सकते हैं, इन तमाम बातों पर जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ हैं पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र चियाकी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश कुमार जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम।
1: सभी को मेरा जोहार।
0: फूलों की बात जहां तक आती है, अभी फूलों की खेती की क्या संभावना बनती है हमारे पलामू में, हमारे किसान भाई लोग किस तरह से इसकी खेती से लाभ कमा सकते हैं?
1: आज के इस बदलते मौसम के परिप्रेक्ष्य में हम यही कहना चाहेंगे कि कृषक बंधु जो खाद्यान्निक फसल के साथ साग सब्जी की खेती कर रहे हैं बृहद पैमाने पर, उसके साथ साथ अगर वो फूलों की खेती करते हैं तो इसे भी एक अच्छा आमदनी उन्हें प्राप्त हो सकता है। ऐसे पलामू के क्षेत्रों में जैसा मैंने भ्रमण किया है तो पाया है कि यहाँ फूलों की खेती जो है मतलब नाम मात्र का है, लोग अपने बाड़ी में थोड़ा बहुत लगा देते हैं, व्यावसायिक रूप से करते नहीं
0: जी।
1: जैसा कि हम जानते हैं कि फूल जो है जितना भी आप हमारे टाउन एरिया में चाहे और झारखंड में जितना भी है सब सप्लाई जो है दूसरे स्टेट से हो रहा है। अगर हमारे यहाँ के जो नए लड़के लोग जो बाहर कमाने जा रहे हैं अगर इस व्यवसाय में फूलों की खेती पर अगर अच्छा तरह से ध्यान दें तो जो है बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी और परिवार का भरण पोषण का एक बहुत बड़ा साधन होगा,
0: बन सकता है जी
1: जी जी। और ऐसा देखा गया कि फूल की खेती जो है हर एक तरह का फूल यहाँ किया जा सकता है
0: जी।
1: लेकिन है कि क्या कि बहुत सारा फूल जो है उसका एक ठंडा में होता है, कुछ गर्मी में होता है, कुछ बरसात में होता है। लेकिन ऐसा हम देखते हैं कि एक फूल जो कॉमन फूल है गेंदा का फूल जो कि हमारे यहाँ बृहद पैमाने पर थ्रू आउट द ईयर सालों भर किया जा सकता है और इसका भी मार्केट जो है बहुत अच्छा है।
0: अच्छा।
1: इसके साथ हम रजनीगंधा कर सकते हैं, जरबेरा कर सकते हैं, ग्लेडियोलस कर सकते हैं, एस्टर कर सकते हैं, कार्नेशन कर सकते हैं। लेकिन जो एस्टर, ग्लेडियोलस, जरबेरा, कार्नेशन ये सब जो बात करें ठंडे का समय का।
0: अच्छा।
1: लेकिन अगर अभी किसान करना चाहते हैं, कुछ लोग अगर जिनका जमीन जो है ऐसा है जिनका मिट्टी जो है दोमट मिट्टी हो, बलुई दोमट मिट्टी हो, ज़्यादा काला वाला नहीं हो, तो वैसा मतलब हार्ड नहीं होना, इसी के लिए जरा हल्का मिट्टी चाहिए और हमारा कार्बनिक से प्रचुर मात्रा में पाया जाए
0: जी जी।
1: तो उस तरह से नहीं तो उसको हम लोग खाद का मात्रा के साथ उसको हम लोग इम्प्रूव करके उसमें खेती कर सकते हैं। तो हमारा एक कहना रहेगा जैसे गेंदा का फूल, सभी लोग जानते हैं गेंदा क्या है, गेंदा देख भी रहे हैं और लोग जाते हैं मंदिर में तो खरीद के फूल भी चढ़ाते हैं
0: जी जी।
1: तो इसमें यही
0: सालों भर ये
1: सालों भर खेती की जा सकती है। तो गेंदा एक ऐसा फूल है जिसका कि सालों भर खेती बहुत ही आसानी तरीके से किया जा सकता है। तो किसानों को मैं यही कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम अगर आप खेती फूलों की करने जा रहे हैं तो गेंदा और रजनीगंधा जो कि हमारे क्षेत्र में बरसात में अच्छा से हो जाएगा। और इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा किसानों को कि गेंदा जो आप लगाना चाहते हैं तो मिट्टी आपका रहेगा प्रश्न कि कैसा मिट्टी में होता है, तो इसी के लिए जो है हमारा दोमट मिट्टी जो है बहुत ही उपयुक्त है। दोमट मिट्टी और ऐसा मिट्टी जिसका कि पीएच जो है हमारा न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब लगभग 7 के करीब होना चाहिए। अगर मानिए थोड़ा अम्लीय है भी तो उसमें चूना जो है हम लोग 3 से 4 क्विंटल जो है प्रति हेक्टेयर डालकर उसको उपचारित करने के पश्चात लगाएंगे तो वहाँ भी हमारा हर एक तरह का फसल जो है हो जाएगा
0: जी।
1: तो गेंदा में अब ये बात आती है कि इसका खेती कैसे करें, तो पहले जैसे अन्य फसलों की खेती करते हैं उसी तरह खेत की जुताई जो है कम से कम 2-3 बार कर लें। और इसके लिए जो है आप हम जानते हैं गेंदा 2 तरह का होता है, एक बड़ा गेंदा एक छोटा गेंदा
0: जी।
1: तो इसको जो है साइंटिफिक वे में जो है 2 भाग में 2 नाम से जाना जाता है, एक अफ्रीकन गेंदा और दूसरा फ्रेंच गेंदा। तो अफ्रीकन गेंदा वैसा गेंदा है जिसका फूल का साइज बड़ा होता है और फ्रेंच गेंदा वैसा है जिसका फूल का साइज छोटा छोटा होता है। तो अब उसमें प्रभेद जो है तो हम लोग जैसे कि बड़ा गेंदा का करने जा रहे हैं तो उसमें लेमन ड्रॉप, ऑरेंज ड्रॉप, ये वैरायटी जो है आप लगा सकते हैं।

0: अच्छा, ऐसा वैरायटी जो बृहद बड़ा फूल है जिसका कि माला बनता है।
1: अच्छा,
0: तो मैं किसानों को ये कहूँगा कि जो साइज में बड़ा है और अगर पूजा के लिए भी लगाना तो छोटा फूल, दोनों को मिक्स करके लगाएं, जिससे कि आप दोनों को फूल से आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।
1: अच्छा,
0: तो खेत की जुताई करने के पश्चात जो मेरे द्वारा बताया गया परभेद था उसका बीज को मंगा लें, और इसको जो है हम लोग एक हेक्टेयर के लिए 1.5 किलो बीज लगता है।
1: अच्छा,
0: जो किसान जरा सक्षम है तो हम तो कहेंगे कि इसको जरा उपचारित कर लें बीज को भी।
1: अच्छा,
0: तो कहेंगे कि गेंदा का बीज का क्या उपचारित कैसे उपचार होगा, तो इसको उपचार जो है दवा से न करके इसको जो उपचार हम लोग करेंगे एक कल्चर आता है।
1: अच्छा,
0: जो कि फफूंदी है, तो इस फफूंद का नाम है एजो स्पाइरिलम।
1: अच्छा,
0: इसका जो है 200 ग्राम लिए एजो स्पाइरिलम को और उसमें 50 ग्राम मार डाल दिए।
1: अच्छा,
0: उसको अच्छा तरह से मिलाने के बाद 1.5 किलो बीज मिलाकर उसमें मिलाकर और उसको थोड़ा फैलाकर छोड़ दिए 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद जो है तैयार पौधशाला में बराबर कहा जाता है तैयार पौधशाला, ऐसे नहीं कि जैसे मन तैसे छीट दिए, उसको लाइन से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर करीब 1 से 1.5 इंची कुराई जमीन से लकीर देते हुए उस गहराई में बीज को गिराएं और उस पर भुरभुरा खाद से उसको ढक दें।
1: अच्छा,
0: उसके बाद ये जो है आपका तैयार हो जाता है करीब 4 सप्ताह में।
1: अच्छा,
0: तो समझिए कि 25 से 30 दिन में तैयार हो गया, तो आप इसको रोप सकते हैं। आप पूछेंगे रोपने का समय क्या होता है, मैंने जैसे पहले ही बताया कि वर्ष में 3 बार कर सकते हैं, जून जुलाई, सितंबर, जनवरी फरवरी।
1: अच्छा,
0: नवंबर दिसंबर इसलिए नहीं लेते हैं कि उस समय जो है जारा ज़्यादा होता है,
1: ज़्यादा
0: जारा होने से अगर जो आप पौधा दे लगाते भी हैं तो उसका ग्रोथ नहीं होता है, ग्रोथ के और होता है उसके बाद कीड़ा उड़ा लगने का भी ज़्यादा संभावना होता है। तो अगर आप अभी किसान लगाना चाहते हैं तो अभी किसान अभी समय हमारा है, उसमें मेरे बताए गए परभेद को ले लें और लेने के पश्चात इसको अगर ये आप लगाना चाहते हैं तो इसको लगाने का जो दूरी होगा 45x20, अगर गेंदा लगा रहे हैं तो इसको 45x20 सेंटीमीटर पर लगाएं, और लगाने से पहले खाद डालना है। तो इसका खाद का जो अनुशंसित मात्रा होगा 100 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस, 60 kg पोटास। तो इसका जो है आपका नाइट्रोजन जो है उसको हमको 3 भाग में देना है, मानिए कि 33-33-33 किलो बांट दिए तो 33 किलो जो है लास्ट जो खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय डाल दें, और रेस्ट टू जो बच रहा है आपका उसको 30 दिन पर और 60 दिन पर डालें
1: जी,
0: कोराई करके
1: जी।
0: जिसमें 30 दिन के बाद जो डालने जा रहे हैं तो थोड़ा निकोनी कर दें जैसे कि खरपतवार निकल जाए, उसके बाद खाद डालें और मट्टी चढ़ा दें पौधे पर
1: जी, जी।
0: और इसमें एक विशेष ध्यान देना कि जब पौधा हमारा बिजरा तैयार होने के बाद जब लगा दें, लगाने के बाद 15-20 सेंटीमीटर कहने का मतलब 30 दिन का 25 से 30 दिन का हो जाए, तो उसका ऊपर का शीर्ष भाग को हम लोग निपिंग कर देते हैं। निपिंग करने का मतलब उसका कलिका को, ऊपर वाला कलिका को काट देते हैं।
1: अच्छा अच्छा,
0: काटने का मेन मकसद ये है कि ब्रांच ज़्यादा निकले,
1: ज़्यादा निकले।
0: अब ब्रांच जब हमारा जो साइड ब्रांच निकलने लगेगा वो भी अगर हमारा जब 6 इंच का हो जाता है तो उसका भी निपिंग कर दें, उसका शीर्ष भाग को तोड़ दें।
1: अच्छा अच्छा,
0: जिससे कि एक कैनोपी तैयार होगा, पौधे का एक विकास संरचना बनेगा, उसमें फूल ज़्यादा आएगा।
1: अच्छा,
0: अगर ऐसे डायरेक्ट आप छोड़ देते हैं और फूल आने लगता है तो ब्रांच नहीं बनने के चलते फूल कम आता है।
1: अच्छा,
0: और उसके बाद जो है आप अगर इसमें अब रोग है तो रोग में जैसे कि कीड़ा जो लगता है और बीमारी लगता है, तो कीड़ा अगर लग रहा है तो फिप्रोनिल दवा आता है, इसका जो है 1.5 ml दवा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे तो कीड़ा का निदान हो जाएगा। अगर वो नहीं दवा है तो इमिडाक्लोरोपीड है, 1 से 1.5 ml दवा है, मिलाकर छिड़काव करेंगे आ जाएगा। मानिए कि कोई रोग लग गया है, जैसे कि आप उसका पौधे में गलन होने लगा, पौधा जो है उस पत्ते के ऊपर धब्बा आ रहा है, तो उसमें जो है आपको कार्बेंडाजिम दवा हुआ है, चाहे ब्लाइटॉक्स दवा हुआ, अगर गलन है तो ब्लाइटॉक्स डाल देंगे 3 ग्राम 1 लीटर पानी में। अगर ऐसी पौधे पर धब्बा आ रहा है तो कार्बेंडाजिम या बेविस्टिन जो है 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे तो इससे आप निदान पा सकते हैं।
1: अच्छा,
0: इसके साथ साथ जो है अगर इसका उपज जो है तो छोटा वाला जो हमारा ये होता है गेंदा, उसका उपज 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर।
1: अच्छा,
0: लेकिन बड़ा वाला गेंदा जो यही है 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलता है।
1: अच्छा,
0: तो आप अगर आप इस्टीमेट कीजिए कि अगर आप अपने खेत से 20 रुपया, आप एक साधारण सा सोचिए ना कि आप जब दिवाली वाली में माला खरीदने जाते हैं, दुर्गा पूजा में माला खरीदने जाते हैं तो मिनिमम रेट रहेगा तो 30 रुपया, नहीं तो अगर बाजार में उपलब्धता नहीं है, अगर बाहर से कम ही माला आया है, चाहे किसी तरह नहीं होने से 50 से 60 रुपया 70 रुपया में एक छोटा सा माला देता है। तो समझिए कि अगर अन्य फसलों की तुलना करें तो इसमें इनकम ज़्यादा है
1: जी।
0: किसान जो है आसानी से 2 से 3 टाइम ज़्यादा इसमें कमाई कर सकते हैं। उसके बाद रजनीगंधा हुआ, रजनीगंधा भी बरसात में लगाया जा सकता है, जून जुलाई लगाने का अच्छा सीजन है।
1: और ये कब तक आएगा इसका, मैंने फल,
0: हाँ,
1: फूल
0: ये जो है अगर गेंदा लगाए हैं तो 60 दिन से फूल देना शुरू कर देगा।
1: अच्छा,
0: और ये रजनीगंधा लगाए हैं तो ये 80 से 90 दिन के बीच में शुरू कर देगा
1: और फिर लगातार देगा,
0: वो 2 साल तक आप फूल ले सकते हैं रजनीगंधा में।

0: है ना,
1: उसके बाद जो है फिर आपको नया ये करना होगा रजनीगंधा। तो रजनीगंधा का कॉर्म्स लगाया जाता है, उसके अंदर प्याज टाइप का बैठता है नीचे जड़ के पास।
0: अच्छा,
1: उसका जो है वेट होना चाहिए कम से कम, जो हम लगा रहे हैं कि व्यावसायिक रूप से खेती कर रहे हैं हमारा अच्छा उत्पादन मिले, तो 25 से 30 ग्राम का कॉर्म्स जो है उसको हम लोग लेते हैं। और इस कॉर्म्स को हम लोग क्या करते हैं, बेविस्टीन या कार्बेंडाजिम का 2% घोल, मतलब 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डालकर, और उसका कॉर्म्स जो है चाहे उसको बल्ब्स कहिए प्याज जैसा होता है, इसको पानी में डाल के आधा घंटा छोड़ देते हैं।
0: अच्छा,
1: दवा से इसलिए कि उसका बीज उपचार हो रहा है
0: जी।
1: इस बीज उपचार करने के बाद इसको छाया में रख देते हैं, छाया में जब हमारा सूख जाता है उसके बाद उसको हम लोग इसका जो है लाइन से लगाते हैं। तो इसका लगाने का जो दूरी होगा वो होगा 40 × 20 सेंटीमीटर।
0: अच्छा,
1: और इसको हम लोग लगाएंगे तो करीब 1 हेक्टेयर में हमारा पौधे का संख्या जो है 1,15,000 से 20,000 पौधा जो है हमारा 1 हेक्टेयर में एकोमोडेट हो जाता है, है ना। और उसमें भी लगाने के पहले अगर खेत का जैसा मैंने गेंदा का बताया उसी तरह इसमें भी खेत की जुताई करने के बाद इसमें खाद का मात्रा जरा बढ़ा दिया जाता है।
0: अच्छा,
1: जैसे वहाँ बोले 100-60-60 तो यहाँ देना है 150 किलो नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है हमारा 75 kg, पोटास 75 kg।
0: अच्छा, गुलाब की बात हम संक्षिप्त में करें।
1: हाँ, गुलाब के लिए अभी सीजन नहीं है, इसी के लिए जारा में अक्टूबर में हमको तत्पर होना होगा।
0: अच्छा,
1: गुलाब को लगाने के लिए गुलाब का जो है हमारे यहाँ 2 तरह का है। जैसे कि एक आप लोग देखते होंगे जो अभी आप लोग मार्केट में लेने जाते हैं तो एक मतलब कि जो कोट उट में लोग लगाते हैं चाहे किसी को गिफ्ट देते हैं छोटा वाला, उसको कहते हैं डच रोज।
0: अच्छा,
1: ये डच रोज जो है इसी के लिए पोली हाउस जरूरी है।
0: अच्छा,
1: और ये सब जो भी हम रजनीगंधा और गेंदा बोले ये ओपन कंडीशन में भी आराम से हो जाएगा। तो अगर आप संरचना बना लेते हैं उसके बाद खेती करते हैं तो उससे आप जो है हमारे KVK चाहे JDRS में आकर संपर्क करके आप जो है इसको भी खेती कर सकते हैं। तो रजनीगंधा भी ऐसा फ्लावर है जिससे कि आप अगर प्रति हेक्टेयर देखें तो आपका उपज जो है अगर आप फूल बेच रहे हैं तो करीब 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। जैसा मैंने रजनीगंधा के संदर्भ में बताया तो रजनीगंधा के में 2 तरह का फूल होता है। एक होता है सिंगल फूल आता है पौधे पर और एक ऐसा पौधा होता है वैरायटी प्रभेद है जिसमें गुच्छा में आता है जिसमें कि हम लोग डबल फूल उसको कहते हैं। तो इसका प्रभेद अलग अलग है। जैसे कि सिंगल फूल वाला का क्या उपयोगिता है, इससे तेल अच्छा निकलता है, इसमें गंध अच्छा होता है, ऐसा गजरा उजरा बनाने में सिंगल फूल वाला का उपयोग होता है।
0: और गुच्छा
1: डबल वाला का है सजावट उजावट में, इससे उसका पैसा जो है सिंगल वाले में ज्यादा इनकम होता है।
0: अच्छा,
1: तो इसका जो सिंगल वाला का प्रभेद है उसमें जो है हमारा रजनी है, प्रवजल है, और इसका जो अगर हम खेती करते हैं तो हमको अच्छा इनकम देगा। उसी तरह का डबल है, डबल वाला में जो है हमारा हैदराबाद डबल है, उसके बाद आपका ये सुभाषिनी है, फिर आपका वैभव है, ये सब प्रभेद जो है ज़्यादा ये है कारगर है। और इसको अगर किसान मंगा कर लगाते हैं तो इनका जो है फूल का जो उपज है ज़्यादा अच्छा मिलता है।
0: और ये तो हम ग्रामीण बंधु बातें कर रहे हैं फूलों की खेती की, और उसमें भी गेंदा रजनीगंधा वगैरह फूलों की खेती की, जिसकी अभी आप तैयारी कर सकते हैं किसान भाई बहन, सालों भर इसकी खेती की जाती है। और इससे छुट्टी कोई और महत्वपूर्ण बात है
1: इसमें यही करना है किसानों को कि ऐसे जगह पर लगाएं जहां पानी नहीं लगे, और अगर थोड़ा सा इसमें भी तत्पर्य रहना है कि कार्बनिक खाद का उपयोग ज़्यादा करना है
0: जी।
1: जैसे हमने खाद का मात्रा बताया, संशोधित मात्रा एक्ट में बताया 100-60-60, दूसरे में बताया 150-75-75, लेकिन गोबर का मात्रा आवश्यक है। गोबर जो है 20 क्विंटल से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, जितना अच्छा कार्बनिक हमारा सोर्स अगर जमीन में उपलब्ध रहेगा पौधा में फूल उतना अच्छा मात्रा में मिलेगा। और उसके बाद रजनीगंधा में अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो बहुत सारा केमिकल भी है।
0: अच्छा अच्छा,
1: जिसको कि अगर हम लोग छिड़काव करें जैसे GA3 जिब्रेलिक एसिड बोलते हैं जिसको, इसका जो है मात्रा अगर 50 से 100 PPM जो है इसको हम लोग 40-50-60 दिन के अंतराल पर इस मात्रा का छिड़काव करें तो हमारा फूल अच्छा आता है। कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट है जैसे बोरिक एसिड, उसका 0.1%, मतलब 1 ग्राम 1 लीटर पानी में। अगर हमारा फेरस सल्फेट डालना है तो 2 ग्राम 1 लीटर पानी में।
0: अच्छा,
1: इस तरह अगर हम लोग इसका उपयोग करें पौधे के ऊपर छिड़काव करें तो हमारा बेहतर होगा। जिंक सल्फेट है उसका 5 ग्राम 1 लीटर पानी में। तो इस सबसे जो है फूल का जो है साइज अच्छा होता है, लस्टर होता है, और फूल का क्वालिटी अच्छा नहीं।
0: आपसे पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र चियांकी के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश कुमार जी, आप कार्यक्रम से जुड़े और फूलों की खेती से संबंधित जानकारियां हमारे ग्रामीण भाइयों के साथ साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश कुमार से ली गई पूर्व प्रसारित भेंट का विषय था फूलों की खेती, और इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। इसी के साथ खेती बाड़ी कार्यक्रम से अब दीजिए।

अभी आप सुन रहे थे कृषकों को संबोधित कार्यक्रम खेती बारी। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम जननी। जननी सुनने वाले तमाम बहनों को नमस्कार। बहनों, आज इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले आपसे बातें करेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद आपको उर्वशी जायसवाल की एक वार्ता भी सुनवाएंगे, जिसका विषय होगा सफलता की सकारात्मक सोच। और इसी कार्यक्रम के तहत हम मनोरंजन भी करेंगे, यानी कि गीत संगीत भी होगा। तो चलिए सबसे पहले अभी बातें करते हैं कि बरसात के मौसम में खान पान में स्वच्छता ज़रूरी, इस विषय को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है बहनों, कि बरसात के मौसम में खान पान और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस मौसम में हवा और पानी में नमी के कारण बैक्टीरिया, वायरस और फंगस बहुत तेज़ी से पनपते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग, डायरिया, टाइफाइड और हैजा जैसी बीमारियों का खतरा दुगना हो जाता है। तो हम आपको बताते हैं बहनों कि कैसे इसमें हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और स्वच्छता को अपनाते हुए स्वस्थ रहें। जी हाँ बहनों, सबसे पहले तो बाज़ार से लाई गई हरी सब्जियों और फलों को हल्के गुनगुने पानी या नमक के पानी से अच्छी तरह धोएं। इनमें छिपे कीड़े और बैक्टीरिया साफ हो जाएंगे, ऐसा करेंगी आप तो। दूसरी बात बहनों, कि मानसून में खाना बहुत जल्दी ख़राब होता है, इसलिए हमेशा ताज़ा बना हुआ गर्म खाना खाएं। फ्रिज में रखे हुए खाने को भी अच्छी तरह गर्म करने के बाद ही खाएं, यानी कि ताज़ा भोजन ही खाएं। तीसरी बात बहनों, कि खाने को कभी भी खुला ना छोड़ें। मक्खियों और कीटों से बचाने के लिए भोजन को हमेशा साफ बर्तनों से ढक कर रखें। और रही बात कि भाई ठीक है ये सब तो ज़रूरी है ही, लेकिन किस बात से हम परहेज़ करें कि हम स्वस्थ रहें, तो बहनों हम आपको बता दें कि चाट, पकौड़ी, गोलगप्पा और खुले में बिकने वाले जूस से पूरी तरह दूरी बना लें। इस मौसम में बाहर का पानी और साफ सफाई की कमी आपको तुरंत बीमार कर सकती है। बहनों, बरसात में पालक, पत्ता गोभी और मेथी जैसी सब्जियों में कीड़े और नमी के कारण गंदगी चिपक जाती है। अगर इन्हें खाना ही है तो बहुत अच्छी तरह से उबालकर ही इन्हें पकाएं और तब जाकर आप खाएं और अपने परिवार को खिलाएं। बहनों, बाहर मिलने वाले कच्चे सलाद या कटे हुए फलों को खाने से बचें, क्योंकि इन पर बैक्टीरिया बहुत जल्दी हमला करते हैं। साथ ही मानसून मछलियों और अन्य समुद्री जीवों का प्रजनन काल होता है, जिससे इनके दूषित होने का खतरा भी बढ़ जाता है। और बहनों, अब रही बात कि और आगे क्या करना चाहिए, कुछ खाएं क्या पिए, इस तरह की बातें मन में आती है, तो हम आपको बता दें कि बरसात में सबसे ज़्यादा बीमारियां पानी से फैलती है। हमेशा पानी को इसीलिए उबालकर या अच्छे वाटर प्योरीफायर से फिल्टर करके ही पिए। अपनी डाइट में अदरक, लहसुन, हल्दी, काली मिर्च और लौंग जैसी चीज़ों को शामिल करें। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है। बहनों, चाय कॉफ़ी की जगह अदरक तुलसी की चाय, पुदीने का पानी या गर्म काढ़ा पिए, जो पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है। तो यदि आप इस तरह से अपनी सेहत के अनुसार इस तरह के डाइट को फॉलो करेंगी, इस तरह से डाइट को अपनाएंगी, तो निश्चित ही आप जो है स्वस्थ रहेंगी और साथ ही आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। तो फिलहाल बहनों, इन चर्चाओं के बाद चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं प्यारा सा।

0: ये तो इस गीत के बाद बहनों आइए हम सुनते हैं उर्वशी जायसवाल की वार्ता। विषय है सफलता के लिए सकारात्मक सोच।
1: सकारात्मक सोच से सफलता मिलती है। किसी व्यक्ति की जैसी सोच होती है उसी के मुताबिक काम की दिशा तय होती है। सही सोच भविष्य को संवारने का कार्य करती है। विचारशील व्यक्ति ही महत्वपूर्ण योजनाएं बनाकर सफलता प्राप्त करते हैं। विचार करके जिस दिशा में आप कदम रखेंगे उसमें मजबूती आएगी। सही विचार के लिए जरूरी है सकारात्मक सोच। यदि सोच सकारात्मक है तो आप सही मंजिल को पा ही लेंगे। व्यक्ति की सोच या नजरिया या विचार किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के पक्ष या विपक्ष में भावना की अभिव्यक्ति है। हमारी सोच से ज्यादा प्रभावी हमारे शब्द होते हैं। आप वही हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। आप अपने जीवन के बारे में जो बोलते हैं वैसा ही आपका जीवन होता है। जीवन का दृष्टिकोण बदलने में अहम भूमिका निभाते हैं विचार। अच्छे विचारों को ग्रहण करने तथा बुरे विचारों को निकाल हटाने के लिए दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। व्यक्ति चाहे गरीब हो या अमीर, शिक्षित हो या अशिक्षित, विचार जरूर करता है। व्यक्ति की सोच के अनुरूप ही कार्य की दिशा निर्धारित होती है। विचारशील व्यक्ति ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में योजनाएं बनाकर सफलता प्राप्त करते हैं। विचार करके जिस दिशा में भी कदम रखेंगे मजबूती होगी, तभी असफलता और निराशा रूपी विचार मन में होना सुख समृद्धि के विरुद्ध है। इसलिए मन में सदा उत्साह बनाए रखिए और निरंतर सुख समृद्धि की कामना करते रहिए। मन विचार रूपी खेत में समृद्धि के बीज बोएंगे तो समृद्धि काटेंगे और निराशा के बीज बोएंगे तो असफलता ही हासिल होगी। यानी विचार निराशाजनक नहीं होनी चाहिए, उसमें साहस, विश्वास और आशा के संगम होनी चाहिए। मेरे विचार से रास्ता खुद से बनाना चाहिए, लक्ष्य पर नजरें जमाना चाहिए। रास्ता खुद से बनाना चाहिए, नजरें खुद पर लक्ष्य पर नजरें जमाना चाहिए। है सदा संघर्ष जीवन में, मगर मुश्किलों में भी मुस्कुराना चाहिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक पेड़ से लाखों माचिस की तिलियां बनती है, लेकिन एक तिल्ली लाखों पेड़ों को जलाकर राख कर देती है। इसी प्रकार एक नकारात्मक विचार या शक आपके हजारों सपनों को जला सकता है। इसलिए आशावादी बनिए, क्योंकि यह अच्छे विचारों को विकसित कर हमें स्थिति को सुधारने की प्रेरणा देती है, जिससे हम एक बेहतर कल की उम्मीद करते हैं। सकारात्मक रहने का मतलब ये नहीं है कि आप समस्याओं के प्रति जागरूक ही न हो। रचनात्मक व्यक्ति अपने आसपास की किसी समस्या को उठाए तो उसके समाधान का प्रस्ताव भी आपका प्रयास होना चाहिए। समस्या आने पर उससे परेशान होने की बजाय उसका हल निकालने का प्रयास करना चाहिए। जब चारों तरफ नफरत, क्रोध, आपदा या अफवाह या फिर बुरा सपना, घटनाओं के में झूठी संवेदना और अपनापन दिखाने वाली खबरों की बजाय हमें सच्ची खबरों को देखना और सीखना होगा। इन विचारों से उबरने के लिए हम एक साधारण उपाय कर सकते हैं। उसी समय लंबी और गहरी सांस लीजिए। ऐसा आप 10 बार कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सांस हमारी भावनाओं के अनुसार बदलती जाती है। इससे घबराहट कम होगा और आपको अच्छा महसूस होने लगेगा। हमें हमारी पुरानी सोच या कहें नकारात्मक आदतें जिंदगी पर नकारात्मक असर छोड़ती है और हम कोई गलत कदम उठाने से भी नहीं चूकते। इसलिए परेशान ना हो। यदि बुरा होने का इंतजार करेंगे तो बुरा होने की संभावना होती है। ये काम बहुत कठिन है, ये काम हम नहीं कर सकते, इन बातों के स्थान पर ये काम हो जाएगा और मैं ये काम कर सकता हूँ जैसी भावनाएं लाएं। सकारात्मक सोच रखिए,

0: काम हो गया है सो हो गया, अब आगे अपनी कमियों में सुधार करूंगी, सब ठीक है, ऐसा अपने आप से कहकर दिमाग को भटकाने के बजाय बचाया जा सकता है। अब अगला मौका आने पर अच्छा करेंगे, ऐसा ऐसा ही मन में सोचें। ऐसा बहुत सी चीजें हैं जिस पर हमारा नियंत्रण ना हो, लेकिन यदि हम अपनी पूरी सामर्थ्य लगाएं और मन को उस काम को करने में लगाते हैं, तो आपका जीवन एक अलग तरह के प्रकाश से चमक उठेगा। आप जो बोलते हैं आपका दिमाग वही सुनता है, इसलिए हमेशा अपने लिए अच्छे, सरल और सुंदर शब्दों का प्रयोग करें। अपने जीवन के लिए आपने जो मार्ग चुना है उसमें आपको आनंद के साथ सफलता भी मिलेगी, इसलिए हमेशा अपने शब्दों में सकारात्मक रहें। अपने लिए कहें, मैं खुश हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, सकारात्मक हूँ। जिस दिन आप नकारात्मक चीजों से सकारात्मक पक्ष तलाशना सीख जाएंगे, इस दिन से आपको कोई भी आपका मनोबल कभी नहीं गिर सकता। हर काम में दो तरफा होना भ्रम की स्थिति पैदा करता है, जिससे आप अपने प्रगति पथ पर नहीं बढ़ सकते। भ्रम उलझन पैदा करता है करियर के चयन में या अवरोधक का काम करता है, इसलिए व्यक्ति अपना लक्ष्य तय नहीं कर पाता। यह व्यक्ति को डरपोक व लापरवाह बना देता है। आज बहुत से युवा करियर चयन के मामले में खुद को एकाग्रचित नहीं कर पाते। यह करूं या वह करूं, नौकरी करूं या व्यापार करूं, इस कोर्स को करूं या उसे करूं, जैसी भ्रम वाली स्थिति में फंसे रहते हैं। भ्रम के अनेकों कारणों में मुख्य कारण नकारात्मक सोच का होना है। नकारात्मक सोच संकीर्ण मानसिकता को जन्म देती है। इससे युवाओं का फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। इससे उबरने के लिए सकारात्मक सोच का होना बहुत जरूरी है। स्वयं में आत्मविश्वास पैदा करें। आज मानव अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण जैसे कई मुद्दे हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है। सकारात्मक सोच विचार के साथ आगे बढ़े तो जाति प्रथा, दहेज प्रथा, रंग भेदभाव, बाल विवाह आदि कई सामाजिक कुरीतियों को जड़ से हटाने के लिए समाज के हित में काम करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो जागृत हो, क्योंकि हमारी सकारात्मक सोच ही हमारी ऊर्जा है, हमारी संपत्ति है। इसलिए सफलता की ऊंचाइयों को छूने के ख्वाब रखने वाले पहले खुद को शिक्षित करें और देश और समाज के हित के लिए भी सकारात्मक सोच लिए अपनी योग्यताओं और अनुभवों को बेहतर तरीके से साहस के साथ संघर्ष कर चुनौतियों का सामना करते हुए अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। नकारात्मक चिंतन वाला व्यक्ति तिरस्कार का भागी होता है, उससे मिलने को किसी को प्रसन्नता नहीं होती। आशावादी बनिए, क्योंकि यह अच्छे विचारों को विकसित कर हमें स्थिति को सुधारने की प्रेरणा देती है, जिससे एक बेहतर कल की उम्मीद करते हैं। आशावादी विचारों को मन में रखकर निरंतर दोहराते रहें, आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके कदम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। बस आखिर में मैं यही कहना चाहती हूँ कि सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, जो मन में हो ख्वाब उसे न तोड़ना, हर कदम में कामयाबी मिलेगी तुम्हें, बस सकारात्मक सोच लिए बेहतर कल को जोड़ना।
1: मैंने अभी आपने सुना उर्वशी जायसवाल की वार्ता, विषय था सफलता के लिए सकारात्मक सोच। और अब आइए एक बार फिर से चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं प्यारा सा गीत।

इसी गीत के साथ अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम जननी, आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र का प्रसारण।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आपकी चाय। EMI किराया कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। कैसे? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा। इतना इजी? काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है। इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है। ना भाई ना।
2: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: बच्चा सिर्फ पैदा नहीं करना है हमें, उस पे लाड भी बरसाना है।
5: हाँ, इसलिए पहले खुद तरक्की करेंगे, 4 पैसे जोड़ेंगे, फिर करेंगे बच्चा,
4: जिम्मेदारी निभाएंगे, यही है हमारा प्लान।
6: भविष्य की खुशियाँ प्लान कीजिए,

0: सोच के बच्चा पैदा कीजिए तो बनेगा एक खुशहाल परिवार। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।
1: परिवार नियोजन के तरीकों के उपयोग से पहले अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से राय जरूर लें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: तुम खेत पर काम कर रहे हो?
4: हाँ भाई, और तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो?
3: पिछले हफ्ते ही तो तुमने एनएसबी कराई है।
4: अरे इससे कोई कमजोरी नहीं होती, न चीरा न टाका, मात्र 10 मिनट का काम। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी कार्य दिवस की हानि नहीं होती है। अरे अरे अरे कहाँ चल दिए?
3: एनएसबी कराने।
4: पुरुष नसबंदी यानी एनएसबी की सुविधा हर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
6: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गाँव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
5: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल संतोष गंगवार ने आईआईटी आईएसएम धनबाद में कार्यशाला को किया संबोधित, कहा जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण बड़ी चुनौती। दुमका के रेशम किसान शंभुनाथ देहरी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित, प्राइवेट ग्रेन्योर श्रेणी में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रदान किया पुरस्कार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर सियासी बयानबाजी तेज, प्रदेश भाजपा ने जताई आपत्ति, कांग्रेस ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर हिस्सों में अगले 4 से 5 दिन तक बारिश, तेज हवा और वज्रपात की जताई संभावना। और 20वें एशियाई खेलों में भारत की शानदार शुरुआत, पहले दिन मिले 2 रजत पदक, महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंची भारतीय टीम। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज धनबाद में आईआईटी आईएसएम में आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यशाला को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार के साथ समाज, शिक्षण संस्थानों, वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और आम लोगों की भागीदारी जरूरी है। राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण और स्वास्थ्य आपस में जुड़े हैं और प्रदूषण का सीधा असर मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है।
8: पर्यावरण संरक्षण भी जुड़ा हुआ है, देश को इसकी बहुत आवश्यकता है और ये पूरे देश में वाटर लेवल डाउन हो रहा है, पानी और नीचे जा रहा है। ये सब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई बातें हैं, चाहे पर्यावरण संरक्षण हो, चाहे वाटर लेवल डाउन हो रहा हो, चाहे जिस ढंग से मौसम बदल रहा है अपने आप को, पूरे देश में ऐसा काम हो रहा है तो इस और सभी सरकारों को चिंता करने का विषय।
7: इधर राज्यपाल ने रांची के बेड़ों में कर्म पर्व पूर्व संध्या समारोह में प्रदेशवासियों को कर्मा पूजा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व जनजातीय संस्कृति और प्रकृति से गहरे संबंध का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि कर्म पर्व की कथाएं अच्छे कर्म, भाईचारे का संदेश देती है और जलवायु परिवर्तन के दौर में प्रकृति संरक्षण का इसका संदेश और प्रासंगिक है। केंद्रीय रेशम बोर्ड के 77वें स्थापना दिवस समारोह में दुमका के रेशम किसान शंभुनाथ देहरी को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। उन्हें प्राइवेट ग्रेन्योर यानी निजी बीज उत्पादक श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बेंगलुरु के गांधी कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित समारोह में उन्हें यह सम्मान दिया। इस उपलब्धि से झारखंड के रेशम किसानों और राज्य का राष्ट्रीय स्तर पर गौरव बढ़ा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर रांची में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कार्यक्रम को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इसमें प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया गया है और देश की माताओं का अपमान किया गया है।
9: अब राहुल गांधी की झूठ की गूंज की मर्यादा इतनी गिरती जा रही है हर दिन कि इस बार तो उन्होंने देश की माताओं का अपमान कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने एक सभा में एक माँ, बूढ़ी माँ जो खड़ी थी, उनको कुर्सी देने के लिए कह दिया। उसकी उनके यहाँ जो आर्टिस्ट थे वो मिमिक्री कर रहे थे और राहुल गांधी इतने खुश दिख रहे थे और ये कह रहे छात्रों की आवाज को हम दबा देते हैं। ये छात्रों की गूंज की बात कर रहे हैं, ये छात्रों को उस समय सिपाहियों के बूटों से रौंदवाने वाली सरकार थी।
7: वहीं झारखंड कांग्रेस के नेता राकेश सिन्हा ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा इस मुद्दे पर गलत आरोप लगा रही है।
10: अब भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरह से विक्षिप्त हो चुके हैं जब से छात्रों की गूंज शुरू हुई है, क्योंकि उन्हें यह लग रहा है कि जो जैन जी हैं वो अब हमारा तख्ता पलट करने को लेकर के पूरी तरह से तैयार है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम की सफलता ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पच नहीं पा रही है, क्योंकि इन लोगों ने पूरी तरह एजुकेशन के सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया है।
7: जमशेदपुर में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार के जवाबी हलफनामे और पूर्व की सीआईडी जांच पर सवाल उठाए। उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों की भूमिका की स्वतंत्र जांच की मांग की। साहिबगंज जिले में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुलाम हैदर ने कहा कि दुर्घटना पीड़ितों को समय पर मुआवजा दिलाने के लिए पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज इस कड़ी में हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्राकृतिक खेती पर जोर दिया है।
11: भारत में हमें नेचुरल फार्मिंग पर बल देना होगा। नेचुरल फार्मिंग से केमिकल फ्री प्रोडक्ट से दुनिया के बाजार तक पहुंचने में हमारे लिए एक राजमार्ग बन जाता है। उसके लिए सर्टिफिकेशन, लेबोरेटरी, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार सोच रही है, लेकिन आप लोग इसमें भी जरूर अपने विचार रखें।
7: केंद्र सरकार के राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत झारखंड में 11,500 से अधिक किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं। राज्य में करीब 4,587 हेक्टेयर क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के तहत लाया गया है। यहाँ के किसान प्राकृतिक खेती से फसलें उगा रहे हैं। चतरा जिले के एक किसान बीरेंद्र साहू ने वैज्ञानिक तरीके से स्ट्रॉबेरी की प्राकृतिक खेती के बारे में बताया।
12: प्राकृतिक खेती के रूप में स्ट्रॉबेरी का खेती हम कैसे करेंगे, तो स्ट्रॉबेरी जो लगाने का वक्त है 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तो नवंबर तक हम लोग उसको लगाएंगे। और पौधा स्वस्थ रखने के लिए अगर खाद की जरूरत हमें पड़ता है तो जो घर की गाय उसका गोबर अगर हम यानी कि 60 डिसमिल पानी पटाना है तो 10 किलो गोबर को हम सड़ाएंगे और सड़ाने के बाद सूती कपड़ा पूरा निचोड़ के जो उससे लिक्विड प्राप्त होगा उसको हम ड्रिप के माध्यम से पानी हम चलाएंगे और उससे हमारा पौधा को 16 तत्व प्राप्त होता है और इस तरह से हम लोग प्राकृतिक खेती करते हैं।
7: देवघर जिले के शिवगंगा क्षेत्र में भादो मेले के दौरान दुकानदारों से कथित रंगदारी वसूली और हथियार के बल पर धमकाने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने आज बताया कि आरोपितों की निशानदेही पर एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, सीसीटीवी कैमरा और DVR बरामद किया गया है। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर हिस्सों में 25 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है।

0: स्तर पर सम्मानित प्राइवेट ग्रेन्योर श्रेणी में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रदान किया पुरस्कार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर सियासी बयानबाजी तेज, प्रदेश भाजपा ने जताई आपत्ति, कांग्रेस ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर हिस्सों में अगले 4 से 5 दिन तक बारिश, तेज हवा और वज्रपात की जताई संभावना। और 20वें एशियाई खेलों में भारत की शानदार शुरुआत, पहले दिन मिले 2 रजत पदक, महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंची भारतीय टीम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
2: अनक्लेम डिपॉजिट्स मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो, ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
1: RBI कहता है जानकार बनिए,
2: सतर्क रहिए।
3: अरे छुटकी तो 10 साल की हो गई है, उसका लगन जल्दी करना अच्छा होगा।
4: ठहरिए, कम उम्र की लड़की का शरीर माँ बनने के लिए तैयार नहीं होता।
3: 20 साल से अधिक उम्र में बच्चा होने से माँ और शिशु की मृत्यु का खतरा कम रहता है।
4: माँ में बच्चे के पालन पोषण की समझ रहती है।
3: 18 वर्ष से पहले और 35 वर्ष के बाद गर्भ धारण करने से माँ और बच्चे के लिए खतरा बढ़ जाता है।
4: गर्भ का निश्चित होते ही आंगनबाड़ी केंद्र जाएं और अपना नाम गर्भवती माताओं के रजिस्टर में लिखाएं।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
6: मैंने कहा ना, मैं अपनी बिटिया की शादी अभी नहीं करूंगी। अरे उसकी उम्र अभी कच्ची है।
4: जी हाँ, कानून भी यही कहता है, शादी के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए।
3: शादी के लिए सही शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक विकास जरूरी है।
4: सही उम्र में शादी होने से लड़की अपना वैवाहिक जीवन बेहतर बना सकती है।
3: याद रखें, लड़की की शादी की सही उम्र 18
4: और लड़के की 21 वर्ष है।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
7: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे सरायकेला खरसावां जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे सरायकेला संवाददाता।
1: जिला मुख्यालय सरायकेला के भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम में विषम गुरु शिव सोरेन की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर चल रहे विवाद का पटाक्षेप हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा प्रतिमा को अन्य स्थान पर स्थापित करने की बात कहे जाने के बाद जिले के आदिवासी मूलवासी संगठनों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। राष्ट्रीय कोल सेना के केंद्रीय अध्यक्ष विष्णु बांडा ने कहा कि
2: विगत दिनों जो मामला हमारा सरायकेला में बिरसा स्टेडियम को लेकर के ये तूल पकड़ा हुआ था और कहीं ना कहीं ये हमारे समाज इस बात को बहुत बृहद रूप से उठाया कि जो सरकार में लोग हैं वो लोग ने डिसीजन लिया था, भूमि पूजन किया था, स्टैचू हम लोग लगाएंगे और सभी संगठन समाज को इसका सूचना प्राप्त होने के बाद सभी एक बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया है और बैठक करके इसको डीसी महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए लोग तैयार हो गए।
1: आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 17 स्थित हरियम नगर में सड़क और नाले निर्माण नहीं होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। समस्या को लेकर वार्ड पार्षद नीतू शर्मा ने उपायुक्त से मुलाकात कर सड़क और नाले निर्माण की मांग रखी। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की परेशानी को देखते हुए जल्द इस दिशा में पहल की जरूरत है। वार्ड संख्या 17 के पार्षद नीतू शर्मा ने कहा कि
3: वार्ड 17 से हरिओम नगर पाइप भी जो बरसों से कच्ची सड़क नहीं हुआ है, अब तक न नाली बना हुआ है न जनहित के काम के लिए सड़क बना हुआ है और तकरीबन दो बार इसके पूर्व में भी हमने प्रयास किया, मेरे जनता ने प्रयास किया था तो नगर निगम के द्वारा टेंडर करा दिया गया था लेकिन कहीं ना कहीं आवास बोर्ड अपनी निजी संपत्ति बना करके उस काम को रोक देते हैं, बाधा डाल देते हैं।
1: समाज में डायन बिसाही जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए जिला विधिक सभा प्राधिकार लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। पंचायतों में लीगल अवेयरनेस कैंप लगाकर लोगों को कानूनी जानकारी दी जा रही है। जिला विधिक सभा प्राधिकार के सचिव तौसीफ मेराज ने कहा कि

0: जागरूकता के जरिए ऐसी कुप्रथाओं पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने अधिकारों और कानून की जानकारी देकर इस कुप्रथा से जुड़े मामलों को कम किया जा सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव तौसीफ मेराज ने कहा कि
1: पंचायतों में जाकर के लीगल अवेयरनेस कैंप किया जाए ताकि लोगों को इस बुराई से रोका जा सके, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि डायन बिसाही जो प्रथा है उसका मेन कारण होता है जमीन विवाद। किसी महिला या पुरुष को डायन का लेवल लगा करके उसके साथ अत्याचार की जाती है केवल और केवल जमीन हड़पने के लिए, उसकी भूमि को हड़पने के लिए। तो मेनली डायन बिसाही एक ऐसा अभिशाप है जिसमें समाज को खोखला कर देता है।
0: डायन प्रताड़ना के मामलों में पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार हमेशा तत्पर है। पीड़ितों को मुफ्त कानूनी सहायता के साथ साथ उनके अधिकारों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी भी दी जाती है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकला खरसावां।
2: अभी आप सुन रहे थे सरायकेला खरसावां जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप हमारे रांची केंद्र का प्रसारण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। अब लीजिए पेश है गीत एवं गजलों का प्रोग्राम स्वरांजलि। आज के हमारे फनकार हैं भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ों में चंद गज़लें, और इसी के साथ स्वरांजलि प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 MHz पर। आइए अब सुने कुछ नागपुरी लोकगीत कार्यक्रम महुआ के तहत। गायक कलाकार हैं बशीर अंसारी और साथी।

झमका ले रे नवा नवा याले हाय रे नवा नवा याले माया पहरी झमका ले रे सिसाई थाना गदिल घर कुला के डो बाले हाय रे कुला के डो बाले अरे सिसाई थाना गदिल घर कुला के

बशीर अंसारी और साथियों के स्वर में अभी आप सुन रहे थे नागपुरी लोकगीत। इसी के साथ महुआ कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब लीजिए पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से।

नीच धारे जो जाओ तो जय पे करो उस पारी।

श्रोताओं, चित्रपट से कार्यक्रम के तहत अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गाने। फिल्में थीं फागुन, लाजवंती, साहेब बीवी और गुलाम, ये रास्ते हैं प्यार के, मुझे जीने दो, कश्मीर की गली, दूर गगन की छाँव में, चांद और सूरज, मेरे सनम और वक्त। और इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार।

जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया।

0: उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। मॉस्को सहित रूस के विभिन्न इलाकों में 1000 से अधिक ड्रोन दागे, एक तेल शोधन संयंत्र को भी निशाना बनाया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वहीं पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।
1: क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडायवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को खेतों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं। इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
0: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण में आम लोगों और युवाओं की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है। ये पहला अवसर है जब किसी द्विपक्षीय अभ्यास के तहत जापानी लड़ाकू विमान भारत की धरती से उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इसे भारत जापान रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
2: The Japanese fighters have operating from Indian soil for the first time.
3: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस

0: चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और उस समय हम ये अवसर गंवा बैठे। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
1: उधर जापानी वायुसेना प्रमुख जनरल मोरिता ने भारतीय मेहमान नवाजी की प्रशंसा की और तेजस को भारत के मेक इन इंडिया अभियान तथा तकनीकी नवाचार का एक बेहतरीन प्रतीक बताया। 9 सितंबर से शुरू हुआ वीर गार्जियन अभ्यास 22 सितंबर तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC के प्रमुख ब्रिजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्रिजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जाँच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रूपए का इनाम घोषित किया था।
3: ब्रिजेश गंजू करीब 2 दशक से फरार था। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले समेत 50 से अधिक मामले दर्ज थे। इनमें नागरिकों और पुलिस कर्मियों की कथित हत्या के मामले भी शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मुठभेड़ में शामिल ATS टीम के लिए 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। ब्रिजेश गंजू पर घोषित 30 लाख रुपए के इनाम में झारखंड पुलिस ने 25 लाख और NIA ने 5 लाख रुपए की राशि रखी थी। महवीश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और समाज के सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे अत्याधुनिक सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्रों की। इन केंद्रों में देश विदेश के बड़े सम्मेलन, प्रदर्शनियां और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये आधुनिक परिसर भारत के मजबूत होते बुनियादी ढांचे और वैश्विक स्तर पर बढ़ती उसकी क्षमता को दर्शाते हैं।
4: भारत मंडपम और यशोभूमि भारत के विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन परिसर हैं। इन्हें भारत को माइस यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि का उद्घाटन किया था। इसके कन्वेंशन सेंटर में मुख्य सभागार, ग्रैंड बॉल रूम और 13 बैठक कक्ष समेत कुल 15 कन्वेंशन कमरे हैं। इनमें एक साथ करीब 11,000 प्रतिनिधियों के बैठने की क्षमता है। भारत मंडपम को प्रधानमंत्री ने जुलाई 2023 में राष्ट्र को समर्पित किया था। यहाँ G20 शिखर सम्मेलन और हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। भारत मंडपम के बहुउद्देशीय हॉल और प्लेनरी हॉल में कुल 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। यह क्षमता ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध सिडनी ओपेरा हाउस की बैठने की क्षमता से भी अधिक है। भारत मंडपम के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा था कि इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों को भी सुविधा मिलेगी।
5: भारत मंडपम देश विदेश के बड़े बड़े एग्जीबिटर्स को मदद करेगा। भारत मंडपम देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। भारत मंडपम

0: हमारे स्टार्टअप्स की शक्ति को शोकेस करने का माध्यम बनेगा। भारत मंडपम हमारे सिनेमा जगत, हमारे आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस का साक्षी बने। भारत मंडपम हमारे हस्तशिल्पियों, कारीगरों, बुनकरों के परिश्रम को प्लेटफॉर्म देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनने वाला है।
1: आज भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों ही देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के सबसे बड़े केंद्रों के रूप में उभर चुके हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने मेरठ में आयोजित दो दिवसीय एयर शो में शानदार हवाई प्रदर्शन किया। टीम के 9 हॉक MK-132 विमानों ने एक साथ उड़ान भरते हुए रोमांचक प्रदर्शन किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एयर शो देखा और सूर्य किरण टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है।
3: सूर्य किरण एरोबेटिक जो टीम है उसका अद्भुत साहस और भारतीय वायुसेना का पराक्रम तो दुनिया लोहा मानती है और दुनिया के 800 जगह इन्होंने शो किए हैं। हम सब प्रेरणा लेते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। वही मोटिवेशन भारत की सेना को हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, जिनका हमेशा रहता है कि कैसे भारतीय पूरे डिफेंस सेक्टर को इंडिजिनस करना, उनको मजबूत करना।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन में बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। एक रिपोर्ट।
4: मेयर सोबियानिन के अनुसार मॉस्को क्षेत्र में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हुई जबकि 20 अन्य घायल हो गए। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेनाओं ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के तेल और लॉजिस्टिक्स ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई तरह की मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में यूक्रेन में ही बनी फ्लेमिंगो और पेलिकन मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। पिछले सप्ताह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए दावा किया था कि दोनों पक्ष बुनियादी ऊर्जा ढांचों पर हमला न करने के लिए सहमत हो गए हैं। इसके बावजूद रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से एक दूसरे के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले अब भी लगातार जारी हैं। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
2: रूस में ये नया हमला ऐसे समय में हुआ है जब वहाँ 3 दिवसीय संसदीय चुनाव का आखिरी चरण जारी था। इस बीच यूरोप के वरिष्ठ अधिकारियों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेलिन वलारेवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने इसी प्रतियोगिता में महिला टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। एलावेलिन वलारेवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को यह पदक दिलाया। उधर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और तन्वी शर्मा की भारतीय महिला टीम ने बैडमिंटन में प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तारियाल ने पारंपरिक श्रेणी के 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया और हॉकी में भी भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने आज अपने अपने मैच जीते। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. President Draupadi Murmu calls for stronger climate action and global cooperation.

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कुदरती आफात के बढ़ते हुए हादसात से निपटने के लिए आबोहवा से मुतल्लिक मजबूत तर कार्रवाई और आलमी ताबुन पर जोर

0: दिया है। उन्होंने नई दिल्ली में माहौलियात और आबो हवा के महरिकात के मुस्तकबिल से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। भारत और जापान के फजाई सरबराहान ने जोधपुर में मुश्तरका फजाई मशक के दौरान तेजस तैयारों की परवाजें की। भारतीय फजाइया के सरबराह ने कहा कि भारतीय सरजमीन से जापानी जंगजू तैयारे की अभी तक की ये पहली परवाज दिफाई ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। एक नक्सल कमांडर जिस पर 30 लाख रुपए का इनाम था वाराणसी में दहशतगर्दी की रोकथाम के उत्तर प्रदेश स्क्वाड के साथ एक झड़प में मारा गया। यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं जो अभी तक का सबसे बड़ा हमला है। इन हमलों में मास्को और तेल रिफाइनरी पर दागे गए सैकड़ों मिसाइल भी शामिल हैं। और एशियाई खेल मुकाबलों में भारत ने निशानेबाजी में चांदी के 2 तमगे जीते हैं। खवातीन क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई है और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गई है। मर्दों और खवातीन की हॉकी टीमों ने जापान में अपनी कारकर्दगी का आगाज जीत के साथ किया। और अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हालिया दिनों में बार बार रोनुमा होने वाली कुदरती आफात की वजह से आबो हवा से मुतालिक मजबूत इकदाम और आलमी तआवुन की फौरी जरूरत है ताकि आबो हवा की तब्दीली के मुजिर असरात से निपटा जा सके। सदर जमहूरिया आज शाम नई दिल्ली में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से मुनक़िदा माहौलियात और आबो हवा के महरिकात के मुस्तकबिल के बारे में 2 रोजा कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी जलसे से खिताब कर रही थी।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: सदर मुर्मू ने कहा कि आबो हवा की तब्दीली से इंसानी जिंदगी में मुख्तलिफ पहलुओं से अदम तवाजुन पैदा हो रहा है जिनमें हयातियाती तनव पानी की दस्तियाबी और जमीनी वसायल भी शामिल हैं।
1: क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को खेतों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं। इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
0: भारतीय फजाइया के सरबराह मार्शल एपी सिंह और जापानी फजाइया JASTF के सरबराह जनरल ताकेहिरो मोरिता ने आज जोधपुर में फजाई करतब के दौरान मुल्क में ही तैयार किए गए हल्के जंगजू तैयारे तेजस की परवाज की। दोनों सरबराहान ने ये परवाजें साथ साथ की। दोनों मुल्कों के फजाई सरबराहान ने ये परवाजें भारतीय फजाइया और जापानी फजाइया की मुश्तरका फजाई मश्क वीर गार्डियन 2026 के तहत अंजाम दी। ऐसा पहली बार है कि जापानी फजाइया के जंगजू तैयारे इस दो तरफा मश्क के तौर पर भारतीय सरजमीन पर परवाज कर रहे हैं जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई शराकत दारी में मजीद गहराई लाना है। फजाइया के सरबराह एपी सिंह ने इस मशक को भारत जापान दिफाई ताल्लुकात में एक बड़ा संग मील करार दिया है। भारतीय फजाइया के सरबराह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेजस की परवाज का जनरल मोरिता का फैसला भारत में तैयार करदा जंगजू तैयारे पर उनके एतमाद की एक वाजह मिसाल है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का फजाई शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है जिसमें तहकीक व तरक्की और तैयारे तैयार किया जाना भी शामिल है। वीर गार्डियन 2026 मशक का आगाज 9 सितम्बर को हुआ था और ये 22 सितम्बर को इख्तिताम पजीर हो जाएगी। भारतीय फजाइया की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने मेरठ में एक फजाई शो के तहत एक सहरंगेज कारकर्दगी का मुजाहरा किया जिसमें 9 हॉक MK-132 सैयारों ने एक दूसरे के काफी करीब रहते हुए करतब पेश किए। दिफाई उमूर के वजीर मुमलिका संजय सेठ ने इस शो का नजारा किया और टीम की ये कहते हुए तारीफ की कि इस फजाई शो का मकसद नौजवानों को तहरीक देना है कि वो फौज में शामिल हों। ये 2 रोजा फजाई शो कल शुरू हुआ था। वजारत दिफा ने बताया कि तलबा NCC कैडेट्स और नेशनल सर्विस स्कीम NSS के रजाकारों समेत 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस शो का नजारा किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सेठ ने इस तकरीब को उसूल पसंदी एहतियात से की जाने वाली कार्रवाई तालमेल के साथ किए जाने वाले काम पेशावाराना महारत का एक काबिल जिक्र इम्तजाज और भारतीय फजाइया की शानदार सलाहियतों का एक सबूत करार दिया। उत्तर प्रदेश के इंसदादे दहशतगर्दी दस्ते ATS ने आज वाराणसी में एक बड़ी कार्रवाई के दौरान झारखंड की ममनुआ इंतहा पसंद तंजीम तृतीय प्रस्तुति कमेटी टी

0: राजीव कृष्णा ने इस एनकाउंटर में शामिल एटीएस टीम के लिए 2 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। गंजू के लिए ऐलान करदा कुल इनामी रकम में से 25 लाख रुपए झारखंड पुलिस की जानिब से मुकर्रर किए गए थे, जबकि एनआईए ने 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया था। यूक्रेन ने रूस पर रात भर 1000 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें मॉस्को को निशाना बनाकर किए गए सैकड़ों ड्रोन हमले भी शामिल हैं। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर किया गया अब तक का सबसे बड़ा हमला करार दिया है और एक तेल रिफाइनरी और एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचने की भी इत्तला है। जनाब सोबियानिन ने बताया कि मॉस्को के वसी इलाके में इस हमले से 2 अफराद हलाक और 20 जख्मी हुए हैं। रूस की वजारत दिफा ने बताया कि उसकी फौजों ने मुल्क में 1100 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनके मुल्क ने इस हमले में तेल और लॉजिस्टिक ठिकानों पर बहुत से मिसाइल और ड्रोन दागे थे, जिनमें यूक्रेन के अपने बनाए हुए मिसाइल भी शामिल थे। पाकिस्तानी हुक्काम ने जेल में कैद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान को आज गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें अगले हफ्ते उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी पीटीआई की तरफ से एक मनसूबा बंद एहतजाज से पहले गिरफ्तार किया गया है। अलीमा खान को लाहौर में गिरफ्तार किया गया और कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया। वो अपने 73 साल भाई की रिहाई के लिए मुहिम चला रही हैं, जो 2023 से कैद में हैं। लाहौर के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज ने पंजाब में अवामी नज्म व नस्क के 1960 के हुक्म इम्तनाई के तहत उन्हें 30 दिन के लिए हिरासत में रखने का हुक्म दिया है। इस कानून के तहत हुक्काम को यह अख्तियार हासिल है कि वो ऐसे अफराद को हिरासत में ले लें जो अवामी जगहों और नज्म व नस्क के लिए खतरे का सबब बन गए हैं। खान की पीटीआई पार्टी साबिक क्रिकेटर और सियासतदान की रिहाई के लिए हुकूमत पर दबाव बनाने के मकसद से 27 सितम्बर को एक एहतजाज का मनसूबा बना रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं। एक ऐसा सफर जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इसका सिलसिला जारी है। सेवा से सुशासन के नजरिए से तहरीक पाकर हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के हदफ की खातिर मुसलसल काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम इस बारे में मालूमात फराहम करेंगे कि भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे जदीद तरीन और आला मेयार के कन्वेंशन और नुमाइशगाहों के जरिए इस विजन को किस तरह अमली जामा पहनाया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारत मंडपम और यशोभूमि भारत के आलमी मयार के नुमाइश और कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में जिनका मकसद भारत को माइस यानी इजलास, तरगीबात, कॉन्फ्रेंसों और नुमाइशों के शोबे में आलमी रहनुमा के तौर पर पेश करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में नई दिल्ली के द्वारका इलाके में यशो भूमि का इफ्तिताह किया था। इसमें 15 कन्वेंशन रूम्स हैं और 11,000 मंदूबीन की गुंजाइश है। वज़ीर-ए-आज़म ने जुलाई 2023 में भारत मंडपम मुल्क के लिए वक्फ किया था। भारत मंडपम में G20 सरबराह मीटिंग और हाल ही में मुनक़दा ब्रिक्स सरबराह मीटिंग जैसे अहम आलमी इज्तिमात मुनक़द हो चुके हैं। इसके शानदार हॉल में मजमूई तौर पर 7,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश है, जो ऑस्ट्रेलिया के मशहूर सिडनी ओपेरा हाउस की गुंजाइश से भी ज्यादा है। भारत मंडपम का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा था कि ये कन्वेंशन सेंटर मुल्क में कॉन्फ्रेंसों से मुतालिक सियाहत को फरोग देगा।
2: भारत मंडपम देश विदेश के बड़े बड़े एग्जिबिटर्स को मदद करेगा। भारत मंडपम देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। भारत मंडपम हमारे स्टार्टअप की शक्ति को शोकेस करने का माध्यम बनेगा। भारत मंडपम हमारे सिनेमा जगत, हमारे आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस का साक्षी बने। भारत मंडपम हमारे हस्तशिल्पियों, कारीगरों, बुनकरों के परिश्रम को प्लेटफॉर्म देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनने वाला है।
1: आकाशवाणी से बात करते हुए एक तालिबे इल्म ऋतिक, जिसने भारत मंडपम में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की है और रजाकाराना तौर पर खिदमात अंजाम दी हैं, बताया कि इस आलमी मयार के मकाम ने भारत में तकरीबात के मंजरनामे को यकसर बदल कर रख दिया है। आज भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों ही मुल्क में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के सबसे बड़े मराकज बन चुके हैं। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر امریکہ کے نیویارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اعلیٰ سطح کے اجلاس کے دوران بھارتی وقت کی قیادت کریں گے۔ وزیر خارجہ اس ماہ کی 26 تاریخ کو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था।

0: आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मेम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार।

महेश भट्ट, फिल्म जगत की एक ऐसी शख्सियत जिनकी प्रतिभा के कई आयाम हैं। महेश भट्ट एक नामचीन निर्माता निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन फिल्म क्राफ्ट के दूसरे पहलुओं पर भी उनकी मजबूत पकड़ है। महेश भट्ट ने कथा, पटकथा लिखी, संवाद लिखे और कार्यकारी निर्माता की भूमिका भी निभाई।

0: महेश भट्ट 1949 में मुंबई में जन्मे और मुंबई में ही पले बढ़े। यहीं उन्होंने पढ़ाई की। महेश भट्ट के पिता नाना भाई भट्ट का शुमार फिल्म जगत के नामचीन फिल्मकारों में होता है।
1: इस बात का एहसास हो गया था कि पिताजी का वक्त जो है ठीक नहीं चल रहा है, हालात ठीक नहीं है, तो एक जिम्मेदार बेटे होने के नाते मैंने काम काज करने की कोशिश की। कहीं पर एक जिद थी अपनी एक पहचान क्रिएट करने की, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी मेरे लिए वो था कि पैसा कमाऊं किसी तरह। मैं पढ़ाई लिखाई में इतना ब्राइट था नहीं, तो काम वहाँ मिला नहीं ज़्यादा, तो क्योंकि फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ था तो फिल्म लाइन में नौकरी मिल गई, और वहाँ पर बड़ी मेहनत से काम किया, शिद्दत से बहुत अपने आप को पेश किया हर डिपार्टमेंट में। वहाँ पर मेरे भाग्य ठीक थे। जॉनी बख्शी साहब ने मुझे एक दिन आके कहा, मैं दो चोर एक फिल्म थी उसके सेट पर क्लैप दे रहा था, तो उसने कहा कि ये सीन खत्म हो जाए तो बाहर आके जरा मिलने मुझसे। तो मैं बाहर गया तो वहाँ एक व्यक्ति थे, श्री कुलदीप तलवार साहब उनका नाम था। उन्हें कहा ये फिल्म प्रोड्यूसर हैं, ये फिल्म बनाना चाहते हैं, तो मुझे समझ नहीं आया मेरा इससे क्या लेना देना। तो जॉनी साहब ने कहा कि भाई मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, क्या तुम फिल्म डायरेक्ट कर लोगे? तो मैंने बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो

कोई नहीं कर सकता दुनिया में, फिल्म डायरेक्ट। और मुझे लकीली ब्रेक मिल गया। फिल्म नहीं बनी, उसका नाम था मुक्ति, उसके दो दिन की शूटिंग हुई थी। विनोद खन्ना साथ थे उसमें और श्री शत्रुघ्न सिन्हा साथ थे, मगर फिल्म दो दिन की शूटिंग के बाद बंद हो गई। धक्के खाए यहाँ वहाँ, और लकीली एक हमको एक बिल्डर मिल गए, मिस्टर आर एच जैन उनका नाम था, और उन्होंने जॉनी साहब को कुछ पैसे वैसे दिए फिल्म बनाने के लिए। मंजिलें और भी हैं शुरू हुई, फ्लॉप हो गई, विश्वासघात बनाई, फ्लॉप हो गई। नया दौर एक फिल्म थी जिसमें ऋषि कपूर थे, वो भी फ्लॉप हो गई। लहू के दौरान मैं बहुत काम किया, वो फिल्म के गाने वाले अच्छे थे, बहुत बड़ी मेकिंग थी उसकी। विनोद खन्ना साहब की एक स्टारडम में एक डे बाई डे एक राइज आ रहा था, मगर वो फिल्म भी नहीं चली। और लगा कि भैया कि अब हमारा जो है रिटर्न बैक टू पवेलियन है, पैकअप है। उम्र थी मेरी 28-29-30 साल के आसपास ही, 8 years wasted। उस वक्त एक इंटरेस्टिंग दौर से गुजरा था रजनीश, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक फिल्म एक्ट्रेस के साथ में, वो सारे अनुभव कहीं पर मैंने उसको निचोड़ कर एक फिल्म बनाई, अर्थ।

एक नई शुरुआत हुई अर्थ से। अर्थ जब कामयाब हुई तो ये आदमी जिसकी ऑब्चुरी लिख दी गई थी उसका एक पूर्ण जन्म हुआ। रेस्ट इज हिस्ट्री।

नजर। अर्थ जैसी गंभीर फिल्म से बतौर फिल्मकार महेश भट्ट ने फिल्म समीक्षकों और दर्शकों के एक खास वर्ग से शाबाशी पाई और ये साबित किया कि महेश भट्ट कलात्मक सिनेमा की भी गहरी समझ रखते हैं। ये विश्वास और पुख्ता हुआ उनकी एक और मर्मस्पर्शी फिल्म से। ये थी सारांश।

एक शेर है कि फैज साहब का मेरे ख्याल में है कि एक कड़ा दर्द जो गीत में ढलता ही नहीं, दिल की तारीकियों से उतरता ही नहीं, वो लगता है कि एक सैमुअल बेकेट साहब थे, वो कहते थे कि इवन बिफोर द इंक हैज ड्राइड ऑन द पेपर आई एम फिल्ड विद दिस फीलिंग ऑफ रिवल्शन, कि स्याही के सूखने से पहले एक फीलिंग आती है लेखक में कि जो मैं कहने निकला था कहीं मैं वो कह नहीं पाया हूं, तो वो तकलीफ, वो सारी जो एक जो जो एक इम्पल्स जो आपको मजबूर करता है एक लेख लिखने के लिए या कविता लिखने के लिए या फिल्म बनाने के लिए, वो आपसे वो काम तो करवा लेता है मगर वो जो सेंसेशन, वो इम्पल्स जो है जिसको लोगों ने अक्सर कहा कि एक कैथारसिस होती है, वो पूरी तरह कहीं पर फिल्म मेकर या राइटर शायद महसूस कर ही नहीं पाता। हाँ, ये लगता है कि कहीं पर आप अपनी केओस को, आप सारे कंफ्यूजन को एक स्टोरी के फॉर्म में डाल लें तो लगता है कहीं पर जिंदगी पर एक कंट्रोल सा आपको आ गया, वो एक इल्यूजन होता है। और एक तरकीब है जो मैंने 25 साल में बड़े मुश्किल से हासिल की है कि आप किसी भी तकलीफ वाले दौर से गुजरी है उसको आप अगर किससे कहानी में बांध लें तो कहीं पर वो उसको आप झेल सकते हैं आसानी से। स्टोरी टेलिंग प्रोवाइड्स यू विद सोलेस। शायद किस्से और कहानी कहने की ये परंपरा इसलिए चलती रहेगी और क्योंकि आदमी पीड़ा से बचने के लिए अपनी तकलीफों को एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में रिड्यूस करता है।

0: हमारी संवेदना को गहरे तक छूने वाली अर्थ सारांश और कास्ट जैसी फिल्में देने वाले महेश भट्ट ने व्यावसायिक समझौतों के तहत वो फिल्में भी बनाई जो लोकप्रिय सिनेमा के लटके झटकों से भरी होती हैं।
1: देखिए, जिस तरह मौसम बदलता है उसी तरह एक फिल्म मेकर या एक लेखक या एक आर्टिस्ट उन सारे सीजन से गुजरता है। कभी भी लगता है कि जैसे एक रेगिस्तान सा अंदर है जिसमें से कुछ निकलता ही नहीं, और इस रेगिस्तान से गुजरते वक्त फिल्म मेकर को बड़ी तकलीफ होती है, राइटर को बड़ी तकलीफ होती है, और फिर अचानक वो फेस खत्म होता है और लगता है कि जैसे हरियाली फिर से वापस आ रही है। तो ये हालांकि ये फेज मेरी जिंदगी में ज्यादा लंबा नहीं था। 94 में मैंने लास्ट फिल्म बनाई थी सर और हमें राही प्यार के, जो कामयाब फिल्में थी, मगर ये जब पीछे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हूँ और किसी फिल्म ने अपार्ट फ्रॉम तमन्ना जिसने एक नेशनल अवार्ड जीता था कुछ अपना असर छोड़ा नहीं, और इसलिए जब जख्म कहीं पर वापस उसने मेरे अंदर कहीं पर दबे कदमों आना शुरू किया जख्म की कहानी ने और मैंने उसको फिल्माया, तो कहीं लगा कि हाँ अपना कंट्रोल अब तक कायम है, कहीं पर वो फीलिंग्स वो इमोशंस जिसके लिए मैं मेरी एक इसके कारण मेरी एक पहचान बनी थी वो अब भी मेरे अंदर जिंदा हैं, और कहीं पर लोगों ने दोबारा दाद दी। मगर ये कहना कि ऐसा क्यों हुआ, ये एक्सेस ऑफ वर्क के साथ हुआ या एक इनडिफरेंट फेस था, एक इरेस्पॉन्सिबल फेस था, उसको सिंप्लीफाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं उस कंफ्यूजन का एक हिस्सा रहा हूं। तो ये तो कोई बाहर वाला ही देख के बता सकता है कि एक्चुअली क्या हुआ मेरे साथ।

0: फिल्म जख्म महेश भट्ट की प्रिय फिल्मों में से है। अपनी इसी फिल्म के बारे में बोलते हुए महेश भट्ट,
1: इसमें मेरी जिंदगी की गूंज है, जो झेला है, जो जिया है, कुछ जग बीती, कुछ आप बीती का एक मिश्रण है। ऑफ कोर्स ड्रामेटाइज्ड फॉर्मेट में, हिंदी सिनेमा के ईडियम में ये अनुभव मैंने पेश किए हैं, क्योंकि मैं अपने आप को हमेशा इस मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा का ही एक हिस्सा समझता रहा हूँ, मानता रहा हूँ। और ये मेरी जबान है, मैंने अपनी बात अपनी जबान में कही है। और ये फिल्म बनाते वक्त मुझे बड़ा सुकून मिला, कहीं लगा कि एक तार जो छूट गया था हाथ से, जैसे वो हाथ में आ गया। और इसको जब हमारे स्क्रीन के अवार्ड फंक्शन पे 5 अवार्ड्स मिले, तो लगा कि कहीं पर इस फिल्म का मेरी फिल्म इंडस्ट्री के भाई लोगों ने भी सम्मान किया है, इसको इज्जत दी है। एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा है मेकिंग ऑफ।

0: प्यार का।
1: महेश भट्ट ने कई फिल्मों की कथा लिखी तो कई फिल्मों की पटकथा। इनके नाम हैं सारांश, जन्म, काश, हक, तमन्ना, जख्म, संघर्ष, कसूर, ये जिंदगी का सफर, राज, गुनाह, जिस्म, फुटपाथ, इंतहा, पाप, रोग, कलयुग, हॉलिडे और गैंगस्टर।

महेश भट्ट द्वारा निर्देशित एक यादगार फिल्म है सर। फिल्म सर अपनी कथा वस्तु और कलाकारों के अभिनय और निर्देशन के लिए हमेशा याद की जाएगी। महेश भट्ट अपनी फिल्मों के लिए तो जाने जाते ही हैं, अपनी जीवन शैली, अपने दार्शनिक अंदाज और अपनी टिप्पणियों के लिए भी। विवादों से उनका पुराना रिश्ता है, लेकिन अपनी बातें बिना लाग लपेट के पूरी ईमानदारी से कह देना उनकी आदत है। बदलते सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य पर, हालात पर भी उनकी नजर रहती है। वक्त पड़ने पर वो खरा खरा कहने से पीछे नहीं हटते। महेश भट्ट प्रगतिशील सोच के फिल्मकार हैं, हालांकि ओशो और यूजी कृष्णमूर्ति के विचारों से बहुत प्रभावित रहे हैं। महेश भट्ट ने टेलीविजन के लिए एंकरिंग भी की और इस माध्यम के लिए फिल्में भी बनाई। टीवी के लिए बनाई गई उनकी ऐसी दो फिल्में हैं डैडी और फिर तेरी कहानी याद आई।

0: 2012 में महेश भट्ट की फिल्म आई रास 3। लेखन, निर्माण और निर्देशन का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने फिल्मकार महेश भट्ट पर। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने, विविध भारती की ओर से यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया विजय दीपक छब्बर ने।
1: आज के फनकार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

छाया गीत में आज ऐसे नगमे जिनके दो संस्करण हैं, हमने इन दोनों संस्करणों को किसी मोड़ पर जोड़ दिया है ताकि सुनने में हैरत का अनुभव हो और ये एक विलक्षण अनुभव बन जाए। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। अब वैसी नींद कहां जैसी बचपन में आती थी। असली नींद सचमुच बचपन की ही तो थी, पवित्र, निश्चल, बेफिक्र और असीम नींद। अब तो नींद में आहटे हैं, आशंकाएं हैं, सपने हैं, उनींदापन है, बेचैनी है और हैं तरह तरह की फिक्र। ऐसे में याद आती हैं मां की थपकियां, पिता का दुलार, बचपन की लोरियां।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से स्पेशल प्रोग्राम 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026।

किसी कारणवश यह कार्यक्रम नहीं आ पा रहा है। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं संगीतकार ओ पी नैयर के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी नगमे।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा और हम आपको सुनवा रहे हैं संगीतकार ओ पी नैयर के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी नगमे।

इन्हीं नगमों के साथ रजनीगंधा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार, प्रतीक्षा करें।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं

0: राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजित किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताके हीरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है।
1: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और उस समय हम ये अवसर गंवा बैठे। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
0: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC के प्रमुख ब्रिजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स IICA ने आज मानेसर गुरुग्राम में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC संशोधन के जरिए विकसित होता कानून विषय पर एक जानकारीपूर्ण सत्र आयोजित किया। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सत्र में इंसॉल्वेंसी कानून की बदलती प्रकृति और कानून, अधीनस्थ कानून और बाजार के घटनाक्रमों के बीच संबंधों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलाविनेल वेलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय निपुणिका शाहिद। President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent times underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The President was addressing the valedictory session of the two-day conference on the future of environment and climate dynamics, organized by the National Green Tribunal in New Delhi this evening.
3: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
2: President Murmu said climate change is creating imbalances in various aspects of human life, including biodiversity, water availability and land resources. The President said a well-structured framework of policies and actions is essential to effectively address such a complex challenge and must ensure the active participation of not only governments and legal experts but also the communities most affected by climate change. Indian Air Force Chief Air Chief Marshal AP Singh and Japan Air Self-Defense Force Chief of